मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि तदनुसार 18 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा मीडियम वेव एवं FM पर एक साथ आरंभ होती है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष रूप से विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती

0: पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

भक्ति संगीत की श्रद्धा रूपी पुष्प सबसे पहले अर्पित करते हैं श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में। हे कृष्ण कन्हैया, आप कहाँ हैं? आपके दर्शन को अखियां व्याकुल हैं। हे भगवान, मैं ही आपकी महिमा से अनजान हूँ, आपका ठिकाना नहीं जानती। बाकी सब जानते हैं कि आप कहाँ वास करते हैं।

हे शक्ति का रूप माँ दुर्गा, तू ममतामयी है, करुणामयी है। हे माँ, मेरे अंधकार मन को अपने ज्ञान की ज्योत जलाकर उज्जवल कर दे।

दोस्तों, बात करें करबला की तो सभी जानते हैं कि करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जिन्होंने अजीम शहादत देने के बाद हक व बातिल को अलग अलग लोगों तक पहुंचाया, बताया कि हक क्या है और बातिल क्या है, धर्म और अधर्म में असत्य को हरा कर सत्य की जीत की। अपनी इस अजीम शहादत को क़यामत तक के लिए ऐसा बना दिया कि हर एक धर्म का इंसान उनको सलाम करता है और अपनी अकीदत पेश करता है।

दिल में प्यार तेरा दिल जो अल्लाह रे सब्रो जात का आलम ना पूछिए अल्लाह।

बैअत कबूल की, सर दे दिया ना कुफूर की।

करबल में प्यासे जो उम्मत को बख्शो वाही ली जाए नाना जान

मेरे घर आंगन में संत रूपी मेहमान पधारे, जिससे मेरा जीवन धन्य हो गया। ईश्वर को बोध और प्रभु की महिमा बताने वाले मेरे संत गुरु ही तो हैं। ईश्वर का नाम सिमरन करने से आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है।

हे मानव, संसार की मोहमाया छोड़, ये जग नश्वर है, सब मिट जाना है। सत्य है तो प्रभु हरि का नाम, दुखों से मुक्ति और सुख समृद्धि चाहिए तो प्रभु श्री हरि का नाम का जाप करते रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना, जिसमें आज के कलाकार थे लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, जाकिर हुसैन, गोपाल सिंह रागी और सुमन कल्याणपुर। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: चित्त रूपी दर्पण को परमार्जित करने वाला, संसार रूपी महादावानल को बुझा देने वाला, कल्याण रूप कुमुद को विकसित करने वाली ज्योत्सना को फैलाने वाला, पराविद्या रूपी वधु का जीवन रूप आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला, पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन प्रदान करने वाला, संपूर्ण आत्मा को आनंद से सरोबार कर देने वाला अद्वितीय श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वोपरि विराजमान है। भगवान, आपने अपने गोविंद, गोपाल, वनमाली इत्यादि अनेक नाम प्रकट किए हैं और उन नामों में अपनी संपूर्ण शक्ति निहित कर दी है। श्री नाम स्मरण में कोई काला काल का विचार भी नहीं रखा है। आपकी तो इस प्रकार

0: कृपा है और इधर मेरा भी इस प्रकार का दुर्भाग्य है कि ऐसे ही श्री हरि नाम में अनुराग नहीं हुआ। तृण की अपेक्षा भी अतिशय तुच्छ एवं वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर स्वयं अमानी रहते हुए दूसरे को मान प्रदान करके निरंतर श्री हरि नाम या उनकी लीलादि का गान करना ही एकमात्र कर्तव्य है। जगन्नाथ, मैं धन जन कामिनी काव्य अथवा पांडित्य की कामना नहीं करता। परमेश्वर स्वरूप तुम्हारे प्रति जन्म जन्मांतर में मेरी अकारण भक्ति हो। नंदनंदन, तुम्हारा दास मैं इस घोर दुष्पार संसार सागर में पड़ा हुआ हूँ। मुझको कृपा पूर्वक अपने पाद पद्म की धूल के समान समझिए। गोपी जन वल्लभ, कब आपके श्री नाम ग्रहण के समय मेरे दोनों नेत्र बहती हुई अश्रुधारा से, मेरा बदन गदगद होने के कारण रुकी हुई वाणी से तथा मेरा शरीर रोमांच से युक्त होगा। गोविंद, आपके विरह में मेरा एक एक निमेश युग के समान बीत रहा है। नेत्रों से वर्षा की धारा के समान अश्रु वर्षा हो रही है और सारा जगत शून्य जान पड़ता है। चरण सेवा में लगी हुई मुझको वे गले से लगा लें या पैरों तले रौंद डालें अथवा दर्शन न देकर मर्माहित ही करें, उन परम स्वतंत्र श्री कृष्ण की जो इच्छा हो वही करें। तथापि मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। प्रातःकाल में माता यशोदा के दधि मंथन का शब्द सुनकर निद्रा त्याग करके ब्रज गोपियों के घरों में पैरों का शब्द न करते हुए चुपचाप प्रवेश कर तथा श्री मुख कमल की वायु के द्वारा शीघ्र ही दीपकों को बुझाकर नवनीत को गटकने में रत बाल कृष्ण मेरी रक्षा करें। एक बार किंकणी ध्वनि को बंद करने के लिए बाएं हाथ से किंकणी की डोरी को पकड़े शरीर को कुबड़ा करके पैर की उंगलियों के बल पर चलते हुए मृदु मंद हास्य वदन श्री कृष्ण को देखकर सम्मुख खड़ी हुई गोपियां जब हंसने लगी, तब श्री हरि ने अपनी नेत्र भंगिमा के द्वारा उनके हास्य को निवारण कर माता के पश्चात स्थित सद्योजात नवनीत को हरण किया था। जिनका वदनार विंद विकसित है वे बाल गोपाल मूर्ति श्री कृष्ण मुझे देखकर मृदु मधुर हास्य से श्री मुख की शोभा का समाधिक विस्तार करते हुए प्रासाद के ऊपरी भाग में मेरी सम्मुख आकर स्थित हो रहे हैं। मेरे अंदर श्री कृष्ण प्रेम की तनिक सी भी गंध नहीं है, केवल सौभाग्यातिशय को प्रकट करने के लिए ही मैं क्रंदन करता हूं। मुझमें प्रेम का लेश मात्र भी नहीं है, इसका प्रमाण यही है कि वंशी विलासी श्री कृष्ण के मुख दर्शन के बिना मैंने व्यर्थ ही प्राण रूपी पक्षियों को धारण कर रखा है।
1: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं दंत विकार और घरेलू नुस्खे विषय पर जानकारी। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
2: स्वास्थ्य संदेश के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, दांत शरीर का एक ऐसा अंग है जो आपके व्यक्तित्व के आकर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप बात करते हैं, मुस्कुराते या हंसते खिलखिलाते हैं तो दुग्ध धवल मोतियों जैसे दांतों की पंक्ति आपके सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। किंतु यदि आपके दांत गंदे तथा सांस दुर्गंध युक्त है तो इससे अधिक अप्रिय और कुछ नहीं हो सकता। अधिकांश व्यक्ति शीघ्रता से दांतों की आधी अधूरी सफाई करके संतुष्ट हो जाते हैं। इसी लापरवाही का परिणाम होता है दांतों की अनेक समस्याएं। अतः उचित यही है कि प्रतिदिन दांतों की भली भांति सफाई की जाए। दांतों से संबंधित तीन समस्याएं मुख्य हैं, दांतों में सड़न, मसूड़ों में दर्द सूजन तथा दांतों से खून का रिसना। जहां तक दांतों की सड़न का सवाल है तो दांतों पर कीटाणुओं द्वारा निर्मित सफ़ेद पपड़ी अर्थात फ्लॉक ही दांतों में सड़न का कारण है। यह दांतों के इर्द गिर्द बीच में तथा मसूड़ों के नीचे बनता है। दांतों को सड़ने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपचार किए जा सकते हैं। 20 बूंद लहसुन का रस एक चम्मच शहद में मिलाकर चाटने से दांतों की सड़न, दर्द एवं बदबू दूर होती है। एक कप गुनगुने पानी में एक चम्मच अदरक का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर घूंट भरें। 15 मिनट मुंह में रखने के बाद उसे पी जाएं। दांतों की सड़न, मसूड़े की सूजन और बदबू समाप्त हो जाएगी। मसूड़ों में दर्द सूजन, राई या सरसों के तेल में बारीक नमक मिलाकर मंजन करने से दांत तथा मसूड़े मजबूत होते हैं। इससे दांत व मसूड़े के दर्द में आराम भी मिलता है। मसूड़े के दर्द में हल्दी के टुकड़े मुंह में डालकर चूसें। दाढ़ के दर्द में नमक मिले अदरक के टुकड़ों को चूसना लाभदायक होता है। मसूड़े में सूजन होने पर हरा पुदीना पानी में उबाल लें और उस पानी के कुल्ले करें, तत्काल आराम मिलता है। पानी में मेथी उबालकर उसके कुल्ले करने से मसूड़ों को आराम मिलता है। दांत के दर्द और मसूड़ों में सूजन होने पर लहसुन को पीसकर उससे धीरे धीरे मालिश करने से आराम मिलता है। प्याज के रस को मसूड़ों पर मलने से मसूड़ों की सूजन कम होती है। यदि भुने सुहागे के साथ काली मिर्च पीसकर मसूड़ों के घावों पर लगाया जाए तो मसूड़े जल्दी ठीक हो जाते हैं। दांत दर्द में लौंग का तेल लगाने से भी आराम मिलता है। इससे सूजे हुए मसूड़े भी ठीक हो जाते हैं। फिटकरी के पानी से कुल्ला करने पर मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है और दांत मजबूत होते हैं। दांतों के दर्द में तुलसी के ताज़ा पत्ते तथा काली मिर्च पीसकर दांतों के नीचे रखने से दांत का दर्द चला जाता है और दांत के दर्द में दालचीनी के तेल का फाहा लगाने से तत्काल आराम मिलता है। तो श्रोताओं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे दांत स्वस्थ रहें तो इन उपायों को घरेलू उपचार के रूप में अपना सकते हैं और अपने दांतों को मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस जानकारी यहीं तक। अगले कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दंत विकार और घरेलू नुस्खे विषय पर अभी आप सुन रहे थे जानकारी। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। इसी के साथ कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 में हैं। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में एक नज़र हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा की शेष और दूसरी सभा की प्रमुख कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:45 पर रोजाना की भांति प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग में आज की कलाकार होंगी विमलेश सिन्हा। फिल्मी गीतों का इंफरटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे हम लेकर हाजिर होंगे 7:31 पर। 102.9 मॉर्निंग हिट्स में नए फिल्मी गीत सुनिएगा 8:45 पर। गौरव भारत देश के कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 9:25 पर, जिसमें आज सुनेंगे रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रसंग। उर्दू प्रोग्राम 9:30 पर नशर किया जाएगा, जिसके तहत आप समाप्त फरमाएंगे मुस्कुराते लम्हे मिजाहिया तकरीर। मुकर्रा होंगी मोहम्मद गजाला परवीन। मिजाहिया कलाम समाप्त फरमाइएगा मंजर वाहिदी से। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप तक पहुंचेगा 10 बजे। 10:30 पर सुनिएगा 90 के दशक।

ये कुछ फिल्मी गीत कार्यक्रम सुनहरा दौर में। धरोहर के अंतर्गत 11 बजे आप सुनेंगे धारावाहिक और फन बेमिसाल है कि अगली कड़ी। मनभावन कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 11:30 पर। आज सुनेगा श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित फिल्मी नगमे, ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम आप तक पहुंचेंगे 12:10 पर। एक 1:15 पर धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा साधना मल्होत्रा के गाए कुछ लोकगीत। ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम आज चल प्रसारित किया जाएगा 1:30 पर। 2:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। हमारी आज की दूसरी सभा रोजाना की सभा आरंभ होगी आज अपराह्न 4 बजे, जिसमें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संदेश टू सोल्जर्स। आज शाम कार्यक्रम का समय रहेगा 5 बजे। हमारे युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे 5:15 पर। कृषि जगत कार्यक्रम 6:20 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे, जिसमें चर्चा होगी अरहर की सफल खेती पर। इसके अलावा आकाशवाणी गांवों में ग्राम पंचायत संकलन की प्रस्तुति होगी विक्रांत चौधरी की। विविधा के अंतर्गत शाम 7 बजे सुनेगा वार्ता वैश्विक होता भारत का योग। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राधे श्याम शर्मा।

सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 7:31 पर, जिसमें आप सुनेंगे सोनाली और रूप कुमार राठौर की गाई गजलें। गीत गाथा चल कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा रात्रि 8 बजे। 9:30 पर सुनेगा सबरस कार्यक्रम में नात कव्वाली। आज के कलाकार होंगे शाहिदीन कव्वाल और साथी। आखिरी अमावस ये नाटक आप तक पहुंचेगा रात्रि 10 बजे, जिसके लेखक होंगे गंगा सिंह रावत। फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि आप तक पहुंचेगा रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा के शेष और दूसरी सभा की प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। आज सुनिए भाग संख्या 332।

लक्ष्मण का बाण सीधा मेघनाथ की छाती में लगा। देह त्याग करने से पहले उस महावीर ने छल कपट का त्याग किया और सच्चे हृदय से श्री राम और लक्ष्मण का स्मरण किया। हनुमान और अंगद विह्वल स्वर में कह उठे, हे वीर, धन्य है तेरी माता जिसने अपनी कोख में तुझे धारण किया, और धन्य है तू जिसे लक्ष्मण जी के हाथों सद्गति प्राप्त हुई।

हनुमान मेघनाथ का पार्थिव शरीर रावण के महल के द्वार पर रख आए। पुत्र की ये गति देख रावण मूर्छित हो गया। अन्य रानियों सहित मंदोदरी के विलाप से अंतःपुर द्रवित हो गया। बाहर नगर में शोकातुर प्रजाजन रावण को कोस रहे हैं, जिसने अपने अभिमान और हट के कारण लंका को ये दिन दिखाया। लेकिन रावण अपनी स्त्रियों को एक दार्शनिक की भांति उपदेश दे रहा है कि इस जगत के समान ही शरीर भी नाशवान है। रात्रि बीत जाती है। वानर सेना एक बार फिर युद्ध भूमि में आ डटी है। रावण ने पवन गति से दौड़ने वाला अपना रथ सजाया और अपने विश्वस्त योद्धाओं को साथ ले रणभूमि की ओर चल पड़ा। चारों ओर भयानक अपशकुन होने लगे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। आज आपने सुनी भाग संख्या 332, मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतं अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसंबोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं संधि निश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्याम् खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
0: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। अब सुनिए लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं विमलेश सिन्हा।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आज की कलाकार थी विमलेश सिन्हा। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 7:18 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को लेकर की अहम बैठक, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर दिया विशेष जोर। बदायूं में सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से दी शिकस्त। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
3: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को लेकर बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र ही कार्ययोजना शासन को भेजी जाए, जिससे उन्हें इस माह के अंत तक स्वीकृत कर कार्य शुरू कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय पर संवेदनशील है तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों और मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावितों के व्यवस्थित पुनर्वास और उन्हें उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अवशेष कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों के कार्यों में विलंब है या जिन्होंने अभी तक कार्य शुरू नहीं किए हैं, उनके जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है।
4: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
6: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
5: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
7: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
5: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। बदायूं जिले के थाना उझानी क्षेत्र में बुटला गांव के पास कल एक ट्रैक्टर व ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के

0: हित में है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कल हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत अफगानिस्तान के सामने 403 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 44 ओवर और 3 गेंद पर 232 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित गंगोत्री से गंगा सागर योग यात्रा के अंतर्गत कल वाराणसी में योग और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश सरकार में आयुष राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत पिछली 13 जून को गंगोत्री से हुई थी। 20 जून को गंगा सागर में इसका समापन होगा। वाराणसी इस यात्रा का एक पड़ाव रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज और कल कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में पूर्वी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को लेकर की अहम बैठक। परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर दिया विशेष जोर। बदायूं में सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से दी शिकस्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम सुबह सवेरे का।

फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे लेकर हाजिर हूँ आपकी रेडियो सहेली इरम फातिमा। कबूल कीजिए प्यार भरा नमस्कार सलाम। दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। इन दुआओं और इन उम्मीदों के साथ कि आप सब सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और कार्यक्रम सुन रहे होंगे, करिए थोड़ा एंटरटेनमेंट इस गीत के साथ।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज।
1: दोस्तों अब एक नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है योग, इसको मद्देनज़र रखते हुए और आकाशवाणी रामपुर ने योग सप्ताह के अंतर्गत योगाभ्यास सत्र आयोजित किया। इसमें रामपुर की प्रमुख योग प्रशिक्षिका डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय शुक्ला ने योग के महत्व पर चर्चा की और आकाशवाणी परिवार के सदस्यों को योगाभ्यास कराया। सत्र का आरंभ गायत्री मंत्र से हुआ और योग चर्चा के दौरान डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय शुक्ला ने कहा कि आज की जीवन शैली में तनाव, चिंता और अनियमितता विभिन्न शारीरिक रोगों के कारण बन रही है। ऐसे में योग एक प्रभावी समाधान है। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से शरीर लचीला और सशक्त बनता है, रक्त संचार बेहतर होता है।

रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होती है। उन्होंने प्राणायाम सहित आयुष मंत्रालय द्वारा जारी योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगासनों का अभ्यास कराया। कहा कि ये योग से मन को शांति मिलती है, मानसिक तनाव कम होता है और सोच सकारात्मक बनती है। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुरानी आवास विकास कॉलोनी स्थित प्रिंस पार्क में सुबह 6 बजे सामूहिक योगा अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, कार्यक्रम का आयोजन गो सेवा गोपाल सेवा समिति करेगी। अध्यक्ष संदेश अग्रवाल ने कॉलोनी वासियों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। दोस्तों गर्मी बेइंतहा तेजी पकड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जिससे कि लोगों का हाल बेहाल है। बीमारियां बढ़ रही हैं, संक्रामक रोग बढ़ रहे हैं और ज़िले में इस गर्मी के असर से बच्चों की सेहत बहुत ख़राब होती दिख रही है, क्योंकि ज़िला अस्पताल में पिछले 24 घंटे में पेट दर्द, बुखार, उल्टी और डायरिया की शिकायतों पर 16 बच्चों को भर्ती किया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार गर्मी पड़ने के साथ बच्चों में पेट संबंधी बीमारियों के मामले तेजी से आ रहे हैं, जो कि खराब खाना खाने और खराब पानी पीने से हैं या पानी की कमी से संक्रमण हो रहा है। आप लोगों से बस हमारा इतना ही कहना है कि दोस्तों अपने बच्चों को बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकलने दें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और कटे हुए फ्रिज में रखे हुए फल या खुले में रखे हुए फल बिल्कुल ना दें। जो भी खाना है उतना ही लीजिए और उतना ही फौरन खिलाएं। रखे हुए फल ख़राब हो जाते हैं और संक्रमण फैलाते हैं। पानी बहुत अच्छे से पिए, धूप से बचते रहिए, बचाते रहिए ताकि तबीयत और सेहत आपकी इससे सही रहे। उबला हुआ या फिर शुद्ध पानी पिलाएं, खुला हुआ पानी या बचा हुआ पानी बिल्कुल ना दें, क्योंकि जान है तो जहान है। इस गर्मी में बच्चों में डायरिया, पेट दर्द, उल्टी और बुखार के मामले बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। दोस्तों फिर एक बार कहेंगे कि बाहर का खाना, कटे हुए फल और खुले में बिकने वाली चीज़ें बिल्कुल ना खिलाएं। पानी खूब पिलाएं, जूस पिलाएं और घर के बने हुए लस्सी, नींबू का पानी या जो भी आप दे सकते हैं वो घरेलू पेय पदार्थ दीजिए, जिससे कि आपके बच्चों की सेहत बनी रहे।

साथियों, सड़कों पर जाम समस्या तो हमेशा रहती है, और ख़ास करके जब गर्मी बेतहाशा हो तो उस वक्त ज़रा सी देर भी रास्ते में रुकना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और भारी पड़ता है। ऐसे में जी चाहता है कि बहुत तेज़ी के साथ इस जाम को पार कर लिया जाए। रामपुर शहर को जाम मुक्त बनाने की नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कवायद चल रही है। इसके लिए सड़कों पर जाल बिछ रहा है। दो इंटरचेंज का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि मुरादाबाद और बरेली की ओर से उत्तराखंड जाने वाले वाहनों के लिए बाईपास पर काम तेज़ी से चल रहा है। इनमें शहजाद नगर दुर्ग नगला से नैनीताल हाईवे कोयला बाईपास का संचालन शुरू हो गया है। दोस्तों, ये जाम मुक्त बनाने की का जो कवायद चल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ज़ीरो पॉइंट से दुर्ग नगला तक पर होने वाले हादसों में कमी आएगी, जो कि हर वक्त आए दिन सुनने को मिलते हैं। और जब चौड़ीकरण होगा तो दोनों तरफ से आसानी से वाहन गुजर सकेंगे, जा सकेंगे, जाम की समस्या बहुत कम हो जाएगी। बरेली की तरफ से आने वाली जो वाहन होते हैं, शहर में आते हैं, वो अब शहर में उसका दबाव नहीं पड़ेगा, बल्कि बाहर से बाहर ही पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से जाम से निजात मिल सकेगी।

0: दोस्तों आज 18 जून है। अब बात करते हैं आज के इतिहास के, क्योंकि आज के इतिहास में बहुत कुछ ख़ास है। 1979 में अमरीकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा साल्ट द्वितीय समझौते पर वियना में हस्ताक्षर हुए थे आज के दिन। 1997 में 35 यूरोपीय देशों के बीच लंदन में पेयजल समझौते पर हस्ताक्षर, लातविया में वाई के प्रेमा को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया था। 2008 में केंद्र सरकार ने गुर्जरों को ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी आज ही के दिन। भारत यात्रा में आए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मध्य 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। फार्मा कंपनी रैनबैक्सी ने अमेरिका फार्मा कंपनी फाइजर के साथ पेटेंट विवाद को एक समझौते के तहत समाप्त किया था। वियतनाम ने विश्व बाजार में आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए चावल के निर्यात पर लगी पाबंदी हटाई थी आज ही के दिन। 1958 में नौकायान में भारत की श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे होमी डैडी मोतीवाला का जन्म हुआ था। 1931 में जन्म हुआ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 5वें सरसंघ चालक K.S. सुदर्शन का। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक दादा धर्माधिकारी का जन्म 1899 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और आक्रामक बल्लेबाज सैयद मुश्ताक अली का निधन भी 18 जून 2005 में हुआ, जिनके नाम पर घरेलू क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जाती है। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का निधन 2002 में हुआ था आज ही के दिन। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक और सरोद वादक अली अकबर खां का निधन हुआ आज ही के दिन। हिंदी साहित्यकार सेठ गोविंद दास का निधन 1974 में हुआ था। 1887 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिक और आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म हुआ। मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के वीर शासक महाराणा प्रताप के बीच ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ था 1576 में। 1815 में वाटरलू युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिटिश और प्रशिया की सेनाओं से करारी हार का सामना करना पड़ा था। 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ ऐतिहासिक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। भारत की संसद में संपत्ति के अधिकारों और विरासत को लेकर महत्वपूर्ण कानून हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कानून पारित किया गया था आज ही के दिन। 18 जून 1858 में महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की शहादत हुई, जिसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है उनकी इस पुण्यतिथि को। भारत के दिग्गज एथलीट और धावक, जिन्हें प्यार से द फ्लाइट सिंह कहा जाता है, मिल्खा सिंह का निधन 18 जून 2021 में आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों ये था आज का इतिहास और अब कुछ संदेश।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
0: कार्यक्रम सुबह सवेरे में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज 18 जून है। आज ही के दिन रानी लक्ष्मीबाई ने शहादत पाई थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आते ही मन गौरवान्वित हो जाता है। एक साहस और वीरता की भावना का एहसास होता है। रानी लक्ष्मीबाई भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की वो महान वीरांगनाओं में से एक हैं जो नारी शक्ति का प्रतीक है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था 19 नवंबर 1828 में। पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी सप्रे थी। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणि कर्णिका तांबे था और सब प्यार से इनको मनु या छबीली पुकारते थे। लक्ष्मीबाई का बचपन से ही बहादुर, निडर और साहस वाली और नारी शक्ति की मिसाल थी। उन्होंने शास्त्रों के साथ साथ घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और मार्शल की विद्या भी सीखी थी। 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर से उनका विवाह हुआ, जिसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। अठारह में राजा गंगाधर के निधन से पहले ही उन्होंने आनंद राव को गोद लिया था, जो दामोदर राव से पुकारे गए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने उनके गोद लिए इस पुत्र को लक्ष्मीबाई का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को हड़पने की कोशिश करने लगा। रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ता से कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों की दी हुई पेंशन को भी उन्होंने ठुकरा दिया। जब जनरल होरोज ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया तो लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया और डटकर अंग्रेजों का सामना किया। बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। 18 जून 1858 के इस शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। हर साल उनकी पुण्यतिथि यानी 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि मनाई जाती है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमें अपने बच्चों तक ये गौरव गाथाएं बढ़ाना होगी और अपने बच्चों को सिखाना होगा कि हम इतिहास किस तरह से रचें।

दोस्तों, अब बात करते हैं योग की। योग शारीरिक तौर पर शक्ति, सहन शक्ति, धीरज और ऊर्जा के विकास में सहायक होता है। ये मानसिक स्तर पर एकाग्रता, शांति, सुकून और संतोष प्रदान करता है, जिससे आंतरिक और बाहरी तालमेल बैठता है, दैनिक तनाव थकान को दूर करता है। साथियों, योग किसी खास उम्र या पेशे धर्म से जुड़ा नहीं है, बल्कि बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जो चाहें योग कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, अपनी सेहत बना सकते हैं। योग तनाव चिंता को कम करके भावनात्मक संतुलन को बढ़ाता है। वेदों में योग का अर्थ जीवात्मा का परमात्मा से मिलन और पूर्ण एकाग्रता है। योग आधुनिक विद्या नहीं है, बल्कि वेदों में इसके बीज और विस्तृत आध्यात्मिक अवधारणाएं मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम योग और नमाज की समानताओं पर बात करेंगे। ज्ञान कोई भी हो, लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस काम में हमारे लिए क्या अच्छाई है और किस चीज़ में खराबी है। नमाज पढ़ना भी एक तरीके का व्यायाम है दोस्तों। दोनों ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अद्भुत साधन है, योग और नमाज, जो शरीर में ऊर्जा, लचीलापन और शांति लाते हैं। हालांकि दोनों का मकसद और धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन शारीरिक मुद्राएं और लाभ समान हैं। जैसे नमाज में खड़ा होना, झुकना, सजदा करना, वज्रासन में बैठना योग आसन के समान है। नमाज में जो रुकू किया जाता है वो योग के पश्चिमोत्तानासन जैसा है, जिससे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। जब नियत बांध के ईश्वर की तरफ ध्यान लगाते हैं तो प्राणायाम में मन की एकाग्रता पर जोर देना, श्वास पर नियंत्रण रखना, दोनों के अभ्यास से रक्त संचार बेहतर होता है, जोड़ों में दर्द नहीं होता, तनाव कम होता है। और योग और नमाज से, दोनों से ही कब्ज, गैस और जोड़ों के दर्द की बीमारी दूर होती है। योग और नमाज दोनों में शुरू करने से पहले शरीर की शुद्धि ज़रूरी है, यानी शरीर का पाक होना ज़रूरी है, हल्का होना ज़रूरी है। तो योग करने से पहले भी शौच किया जाता है, स्नान किया जाता है, और नमाज से पहले भी शौच से फारिग होकर स्नान करके या वुज़ू करके, वुज़ू यानी हाथ मुंह पैर धोकर हल्के होते हैं, पाक होते हैं। नमाज इस्लाम का एक अनिवार्य स्तंभ है दोस्तों, जो अल्लाह के लिए इबादत समर्पण का माध्यम है। वहीं योग शरीर मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। नमाज में जो सजदा किया जाता है, तो सजदे को हम योग में शंशाकासन या बालासन के रूप में जानते हैं। सजदे में माथा, नाक, हाथ, दोनों घुटने और पैरों की उंगलियां जमीन को छूती हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से सजदे की बात करें तो इसमें बहुत से लाभ हैं। सजदे में सिर रखने पर सिर दिल से नीचे होता है, जिससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन और रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है, चिंता अवसाद कम होता है, दिमाग में खून के बेहतर बहाव से याददाश्त अच्छी होती है, सोचने की ताकत बढ़ती है। दोस्तों, सजदे में सिर होने से फेफड़ों के निचले हिस्सों तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंचती है, जिससे सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। पेट के अंगों पर हल्का दबाव पड़ने से कब्ज और गैस से राहत मिलती है। पीठ के निचले हिस्से, रीढ़ की हड्डी का तनाव दूर होता है। घुटनों, टखनों और उंगलियों के जोड़ों में लचीलापन पैदा होता है, जिससे गठिया रोग का खतरा कम होता है। और सबसे बढ़कर दोस्तों, इससे बालासन यानी सजदे से चेहरे की तरफ जब खून का बहाव बढ़ता है तो त्वचा की कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है, मुहासे कम होते हैं। तो इस तरह से योग हो या नमाज जैसा व्यायाम,
ये सभी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, योग को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और घर के कामों से निपटकर महिलाओं को भी चाहिए कि अपने लिए 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आप ले सकती हैं, वो इतने टाइम में योगासन कीजिए ताकि सेहत भी बनी रहे और आपकी फिटनेस रहे, आपके चेहरे पर रौनक रहे। तो इसी के साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे में अपनी रेडियो सहेली इरम फातिमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का एंटरटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को ही कुछ ही पलों में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
5: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
6: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
4: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
7: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे।

0: क्षेत्रों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
6: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद

0: के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है, तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
4: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती,

कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, नक्श अजीज नीति मोहन और नईम शाह की आवाजों में। फिल्म का नाम है पागलपंथी।

102.9 मॉर्निंग हिट्स का अगला गीत सुनिए, फिल्म दिल चाहता है से। आवाज़ है शंकर महादेवन की।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और अब सुनिए फिल्म मलाल का ये गीत ऋत्विक, तलाश शिलकर और आनंद जोशी की आवाजों में।

ये गीत आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, आवाज़ थी श्रेया घोषाल की। कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स का अंतिम गीत सुनिए, फिल्म लव यात्री से, आवाज़ है आतिफ असलम की।

आतिफ असलम की के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर की जाएगी जिले की हलचल।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए एटा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
2: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एटा के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। योजना के प्रथम चरण में 4 मार्गों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से राजा का रामपुर मार्ग पर 2 बसें और अमरोली रतनपुर और बिलसण मार्ग पर 1-1 बस चलाई जा रही है। लंबे समय से नियमित सार्वजनिक परिवहन से वंचित ग्रामीणों को इस पहल से बड़ी राहत मिली है। बस सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों और मरीजों को जिला मुख्यालय के अलावा कस्बों तक पहुंचने में सुविधा होगी। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए अन्य मार्गों को भी योजना से जोड़ने की मांग की है। परिवहन विभाग की ओर से चरणबद्ध तरीके से नए मार्गों पर बस संचालन की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जनपद के सभी 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। ये मेला बीते रविवार यानी 14 जून को लगाया गया। मेले में कुल 1030 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। सबसे ज्यादा संख्या त्वचा रोगियों की रही। इसके अलावा पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, गैस और कब्ज से पीड़ित मरीजों ने भी उपचार लिया। मेले में 414 पुरुष, 477 महिलाएं और 139 बच्चे पहुंचे। चिकित्सकों ने बुखार के मरीजों की मलेरिया और डेंगू जांचें भी कराई, जिसमें कोई भी मरीज संक्रमित नहीं पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण त्वचा और पेट संबंधी रोगियों की संख्या ज्यादा रही है और लोगों को स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूक रहने की सलाह भी दी गई है। जिले में अवैध रूप से संचालित 21 लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि संबंधित संस्थानों को 7 दिन के भीतर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में पंजीकरण न कराने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। विभाग का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करना है। जनपद में निराश्रित गौवंश की समस्या के समाधान के लिए शासन ने 2 बृहद गौशालाओं के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। पहली गौशाला मारहरा क्षेत्र के रहमतपुर माफी और दूसरी सकीट के नगला हरिकिशन में बनाई जाएगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आरपी शर्मा के अनुसार दोनों गौशालाएं 10-10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएंगी। इनमें गौशाला शेड, पानी की व्यवस्था, भूसा, गोदाम, कार्यालय कक्ष, सोलर लाइट और सुरक्षा के लिए फेंसिंग जैसी सुविधाएं होंगी।
3: एक गौशाला हमारी मरहरा ब्लॉक में रतनपुर माफी में, दूसरी गौशाला शकीर ब्लॉक के नगला हरिकिशनपुर में स्वीकृत की गई है। इसकी क्षमता 400 गोवंश की होती है। इसके अलावा भूसा गोदाम, एक ऑफिस बनता है, पानी की टंकी बनती है, उसके अलावा बाउंड्री वाल होती है, इसमें निर्माण कार्य किया जाता है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आर्ष गुरुकुल एटा में योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ बीते सोमवार से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका परिषद एटा की अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी ने किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में योग साधकों ने सहभागिता की। योग के प्रशिक्षकों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास किया। तमाम योग के आसनों के लाभ भी बताए। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का भी प्रभावी माध्यम है। एटा के अलीगंज में महिला सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने को महत्वपूर्ण पहल की गई है। अलीगंज मैनपुरी मार्ग पर लगभग 3,30,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले महिला थाना भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, उप जिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता, सीओ राजेश कुमार मौजूद रहे। महिला थाना बनने से महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने, परामर्श और न्याय प्राप्त करने के लिए एक समर्पित मंच उपलब्ध होगा। इसी क्रम में जसरथपुर और नयागांव थाना इलाकों में 2 नई पुलिस चौकियों के निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। इससे ग्रामीण इलाकों में पुलिस की पहुंच और कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। जिलाधिकारी अरविंद सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन ने जैथरा के मानपुर गाँव में एक प्रगतिशील किसान के कृषि फार्म का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, बायो फ्लॉक तकनीक से मत्स्य पालन, गेंदा पुष्प उत्पादन और औषधीय पौधों की खेती का अवलोकन किया।
1: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
4: 2 जून को गोरखपुर जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआ ताल में सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान डबल इंजन सरकार ताल पोखरों पर कब्जा नहीं होने देती बल्कि प्रकृति संरक्षण के दायित्वों का निर्वहन करती है। उन्हें बेहतरीन पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित कर समाज को प्राकृतिक वातावरण में आनंदित होने का मंच देती है। 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निखारे गए इस पर्यटन स्थल को जनता को समर्पित करने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिलुआ ताल पर्यटन विकास परियोजना के अगले चरण में चिलुआ ताल को रामगढ़ ताल की तर्ज पर इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अच्छी सरकारें अच्छी चीजें लेकर आती हैं। उन्होंने बताया कि चिलुआ ताल में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे चिलुआ ताल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। पूरे शहर की बिजली आपूर्ति यहां से संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामगढ़ ताल की तरह चिलुआ ताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब लोग चिलुआ ताल को देखेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा। उन्होंने चिलुआ ताल के प्राकृतिक वातावरण की तारीफ करते हुए कहा कि चिलुआ ताल के किनारे लहरों से होकर आ रही हवा तापमान को कम कर सुखद एहसास करा रही है। यहाँ पर लोग परिवार के साथ आकर आनंद के साथ घूम सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। यहाँ न प्रदूषण है और न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था।
5: ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है। एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है।
4: 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज महुआ पार बड़हलगंज में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ से अधिक की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह धरा माँ सरयू के आंचल में है। यहाँ का नौजवान जहाँ भी गया अपनी प्रतिभा व परिश्रम का लोहा मनवाया है। एक समय बाढ़ की त्रासदी और कनेक्टिविटी के अभाव में क्षेत्र के लोग पलायन करते थे। आजीविका के लिए को विदेश जाना पड़ता था लेकिन अब यहाँ के नौजवान को बाहर नहीं जाना होगा, उससे यही रोजगार के ढेर सारे अवसर मिलेंगे। अब सरकार आपके द्वारा चुने गए विधायक सांसद डबल इंजन सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए विदेशों के लोगों को चिल्लूपार में काम करने का अवसर देने जा रहे हैं। विदेशी लोग आकर आपके यहाँ चाकरी करेंगे। सीएम ने विश्वास जताया कि विकास और विरासत की यात्रा के साथ चिल्लूपार वासी बिना रुके डिगे झुके डरे निरंतर आगे बढ़ेंगे। ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत गरीबों का कल्याण, विकास योजना, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाता है। उन्होंने कहा कि एक समय राम जानकी मार्ग पर आवागमन ठप था, उपचार के लिए लखनऊ जाने को मजबूर होना पड़ता था, कनेक्टिविटी रोजवेज बस व अन्य साधन तक नहीं थे, जैसे तैसे व्यवस्था चल पाती थी लेकिन आज कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले कोई सोचता था कि धुरियापार में इंडियन ऑयल का सीएनजी प्लांट लगेगा या सहजनवा का गीडा धुरियापार में आ पाएगा। यहाँ ग्रेटर गीडा बनाने जा रहे हैं हम। अभी से हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ गए हैं जिन्हें हमें उद्योग के रूप में स्थापित करना है। इसमें सीमेंट की फैक्ट्री धुरियापार में लगने जा रही है, पावर प्लांट आधुनिक

0: पेंट और अत्याधुनिक डिस्टिलरी जहां मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथ की दवा भी बनेगी। गोरखपुर जिले में बड़ा मंगल हर मंगल को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 16 जून को बड़े मंगल पर शहर के विभिन्न मंदिरों में बजरंगबली की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं ने की। इसके साथ ही जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जिले में योग दिवस 21 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर गोरखनाथ मंदिर व गोरखनाथ मंदिर के में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से योग दिवस पर शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को योग दिवस को लेकर गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन में योग किया जाएगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:25 में है। अब सुनिए कार्यक्रम गौरव भारत देश के। आज हम आपको सुनवा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा।
4: मेरी झांसी मुझे छोड़ दो, अरे आतताई अब भागो, नाना साहब तांतिया टोपे, गोली दंदन फिर दागो, मृत्यु वरण जिसने कर ली हो वे शूर नहीं शर्माते हैं, अपने जीवन की ज्योति जला जीवन ज्योतित कर जाते हैं। ये उद्गार थे देश प्रेम की दीपशिखा महारानी लक्ष्मीबाई के। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म सन 1835 में हुआ था। 1854 में अंग्रेजों ने झांसी का राज्य हड़प लिया और 5000 रुपए पेंशन निश्चित कर दी, जिसे रानी ने स्वीकार नहीं किया। झांसी को मुक्त कराने के लिए 4 जून 1857 को झांसी पर धावा बोल दिया गया। महाराज गंगाधर राव के संबंधी को परास्त कर दिया गया। 24 मार्च 1958 को यूरोप ने 10 दिन तक लगातार युद्ध कर झांसी का किला छोड़ दिया। सेविका झलकारी बाई ने अपने बलिदान का परिचय देकर किले से रानी को बाहर निकलने में बड़े साहस और चातुर्य का परिचय दिया। रानी अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ कालपी से ग्वालियर पहुंची। वहां ह्यूरोस की भारी सेना पर निर्णायक युद्ध में शत्रु सेना पर बुरी तरह टूट पड़ी। तांत्या टोपे अंग्रेजों द्वारा मार्ग में ही रोके जाने के कारण रानी की सहायता को नहीं पहुंच सके। रानी युद्ध में अंग्रेजी सेना से घिर चुकी थी। लाल कुर्ती सेना ने अपनी कुर्बानी देकर रानी को बाहर जाने का अवसर दिया। एक नाले पर रानी का घोड़ा अड़ गया। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने रानी पर पीछे से वार किया। रानी भयानक रूप से घायल हो गई, फिर भी उस सैनिक को पलटवार कर यमपुर पहुंचा दिया। तत्पश्चात रानी ने एक सिपाही से कहा, मेरे मृत शरीर को शत्रु हाथ ना लगा पाए, और सुरलोक से धर गई। बाबा गंगादास की कुटी पर रानी की चिता बनी और उपस्थित सभी ने 18 जून को इस महान स्वतंत्रता सेनानी की चिता में अग्नि प्रदीप्त कर विदा दी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
3: गौरव भारत देश के कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रानी लक्ष्मीबाई की गौरव गाथा। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: भी आज़ादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। नजर में शोखियां लब पर मोहब्बत का तराना है। मेरी उम्मीद की जिद में अभी सारा जमाना। सामीनी बज्म हाजिर है आपकी मेजबान आज के उर्दू प्रोग्राम के साथ। शीबा नूर की जानिब से पुरखलूस आदाब कबूल कीजिए। सामीन, आज आपकी मेजबान एक ऐसे मौजू के साथ हाजिर खिदमत है जो यकीनन इस मसरूफ दौर के हवाले से नहायत अहमियत का हामिल है और आपको पसंद आएगा। जी हाँ सामईन, हंसना मुस्कुराना कौन नहीं जानता, तो शायद इस मसरूफ दौर में मुस्कुराहट हमसे कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। जहाँ कहीं पहले हमारा वक्त कहकहों के साथ गुजरता था और हर वक्त हंसी और ठट्टा हमारा मिजाज हुआ करता था, आज हम उस हंसी और ठट्टे से दूर हो चुके हैं। वजूहात हैं वो लम्हे कि जो खुद हमने अपनी ज़िंदगी में उनको अहमियत दी। जी हाँ सामईन, आज पल भर में सब कुछ पा लेना हमारी ज़रूरत बन गया है और जब वो हमें मयस्सर हो जाता है तो उससे भी हमारी चाहत पूरी नहीं होती और हम चाहते हैं कि हमें कुछ और मिले। जी हाँ सामईन, किसी ने सही कहा है, ख्वाहिशात वो चीज़ हैं जो इंसान की कभी पूरी नहीं होती, यानी कि अगर हमारे पास थोड़ा है तो हमें उससे ज़्यादा की तमन्ना हुआ करती है और उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा की। गरज ये कि हमने अपनी ज़िंदगानियों को इस कदर मुतासिर कर लिया है और इस कदर उलझा लिया है कि आज हम खुद कहीं ना कहीं पिशेमा और परेशान हैं। समीन, अगर हम किसी के होठों पर थोड़ी देर के लिए तबस्सुम बिखेर दें या मुस्कुराने पर उस इंसान को मजबूर कर दें तो यकीन जानिए यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सामईन, आज हमने प्रोग्राम में अदब में एक ऐसे ही मौजू को जगह दी है जिसका उन्वान है मुस्कुराते लम्हे, और इसके तहत आज हम आपको एक मिजाहिया तकरीर समाअत कराने जा रहे हैं। मुकद्दर हैं मोहतरमा गजाला परवीन, आइए समाअत करते हैं ये मिजाहिया तकरीर।
2: जाहिर सी बात है कि गर्मी की छुट्टियां मौज मस्ती करने के लिए ही होती हैं। अब हम जिंदगी के उस दौर में हैं, खुद तो बच्चों की तरह मौज मस्ती कर नहीं सकते, लेकिन अपने बच्चों और छोटों को मौज मस्ती करते देखकर उनकी खुशियों में शरीक होकर उन लम्हों से लुत्फ अंदोज होते हैं और कुछ लम्हों में खुद भी मुस्कुराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिन पहले, अभी जून ही की एक दोपहर थी, बाहर आंगन में सभी बच्चे मिलकर खेल रहे थे और मेरे कानों में लगातार शोर की आवाज़ें आ रही थीं। तभी मेरे बेटे ने अपनी खाला की बेटी को गोद में उठा लिया और दीवार में बने स्लैब के ऊपर बिठा दिया और फिर उसकी चीखें थीं, अल्लाह की पनाह, बचाओ बचाओ, भाई उतारो भाई उतारो। और बस ये आवाज़ें सुनने के साथ ही मैं अपने माजी में गुम हो गई और उसकी जगह मेरे कानों में मेरे कज़िन वसीम की आवाज़ें गूंजने लगी, भाई बचाओ भाई बचाओ, उतारो मुझे उतारो। इस खट्टी मीठी याद के जहन में आते ही न सिर्फ मेरे लब बल्कि उस वक्त के तमाम लम्हे भी मुस्कुरा उठे और मैं माजी की यादों में खोती चली गई। बात उन दिनों की है जब मेरे उम्र करीब 4-5 साल ही रही होगी। मैं अपनी मम्मी और भाई बहनों के साथ नानी के घर मुरादाबाद गई हुई थी। वहाँ मेरी अम्मी का एक कज़िन जो लगभग मेरा ही हम उम्र है और उसका नाम वसीम है। वसीम की अम्मी और मेरी नानी सब एक ही घर में रहते थे, जिसकी वजह से मेरी और वसीम की बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। हम एक दूसरे के साथ खाते पीते, کھیلتے کودتے، لڑتے جھگڑتے، غرض یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے بغیر چین ہی نہیں تھا، ہر وقت ساتھ ہی رہتے۔ ایک دن کی بات ہے، میرے ماموں گھر سے باہر کھڑے کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ نانی نے وسیم سے کہا، جاؤ جا کر بھائی کو بلا لاؤ۔ تو اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وسیم بھائی کو بلانے اکیلے چلے جاتے؟ ہمیں تو ساتھ ہی میں جانا تھا، بس دونوں چل دیے بلانے کے لیے باہر۔ ماموں صاحب کسی سے باتوں میں مصروف تھے اور ہم نے نانی کا پیغام ان تک پہنچا دیا کہ آپ کو نانی بلا رہی ہیں۔ ہم دونوں بھی انہی کے پاس کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ اچانک دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کہاں سے وہاں ایک بھینس کا بچہ گھومتا ہوا آ گیا۔ مجھے آج بھی جانوروں سے بہت ڈر لگتا ہے، اور اس وقت کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ مجھے جانوروں سے ڈر لگتا ہے، یہ بات سبھی کو معلوم ہے۔ بچھڑے کو دیکھتے ہی میرے ماموں کو شرارت سوجھی اور وہ کہنے لگے، چلو غزالہ کو بچھڑے پر بٹھاتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، نہیں نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا ہے۔ ماموں صاحب ہنسنے لگے اور کہا، ڈرو مت، مذاق کر رہا ہوں۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی، اور ہمارے برابر یہ جو وسیم صاحب کھڑے تھے ان کو پتہ نہیں کیا سوجی، کہنے لگے، بھائی بھائی میں بچھڑے پر بیٹھوں گا، مجھے بٹھا دیجئے۔ اور ماموں صاحب نے ہنستے ہوئے وسیم کو گود میں اٹھایا اور بچھڑے کی کمر پر بٹھا دیا۔ وسیم کا بچھڑے پر بیٹھنا تھا اور بچھڑے کا دوڑ لگانا۔ جیسے ہی بچھڑا آگے بڑھا، وسیم صاحب نے بچھڑے کے کان پکڑ لیے۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وسیم صاحب بائک پر سوار ہیں اور ہینڈل پکڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت وسیم صاحب کی چیخیں، بس کیا ہی بتاؤں، اتارو مجھے، اتارو بھائی، بچاؤ بھائی، بچاؤ کی آوازیں پوری گلی میں گونج رہی تھیں۔ اتفاق سے گلی بھی بالکل سیدھی اور لمبی تھی، اس لیے بچھڑا وسیم کو لے کر آگے تک پہنچ گیا۔ وہ منظر آج بھی میری نظروں کے سامنے جوں کا توں موجود ہے۔ جب میں ڈری سہمی اپنی جگہ پر کھڑی تھی، سب سے آگے بچھڑے پر سوار وسیم صاحب، جو اوندھے ہو کر اس کے کان پکڑے ہوئے تھے، ان کے پیچھے گلی کے دو چار لڑکے اور خود ماموں صاحب بھی بھاگ رہے تھے۔ تب کہیں جا کر کسی نے بچھڑے کی دم پکڑی تو کسی نے بچھڑے کی ٹانگ پکڑ کر اس کو روکا۔ تب پھر ماموں صاحب نے وسیم کو بچھڑے پر سے نیچے اتارا۔ وسیم روتے دھوتے، آنکھیں ملتے ہوئے میرے پاس تک آئے۔ ماحول کی افراتفری تھوڑا کم ہوئی اور سب کی جان میں جان آئی۔ وسیم صاحب، جن کی چیخیں ابھی کچھ دیر پہلے آسمان چھو رہی تھیں، اب میرے برابر کھڑے مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب کبھی بچھڑے پر نہیں بیٹھوں گا، تمہاری جگہ میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میری جگہ کیوں بیٹھتے، تم نے خود ہی تو کہا تھا بھائی میں بیٹھوں گا، بھائی میں بیٹھوں گا۔ خیر، سب نے چین کی سانس لی۔ پھر ہم نانی کے گھر واپس آ گئے۔ آنے کے بعد سب کو وسیم کا قصہ سنایا گیا۔ سب ہی کو ہنسی آ رہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ ماموں صاحب کو بھی ایسی غلطی دوبارہ نہ کرنے کی تاکید کی جا رہی تھی۔ ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس تھا۔ اس وقت وہ بھی شاید یہی سوچ رہے ہوں گے، جان بچی لاکھوں پائے، خیر سے بدھو گھر کو آئے۔ آج اس بات کو سالوں بیت گئے، بلکہ ہمارے اپنے بچے بھی بڑے ہونے لگے۔ مگر یہ واقعہ آج بھی ہم لوگوں کو یاد ہے۔ جب کبھی ہم لوگ ملتے ہیں اور بچپن کی باتیں کرتے ہیں، یادیں تازہ کرتے ہیں، تو اس قصے کا ذکر ضرور شامل ہوتا ہے اور ہم اس منظر کو یاد کر کے مسکرانے لگتے ہیں۔ آج بھی وسیم صاحب کا وہی ایک پرانا ڈائلاگ ہے کہ میں تمہاری وجہ سے بچرے پر بیٹھا تھا اور میرا بھی، نہیں تم نے خود کہا تھا بھائی میں بیٹھوں گا، بھائی میں بیٹھوں گا۔ اس قصے کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ بچپن کی یہ کھٹی میٹھی یاد ہمیشہ ہمیشہ۔
1: تو سامعین، آئیے اب ہم لیے چلتے ہیں آپ کو پروگرام کے اس حصے کی جانب جہاں شعر و شاعری کی پرلطف محفل جلوہ گر ہے۔ اور سامعین، شاعری وہ جذبہ رکھتی ہے جو ہمارے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگاتی ہے، جو ہماری تہذیب کی علم بردار رہی ہے۔ اور شاعری وہ صنف ہے کہ جس میں ہم اپنے تمام دل کے تاثرات پیش کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہ سامعین، آپ سب جانتے ہیں کہ اردو شاعری سے ہمارا تعلق صدیوں پرانا ہے، جس کے چاہنے والوں نے صنف شاعری کو وہ مقام بخشا جو قابل قدر ہے۔ اس صنف نے دلوں پر راج کیا ہے اور آج بھی اس مصروف دور میں شاعری ہر دھڑکتے دل کی دھڑکن قرار دی جاتی ہے۔ جی ہاں سامعین، دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا جو ذریعہ غزل ہے، وہ شاید کوئی دوسری صنف نہیں۔ تو سامعین، آئیے اسی کے تحت آپ کو سماعت کراتے ہیں جناب منظر واحدی سے ان کا یہ مزاحیہ کلام سلسلہ کلام شاعر کے تحت۔ تو سامعین، آئیے اب ہم لیے چلتے ہیں آپ کو پروگرام کے اس حصے کی جانب جہاں شعر و شاعری کی پرلطف محفل جلوہ گر ہے۔ اور سامعین، شاعری وہ جذبہ رکھتی ہے جو ہمارے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگاتی ہے، جو ہماری تہذیب کی علم بردار رہی ہے۔ اور شاعری وہ صنف ہے کہ جس میں ہم اپنے تمام دل کے تاثرات پیش کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا جو ذریعہ غزل ہے، وہ شاید کوئی دوسری صنف نہیں۔ تو سامعین، آئیے اسی کے تحت آپ کو سماعت کراتے ہیں جناب منظر واحدی سے ان کا یہ مزاحیہ کلام سلسلہ کلام شاعر کے۔
3: عرض کرتا ہوں کہ ایک بہاری، ایک قصائی، ایک ڈوم۔ ایک بہاری، ایک قصائی، ایک ڈوم، ان دماغوں میں مراتب کا خلل، ان دماغوں میں مراتب کا خلل، جل چکی ہیں رسیاں باقی ہیں بل، جل چکی ہیں رسیاں باقی ہیں بل، زم ہوئے ہیں جن میں احباب سخن، کیا غزل ہے اب بنی باجے پہ دھن۔ زم ہوئے ہیں جن میں احباب سخن، کیا غزل ہے اب بنی باجے پہ دھن۔ ہے بہاری کی غزل بھی شاندار، ہے بہاری کی غزل بھی شاندار، جس کے شعروں سے معانی ہے فرار، مارتی ہے تگڑی خالی پیلی بوم، ایک بہاری، ایک قصائی، ایک ڈوم۔ مارتی ہے تگڑی خالی پیلی بوم، ایک بہاری، ایک قصائی، ایک ڈوم۔ دوسرا بند سماعت فرمائیں کہ صاحب اعزاز دو جج ایک فقیر، کہ صاحب اعزاز دو جج ایک فقیر، حاشیے پر شہر کے شیری نشست، اتفاقاً ساتھ ہیں دوزخ بہشت، یوں چلائیں گے یہ آگے بات کو، طے کریں گے شاعری کی ذات کو، طے کریں گے شاعری کی ذات کو، ملک میں ایسا کوئی شاعر نہیں، آپ اور ہم ہیں روایت کے امی، آپ اور ہم ہیں روایت کے امی، اتفاقاً ساتھ ہیں دوزخ بہشت، یوں چلائیں گے یہ آگے بات کو، طے کریں گے شاعری کی ذات کو، ملک میں ایسا کوئی شاعر نہیں، आप और हम हैं रिवायत के अमी, यानी दो अंधे हैं एक रोशन जमीर, साहिब एजाज दो जज एक फकीर। यानी दो अंधे हैं एक रोशन जमीर, साहिब एजाज दो जज एक फकीर। तीसरा बंद मुलाहजा करें, खुश हैं शोहरत की नई ईजाद पर, साल में महफिल सजा कर एक बार, चाहते हैं तब सरे हों बेशुमार। खुश हैं शोहरत की नई ईजाद पर, साल में महफिल सजा कर एक बार, चाहते हैं तब सरे हों बेशुमार। लेके झांसे में किसी जरदार को, खुश किया जाता है रूठे यार को, शाल इसको दी उसे पीतल की चील। लेके झांसे में किसी जरदार को, खुश किया जाता है रूठे यार को, शाल इसको दी उसे पीतल की चील। शोहरते ताबूत में एक और कील, मुर्गियां हों जैसे देसी खाद पर, खुश हैं शोहरत की नई ईजाद पर। शोहरते ताबूत में एक और कील, मुर्गियां हों जैसे देसी खाद पर, खुश हैं शोहरत की नई ईजाद पर। मेरी इस नज्म में शहर की तस्वीरें नजर आएंगी कि कौन कैसा है, क्या है, क्या किया है उसने, और ये हकीकत पे मबनी है। ये हमारे शहर के जरदार हैं, ये हमारे शहर के जरदार हैं, अपनी अपनी खलवतों में रात को उल्टा कर लेते हैं सीधी बात को, रात करके दिन में शब के जायके, करते हैं आपस में उन पर तबसरे, और जो घर में हैं उनके सीम तन, उनके दिल में गैर लोगों की लगन, बस खुदा के कहर के आसार हैं, ये हमारे शहर के जरदार हैं। बस खुदा के कहर के आसार हैं, ये हमारे शहर के जरदार हैं। अब शेर मुलाजा करें बंद के, एहतराम इनका करें सैयद कहें। एक भिकारी से कहा मैंने मियाँ, के एहतराम इनका करें सैयद कहें। एक भिकारी से कहा मैंने मियाँ, क्यों तुम्हारी कौम को है अब जियाँ। मुझसे वो बोला बुरा मानेंगे आप, आजकल सच बोलना होता है पाप। मुझसे वो बोला बुरा मानेंगे आप, आजकल सच बोलना होता है पाप। हो भला उनका जो हमसे कट गए, सब भिकारी सैयदों में पट गए, क्या हकीकत जानकर भी चुप रहें। एहतराम इनका करें सैयद कहें। अब यहाँ के मौलवियों के हालात हैं, ये हैं पेशावर मुकर्रर मौलवी, जो मज़ारों से नहीं मांगे मदद, कुफ्र की उसको ये देते हैं सनद। जो मज़ारों से नहीं मांगे मदद, कुफ्र की उसको ये देते हैं सनद। जो मज़ारों से नहीं मांगे मदद, कुफ्र की उसको ये देते हैं सनद। जब तलक कहते नहीं ये सख्त व सुस्त, हाजमा होता नहीं इनका दुरुस्त। कब नज़र में अजमते इस्लाम है, इनको अपनी रोटियों से काम है, कर रहे हैं बिदअतों की पैरवी, ये हैं पेशावर मुकर्रर मौलवी। अब यहाँ के डॉक्टर हैं, आप उनसे भी वाकिफ होंगे और आपके सामने तस्वीर आ जाए। डॉक्टर हैं आप मिलिए आपसे, अपनी बेगम साहिबा के सर के ताज, तस्वीर आ जाए। डॉक्टर हैं आप मिलिए आपसे, अपनी बेगम साहिबा के सर के ताज, आप करते हैं फकत दिल का इलाज। रहम करते हैं गरीबों पर नहीं, रहम करते हैं गरीबों पर नहीं, पैसे कम लेना बुरा इनके तई, हो रियायत बिल में इनसे मत कहो। पैसे कम लेना बुरा इनके तई, हो रियायत बिल में इनसे मत कहो। तंग दस्ती है तो घर को बेच दो, हो रियायत बिल में इनसे मत कहो। तंग दस्ती है तो घर को बेच दो, पुण्य भी करते हैं तो ये पाप से। डॉक्टर हैं आप मिलिए आपसे, डॉक्टर हैं आप मिलिए आपसे। अब यहाँ के दोस्तों के हाल सुन लीजिए कि दोस्त कैसे हैं यहाँ के। याद हैं मुझको तुम्हारे 500, मैंने कब मांगे थे तुमने खुद दिए। याद हैं मुझको तुम्हारे 500, मैंने कब मांगे थे तुमने खुद दिए। अपने हम असरों से फिर कहते फिरे, क्या ये सौदा था मेरे ईमान का, क्या ये सौदा था मेरे ईमान का। समझा था चेला मुझे शैतान का, चंद सिक्कों पर बिगाड़ूं अपना दीन, ये तवक्को तो कभी रखना नहीं। चुप रहूं मैं यूं फसाई थी ये फुप्पो, याद है मुझको तुम्हारे 500। समझा था चेला मुझे शैतान का, चंद सिक्कों पर बिगाड़ूं अपना दीन, ये तवक्को तो कभी रखना नहीं। चुप रहूं मैं यूं फसाई थी ये फुप्पो, याद है मुझको तुम्हारे 500। अब यहाँ की सियासत का अर्ज करता हूँ कि ये सियासी हैं हमारे शहर के, जिनकी आंखें हैं ना अपने कान हैं, और फिर भी शहर भर की जान हैं। सियासी हैं हमारे शहर के, जिनकी आंखें हैं ना अपने कान हैं, और फिर भी शहर भर की जान हैं। रात को ये दिन कहें तुम भी कहो, इस तरह इज्जत मिलेगी सोच लो, जाके इनकी जी हुजूरी कीजिए, आरजुएं अपनी पूरी कीजिए। रात को ये दिन कहें तुम भी कहो, इस तरह इज्जत मिलेगी सोच लो, जाके इनकी जी हुजूरी कीजिए, आरजुएं अपनी पूरी कीजिए। पालते हैं सांप ये बिन जहर के, ये सियासी हैं हमारे शहर के। पालते हैं सांप ये बिन जहर के, ये सियासी हैं हमारे शहर के। आप जिल्लल्लाह अली जाह हैं, आप माइल हो गए उनकी तरफ, जिनकी पोशाकें उगलती हैं कलफ, अपने पाले छोड़कर जो आए हैं, कौन इनका बाप किसके जाए हैं। दोगले आए तरक्की कर गए, असल अपनी असलियत पर मर गए, क्या हमारे हाल से आगाह हैं। आप जिल्लल्लाह अली जाह हैं। फायदे में हैं बहुत सैयद पठान, फायदे में हैं बहुत सैयद पठान, इनकी नस्लों में इजाफा दिन ब दिन, इनकी नस्लों में इजाफा दिन ब दिन, खुद बदलने से उन्हें परहेज है, यूं भी तो इनकी जमीन जरखेज है, कौम कोई भी बदलता है यहाँ, कौम कोई भी बदलता है यहाँ, खान कोई बनता है कोई, दोनों नस्लों पर खुदा है मेहरबान, फायदे में हैं बहुत सैयद पठान, फायदे में हैं बहुत सैयद पठान, इनकी नस्लों में इजाफा दिन ब दिन, इनकी नस्लों में इजाफा दिन ब दिन, खुद बदलने से उन्हें परहेज है, यूं भी तो इनकी जमीन जरखेज है, कौम कोई भी बदलता है यहाँ, कौम कोई भी बदलता है यहाँ, खान कोई बनता है कोई मियाँ, दोनों नस्लों पर खुदा है मेहरबान, फायदे में हैं बहुत सैयद।
0: और सामईन, इसी के तहत अब हम आपको समाप्त करा रहे हैं ये ओबी, यानी कि आज हमने आपको कहीं ना कहीं मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, तो यकीन जानिए मुस्कुराहट जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं मेघा। तो मेघा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मुस्कुराहट इंसान के लिए कितनी जरूरी है।
4: थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है
0: जी,
4: कि जब सामने वाला मुस्कुरा रहा होता है तो दूसरे वाले इंसान के फेस पे खुद ब खुद आ जाती है
0: जी।
4: क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफ है आज के समय में, लाइफ बहुत ज्यादा ही हैक्टिक हो चुकी है, बहुत टेंशन भरी है।
0: मेघा, आज का जो वक्त है वो निहायत मसरूफ वक्त है, एक झटके में सब कुछ पा लेना और फिर कहीं ना कहीं एक झटके में सब कुछ गंवा देना, ये कहीं ना कहीं हमारे नौजवान नस्ल की एक अहम जरूरत है और ये एक फिक्र का मौजू भी है। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है मुस्कुराहट यानी हंसी पर, जो कहीं ना कहीं हमसे पीछे छूट गई है। अब से कुछ वक्त पहले जब हम अपने कॉलेजेस में या स्कूलों में पढ़ा करते थे तो अपने दोस्त और अहबाबों के साथ इतना वक्त गुजारते थे कि शायद आज उसके लिए हम तसव्वुर नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं हम इतना हंसा करते थे कि उस हंसी पर भी हमें डांट सुनने को मिला करती थी। लेकिन आज वहीं उसके बरक्स जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इस कदर मसरूफ हो चुके हैं कि उनके चेहरे पर हंसी हमें दिखाई नहीं देती, और अगर दिख जाए तो क्या बात है। तो आपके ख्यालात क्या हैं इस अहम मौजू पर?
4: मैम जैसे कि आप कह रही हैं बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज की जो नौजवान पीढ़ी है यानी जो यूथ है उनकी लाइफ इतनी ज्यादा हैक्टिक हो चुकी है, इतनी ज्यादा टेंशन से भर चुकी है कि मुस्कुराना तो एक तरह से गायब ही हो चुका है उनके लिए।
0: टेंशन ज्यादा नजर,
4: बहुत ज्यादा टेंशन, क्योंकि मैम एक सबसे बड़ी चीज ना क्या हो चुकी है लाइफ में, लाइफ से डिसिप्लिन चला गया है। और मैम दूसरी चीज ये हो चुकी है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में केओस बहुत हो गया है, बहुत अव्यवस्थित हो चुकी है लाइफ, जहां हम एक टाइम में 10-10 टास्क करना चाहते हैं। अच्छा, फिर आज का कॉम्पिटिटिव जमाना इतना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे से जो हम कंपटीशन
0: कंपटीशन
4: करना
0: करने
4: चाहते
0: लगे
4: हैं,
0: हैं जी
4: वो चीज भी हमारे अंदर की हंसी खुशी सब गायब करती
0: जी
4: जा रही
0: बिल्कुल
4: है।
0: बिल्कुल
4: और मैम, सबसे बड़ी चीज क्या हो चुकी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज भी वो हमारे हेल्थ को बहुत इफेक्ट
0: जी
4: करती है,
0: बिल्कुल
4: जिस वजह से हम इंटरनली भी खुश नहीं है। और मैम, एक चीज मैं ये कहूंगी कि अगर हम इस चीज पर ध्यान दें, क्योंकि एक बहुत गंभीर विषय है,
0: जी
4: मुझे लगता
0: बिल्कुल
4: है आज के
0: बिल्कुल
4: टाइम में
0: इस
4: कोई
0: वक्त
4: ध्यान
0: का
4: नहीं
0: तो बहुत
4: देता।
0: अहम मौजू
4: तो मैम, मुझे लगता है आज के टाइम में कोई इस चीज पर ध्यान देता नहीं है,
0: जी
4: बट आजकल के जो यूथ है, इंक्लूडेड मी, मैं अपने लिए भी कहूंगी कि हम लोग अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि हम छोटी छोटी चीजों में गुस्सा करने लगे हैं।
0: जी बिल्कुल
4: और हमें, हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हमारे ऊपर काम का बहुत ज्यादा बोझ होता है, तो हम उस ऐसे बोझ की वजह से बीमार होने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो हंसी तो हमारे चेहरे से गायब ही हो चुकी है।
0: मेगा, हंसी और खुशी उसका ताल्लुक हमारी जिंदगियों से बहुत गहरा है। यकीन जानिए, अगर हम कुछ लम्हों के लिए भी किसी के होठों पर मुस्कुराहट ले आए तो ये बड़ी बात है। और अगर हम खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को भी यकीनी तौर पर हम खुश देखना चाहेंगे। लेकिन आज मामला कहीं कुछ और है। आज एक झटके में सब कुछ पा लेना और फिर दूसरे झटके में वो सब कुछ गंवा देना, शायद इसने हमारी हंसी और खुशी को हमसे छीन लिया है, जिससे हमारे वालिदैन भी मुतासिर होते हैं, हमारी भाई बहन भी मुतासिर होते हैं,
4: बिल्कुल
0: हमारे
4: सही कहा
0: आसपास के
4: मैम
0: लोग भी
4: आपने।
0: मुतासिर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें खुद कदम उठाना होगा और हमें जो हमारे ऊपर बोझ हमने खुद अपना लादा हुआ है उसे कहीं ना
4: काम
0: कहीं कम
4: करना
0: करना होगा। यकीन जानिए, शायद हमारी जिंदगी कुछ आसान हो पाएगी और पुरानी जो हंसी है या मुस्कुराहट है वो हमारे होठों पर वापस आएगी।
4: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली शुरुआत हमें घर से करनी
0: जी
4: होगी।
0: बिल्कुल
4: घर में, अगर हमारी पूरी फैमिली में, हमारे मम्मी पापा दादी दादा या जो भी हमारे साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है सिंगल, तो हमें सबसे पहले शुरुआत उन्हीं के जरिए करनी होगी। पहले तो चीज़ तो यही है कि हमें अपनी टेंशन को कम करके सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि हम लोगों को सबको एक साथ
0: जी
4: बैठना
0: बिल्कुल
4: होगा, अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर करनी होंगी ताकि प्रॉब्लम्स भी कम हो।
0: जी
4: और सबसे पहली चीज़ यही करनी होगी कि हमें जो है अपनी फैमिली के साथ खुश रहना पड़ेगा,
0: जी
4: हमें छोटी
0: अपने
4: छोटी चीजों पे गुस्सा करना छोड़ना होगा, और हमें एक अपने अंदर बदलाव लाने की बहुत
0: जी
4: बड़ी
0: बिल्कुल
4: जरूरत है ताकि हम खुश रह सकें।
0: जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें बैठकर बात करनी होगी और अपने आप में बदलाव लाना होगा। यकीनन यही एक अहम मौजू है कि हम अपने वालिदैन को अपना वक्त दें, उनकी बात हम सुने। और बहुत कुछ पा लेना किसी चीज़ का हल नहीं है, जो हमारे पास है वो बहुत हम कोशिश करते हैं लेकिन उसका जो नतीजा है वो आप और हम सभी जानते हैं कि वो ऊपर वाले के हाथ में है।
4: जी जी जी
0: कोशिश हम
4: बिल्कुल,
0: करते हैं, पूरा करना उसका
4: उनके
0: काम
4: हाथ
0: है।
4: में
0: अगर
4: है।
0: हम ये बात वाज़े तौर पर समझ लें तो शायद ये मुस्कुराहट और ये हंसी हमसे कभी
4: कभी
0: दूर ना
4: नहीं दूर
0: होगी।
4: होगी।
0: और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि मुस्कुराने की जो वजह होती है ना, वो भी हमें अपने आसपास अपने वालिदैन से ही मिलती है। और हमारे माँ बाप वो खजाना है कि जो हमारे एक सीमित वक्त के लिए हमारे साथ हैं, और शायद जब वो नहीं होते तो हमें उसका एहसास होता है, उनके साथ बिताए हुए उन लम्हों
4: पलों
0: का,
4: का
0: उन पलों का एहसास होता है। तो आज से आइए हम सब एक वादा करते हैं कि हम खुद भी मुस्कुराएंगे और दूसरों को भी मुस्कुराने
4: एक
0: पर
4: पर
0: मजबूर कर
4: मजबूर कर
0: देंगे। हम
4: देंगे।
0: अपने आप को, अपनी आदतों को ऐसा बनाएंगे कि जो लोग हमसे मिलें या जो हमारे साथ रहें वो हमेशा खुश रहें।
4: खुश रहें।
0: मुश्किलों में हौसले और हर हाल में अपने ख्वाबों को पूरा कर लेने का नाम उम्मीद है, और ये हमारी जिंदगानियों का अहम हिस्सा और मौजू है। समय हमें अंधेरों में रोशनी की किरण तलाश करनी चाहिए, और हकीकत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर रात के बाद एक नई सुबह का आना तय है। हमें हमेशा एक बेहतर कल की उम्मीद रखना चाहिए। बिल्कुल, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
4: थैंक यू सो मच।
0: और समय, इसी के साथ अब वक्त हो चला आपसे इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए उनवान, नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।
5: अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को इरम फातिमा का नमस्कार। साथियों, आपके अनुरोध पर हम सुनवा रहे हैं आप सभी की फरमाइश के गीत। पहली फरमाइश हमें लिख भेजिए। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर ने जसपुर उत्तराखंड से, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणीता गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाड़कर, श्वेता स्मित गवाड़कर, कुमारी धमनी गवाड़कर, परी टुक टुक गवाड़कर, ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हमें अनुरोध पत्र लिख भेजा है। नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साईं गायकवाड़ ने, नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नाहवकर और विशाल नाहवकर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक विरक, मीका विरक, बोरी खुर्द से श्री सुधाकर, राजी जाधव, डॉक्टर प्रशांत, स्वर्गीय जगुताई, साक्षिताई, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्राणी देशमुख, सानवी देशमुख करडा, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढूमने, चंचल ढूमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलदाड़ा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और नरवाड़े और आकाश कुमार, नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से फरमाइश लिख भेजी है। अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिस वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, अमन अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख, टीना शेख ने कुवात बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, नूर महल महसूल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू ने। आप सभी ने सुना चाहा है ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है शागिर्द।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश इंदिरा विहार रायगढ़ से लिख भेजिए अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वलीउल्ला नूरजहां ने राजनांद गांव से, याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी ने, डाबर तालाब लोनी से फरमाइश की है रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा ने, बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, नितिन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूरत ने, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से अनुरोध करता है, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बेहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन समरराज, आर्यन वर्मा, बेबी अरोही, इशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा। आदर्श नगर मलोट से हमें अनुरोध लिख भेजा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निमान शर्मा ने। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से अनुरोध किया है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनिष्का, तन्मय गजभिये ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवागन, कौशल्या देवागन, हेमलता देवगन और डिम्पल देवागन ने। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और नायक परिवार के, डागला परिवार के, डागला परिवार के सभी सदस्यों ने। आप सभी ने सुनना चाहा है हमराज फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से। आपके साथ आपकी रेडियो सहेली इरम फातिमा। अगली फरमाइश वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख। करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया शुएब खान की है। मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदा रानी और हिना कौसर की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान हादिया खान असमा सालिया शुएब खान मुश्ताबा खान रऊफ भाई शाहिद भाई गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली कटनकर। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से फरमाइश लिख भेजी है मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमश खत्री रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। आप सभी ने सुनना चाहा है पड़ोसन फिल्म का गीत लता मंगेशकर आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। आपकी पसंद का ये गीत आपकी नजर है।

पड़ोसन फिल्म के इसी खूबसूरत गीत के साथ इजाजत दीजिए कार्यक्रम आपके अनुरोध पर यहीं संपन्न करने की। इरम फातिमा को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरा दौर।

ये गीत आपने सुना फिल्म आंखें से आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में। अगला गीत फिल्म हीरो से सुनिए रेशमा की आवाज में।

श्रोताओं, सुनहरा दौर में अभी आप सुन रहे थे 90 के दशक के कुछ फिल्मी नगमे। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

0: पर भी आज़ादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

और फन बी मिसाल है। चारबेत की सफर पर आधारित इस धारावाहिक की पिछली चार कड़ियों में आपने सुना कदीम दौर की चारबेत लिखने वालों ने सेहती जबान का ध्यान रखते हुए अदबी जबान में भी चारबेतें लिखी, लेकिन आम लोगों ने इन अदबी रंग की चार बैतों को पसंद नहीं किया, क्योंकि इन चार बैतों में जज्बात की न तो तर्जुमानी थी और न जोशी बयान था। उन्हें तो पश्तो और हिंदकों की तर्ज पर लिखी गई चार बैतें पसंद थी। आपने ये भी सुना कि जब चार बैत की अखाड़े बन गए तो चार बैत को नई नई हैयत की चार बैतें कहने लगे, जिनमें जंजीरी चार बैत बहुत मकबूल हुई। नए नए मौजूद पर चार बैतें लिखी जाने लगी। अगर कोई खास घटना होती तो उसे भी चार बैत में बयान कर दिया जाता और फन बेमिसाल है। आइए चार बैत के सफर पर आधारित आज सुनते हैं इस धारावाहिक की पांचवी कड़ी।

फकीर जिलानी का हिंद को चार बेता याद आते हैं। उस्ताद शैदा भी तड़प उठे और उन्होंने ये चार बैत कही।

0: लिखी हुई मिलती हैं या आधी अधूरी कुछ लोगों को जुबानी याद हैं या सीना बसीना चली आ रही हैं। इनमें जिंदगी के हर पहलू को मौजुए सुखन बनाया गया है। इन चार बैतों के मौजूआत हैं मजहबी, जिसमें हमद है, नात है और मनकबत है। अखलाकी, इनमें बुजुर्गों की नसीहतें, हिदायतें और दुनिया से दिल लगाने को मौजू बनाया गया है। आशिकाना, इनमें वसल और हिजर की कैफियत और इजहार मोहब्बत जैसे मजामीन को मौजुए सुखन बनाया गया है। इस मौजू पर सबसे ज्यादा चार बैतें मिलती हैं।
1: जानो पे

0: मौसम से मुतालिक चार बेती, जैसे बसंत, मौसमी बहार, बरसात, बारह मासा यानी बारह महीनों की कैफियत का बयान। त्योहारों का बयान, जैसे ईद, होली, दिवाली, दशहरा वगैरह। मदह यानी किसी की तारीफ या मुबारकबादी। हिजब यानी किसी पर तंस करना या उसकी कमजोरियों को बयान करके उसका मजाक उड़ाना। महबूब का सरापा, जैसे उसके सिंगार, चाल, तर्ज तकल्लुम, लिबास और जिस्म के दूसरे आज़ा की तारीफ करना। तज़मीन यानी ऐसी चार बैतें जिनमें गालिब और मीर जैसे उस्ताद शायरों की गज़लों के मिसरे या शेर को चार बैत में शामिल करके चार बैत लिखना। सहरा और बरसाती या मल्हारे। चार बैत के मौजूआत की वसत के बारे में रजा हमदानी की राय नहायत अहम है।
1: चार बैत के मौजूआत का दायरा बहुत वसी है। इसमें आवामी और क्लासी की शायरी के मौजूआत और मजामीन शामिल हैं। एक आवामी शायरी की हैसियत से चार बैत ने ख्याल, कजरी, बारामासा, मल्हार, बिरह गीत, ढोलक गीत, आवामी किस्से, नीम तारीखी अफसानवी हिकायात, वीर गाथा वगैरह के मौजूआत को अपने अंदर समो रखा है, तो दूसरी तरफ क्लासी की शायरी की असनाफ, मसलन गज़ल, मसनवी, मरसिया, कसीदा, शहर आशोब, बासोख, हिजो, तवील रज़मिये, नज़्म और हमदो नात वगैरह के मौजूआत व मजामीन का भी बखूबी अहाता किया है।
0: ग़ुलाम नबी खां माजी की हमद का नमूना सुनिए।
2: तायराने बागी वहदत तेज पर के सामने, जागे दुनिया क्या उड़े उनकी नज़र के सामने। तूतियाँ अलहमद ख़ुआ हैं, कुल हो अल्लाह वहद। कुमरियाँ दर इश्क़ हक बढ़ती हैं, अल्लाहुस्समद। बुलबुलें नगमा सरा हैं, यादे हक में लम यलद। ज़िक्र हक बस ख़त्म है मुर्गे सहर के सामने। तायरानी बागी वहदत तेज बर के सामने, जागे दुनिया क्या उड़े उनकी नज़र के सामने।
0: रोहेलखंड के पठानों, ख़ास तौर से रामपुर के रोहेलों की आदत, खसलत, तर्ज ज़िंदगी और शायरी का अंदाज ही निराला है। मौसम बरसात की भीगी भीगी हवाओं में जब वसल की तमन्ना जाग उठती है, तो कमर उस्ताद को महबूब के बजाय मदीने की याद सताने लगती है। नात का ये बागपन सिर्फ रोहेलों की अकीदत में ही दिखाई देता है।

चार बैत के सफर में बहुत से ऐसे वाकयात भी होते थे और चार बैतों के मुकाबलों में आज भी होते हैं, जो पठानों की आदतों खसलत और कबाइली मिजाज का पता देते हैं। रोहेला पैदाइशी फौजी थे, दुश्मनों से मुकाबला करना उनकी फितरत थी। जब कुछ अरसे के लिए जंगों का जमाना खत्म हो गया तो मुकाबला करने की तमन्ना फिर जाग उठी। चार बैत के अखाड़ों में मुकाबला शुरू हो गया। अल्लाह।

0: और झूठ की चार बातें कही जाने लगी। इसकी तफसील शब्बीर अली खां शकीब ने बयान की है।
1: पहलवानों की तरह इन अखाड़ों के दरमियान बाहमी मुकाबले भी हुआ करते हैं, जिनमें हर फरीक बेहतर से बेहतर कलाम पेश करने की कोशिश करता है और दूसरे की उम्दा और कामयाब चार बैत में जोड़े की चार बैत कहता है। कभी कभी मुकाबले में उस्तादों ने फिलवदी यानी उसी वक्त भी चार बैतें कही हैं। मुकाबले में हारने वाला खुशी खुशी शिकस्त कबूल कर लेता है।
0: रामपुर में नवाब दरवाजे के करीब सद्दन शामिया के मजार पर एक तारीखी मुकाबला उस्ताद किफायतुल्लाह खां के दो शागिर्दों उस्ताद महबूब अली और उस्ताद गुलाम नबी खां माजी के दरमियान हुआ था, जो 3 दिन 3 रात जारी रहा, जिसमें उस्ताद माजी ने फतेह पाई। जब बात चली है चार बैत के मुकाबले की, तो मुनन उस्ताद की छूट की चार बैत भी सुन लीजिए, जो पठानों की कबाइली मिजाज

0: और मड़क की नुमाइंदगी करती है।
1: आता है मेरे सामने मुझे मरोड़ कर, एक रोज फेंक दूंगा तेरी टांगे तोड़ कर। आता है मेरे सामने मुझे मरोड़ कर, एक रोज फेंक दूंगा तेरी टांगे तोड़ कर। बातें अजब हैं इनकी, निराली है इनकी शान, करते हैं हर बशर से अदावत की गुफ्तगू। सीना निकाले फिरते हैं वो आज चार सू, भागे थे कल लड़ाई में जो जूते छोड़कर। आता है मेरे सामने मुझे मरोड़ कर, किस तरह शर्म आए उसे छूट से मेरी। हरदम वो सुनता रहता है सबकी बुरी भली, कब उसके दिल में रहता है खौफे बरहनगी। फिरता है बेहयाई की चादर जोड़ कर, एक रोज फेंक दूंगा तेरी टांगे तोड़ कर। ये झूठी सच्ची बातें तो आती नहीं मुझे, कर कायदे की बात झिझकता है किस लिए। शायर तो यूं तो बनता है हर एक के सामने, मुझको भी तो दिखा दे गजल कोई जोड़ कर। आता है मेरे सामने मुझे मरोड़ कर, कोशिश से अपनी गो नहीं गाफिल है लम्हा भर। नाकामिया ही वक्त में लेकिन है सर बसर, बाजी तो बद रहे थे मुनन मुझसे वो, मगर मायूस होके रह गए जेबे खकोड़ कर। आता है मेरे सामने मुझे मरोड़ कर, एक रोज फेंक दूंगा तेरी टांगे तोड़ कर।
0: इस चारबैत के अल्फाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चारबैत के मुकाबलों में दोनों पार्टियों का क्या हाल होगा। ऐसा लगता था जैसे दो अखाड़ों के पहलवान आमादाए जंग हो। हालांकि ये तेवर और गुस्सा सिर्फ वक्ती होता था, आपस में न कोई रंजिश थी न अदावत। महफिल खत्म होने के बाद सब एक दूसरे से खुशी खुशी गले मिलते थे।

और फन बेमिसाल है। अभी आपने चार्वेद के सफर पर आधारित इस धारावाहिक की आज की पांचवी कड़ी सुनी। इस धारावाहिक के लेखक हैं नफीस सिद्दीकी। भाग लेने वाले कलाकार थे सैयद मोहम्मद आदिल, सैयद नवीद कैसर शाह, फायजा जुबैर, मुमताज़ अजीम बर्नी, जुबैर शाह खां और सुरेंद्र राजेश्वरी। गायन स्वर शन्नू खां और साथियों के थे। सहायक प्रस्तुतकर्ता थे सुरेंद्र राजेश्वरी और असीम सक्सेना। इस धारावाहिक की प्रस्तुतकर्ता हैं मनदीप कौर।

श्रोताओं, कार्यक्रम मन भावन में प्रीति का आप सभी को नमस्कार। कार्यक्रम मन भावन के अंतर्गत पहली शब्दावली हमें भेजी है सिमरन खान ने, राजद्वारा कोठी अफसर आला रामपुर से, रूमा खान, बॉबी खान, सुभान, मदीहा, गुलफशा, जीनत, अमान, शबनम, अब्बासी, शमा परवीन। और इन्होंने लिखा है, सब्र इख्तियार करो, सब्र ऐसी सवारी है जो कभी ठोकर नहीं खाती, मीठी जुबान बेशुमार दुश्मनों से बचाती है, दौलत की हिफाजत इंसान करता है जबकि इंसान की हिफाजत इल्म करता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इंसान की हिफाजत इल्म करता है और इंसान दौलत की हिफाजत करता है। आइए सुनिए इनकी शब्दावली पर आधारित ये प्यारा सा नगमा।

0: का कोई रॉबिन हुड।
1: अंडरस्टूड।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन प्रीति के साथ में, और मन भावन कार्यक्रम में हमें अगली शब्दावली भेजी है मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज मिनारा ने। ये लिखते हैं, कृषि में औरतों की भूमिका बहुत बड़ी है लेकिन अक्सर छिपी रहती है। भारत में खेतों से जुड़े कामों में 60-70% महिलाएं शामिल हैं। बीज बोना, निराई गुड़ाई करना, फसल काटना, बीज साफ करना और घर के पशुओं की देखभाल करना पहले एक काम सिर्फ मद माना जाता था, लेकिन अब महिलाएं खुद FPO चला रही हैं, जैविक खेती कर रही हैं और सीधे मंडी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना माल भी बेच रही हैं। ड्रोन चलाने, सोलर पंप लगाने और एग्रीटेक ऐप इस्तेमाल करने में भी अब गांव की लड़कियां और महिलाएं आगे आ रही हैं। सरकार और NGOs अब महिलाओं को कृषि उद्यमी बना रहे हैं। किसान समूह को कम ब्याज पर लोन, ड्रोन ट्रेनिंग और नए बीज की जानकारी प्राप्त हो रही है। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ रही है बल्कि गांव में उनकी आवाज और इज्जत भी बढ़ रही है। जब एक महिला खेती में फैसला लेने लगती है तो घर की सेहत, बच्चों की पढ़ाई और पूरे खेत का मैनेजमेंट बेहतर होता है। असल में खेती का भविष्य महिलाओं के हाथ में ही मजबूत हो रहा है। गांव और छोटे शहरों में महिलाएं अचार, मुरब्बा, पापड़, मठरी और मसाले जैसे छोटे छोटे घरेलू उद्योग से खुद की पहचान बना रही हैं। ये काम घर की रसोई से शुरू होता है जहां पारंपरिक रेसिपी और साफ सफाई के साथ तैयार किया गया सामान धीरे धीरे पड़ोस, लोकल दुकानों और अब तो ऑनलाइन भी बिक रहा है। कम पूंजी में शुरू होने वाला ये काम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है। घर के कामों के साथ आसानी से संभाला जा सकता है। महिलाओं समूह और स्वयं सहायता समूह मिलकर बड़ी मात्रा में उत्पादन प्रदान करते हैं, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ अपनी कमाई को बढ़ा रहे हैं। आज कई महिलाएं सिर्फ घर चलाने तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि अपने हाथ पांव और कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत करके अपने कारोबार को भी गांव से लेकर शहर तक बढ़ा रही हैं और साथ ही अपना नाम कमा रही हैं। साथ ही इन्होंने लिखी है महिला और उद्यम पर शायरी। नारी जब ठान ले तो किस्मत भी झुके, छोटे से उद्यम से बड़ी उड़ान भरे। इसी के साथ हमें अगली शब्दावली भेजी है गांधी समाधि रोड हाजी गफार खान, रजिया खान और सिमरन खान ने। इन्होंने भी साथियों महिलाओं पर ही बात की है। इन्होंने लिखा है, औरत माँ हो तो जन्नत होती है।

बहन हो तो इज्जत होती है, बेटी हो तो रहमत होती है, और सच तो ये है औरत एक रिश्ता नहीं होती, वो हर रिश्ते में मोहब्बत की एक नई शक्ल होती है। वो माँ बनकर दुआएं देती है, बहन बनकर ख्याल रखती है, बीवी बनकर संवारती है, बेटी बनकर घर में खुशियाँ बिखेरती है। इसलिए औरत की कद्र किया करो, क्योंकि जिस घर में औरत खुश हो वो घर जन्नत का एहसास देता है। हम तो बस इतना ही कहेंगे, औरत तेरी यही कहानी।

औरत पर बोझ मुसीबत का, हंस हंस के अपनों में बांटे हल तू अपनी मेहनत का, सबका पेट भरे और

कार्यक्रम में अगली शब्दावली हमें भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। इन्होंने लिखा है, जिनके स्वभाव में प्रेम बसा होता है उनके दरवाजे पर खुशियां खुद चल कर आती हैं। जी हाँ, खुशियां जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। ये हमारे मन को प्रसन्न और ऊर्जा से भर देती है। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने वाला व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख कम हो जाते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए जीवन जीना चाहिए।

कार्यक्रम में अगली शब्दावली हमें भेजी है भाई रफत साहब ने, और अपनी शब्दावली में लिखते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है, छोटी सी जिंदगी में क्यों ना हम कोई ऐसे काम करें जैसे किसी गरीब की मदद करें, किसी बेसहारा का सहारा बने, और हमारे दिल में जो नकारात्मक सोच है वो आज ही निकाल दें। हमेशा दिल को साफ रखें, किसी की बुराई ना करें, किसी का हक ना मारें, और फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी रंगीन हो जाएगी, और जीने का एक अपना अलग ही मज़ा होगा। भाई रफत साहब, इन्हीं के साथ में है भाई सैयद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोज़ा, उस्कान नगमा नाज मंसूरी और अंशु भाई।

और कार्यक्रम में अगली शब्दावली हमें भेजी है स्वार रोड मुरसैना से शाजिया इद्रीसी, नाजिया इद्रीसी, जीनत अमान, गुलफशा इद्रीसी, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नादिर, हबीब अहमद इद्रीसी और हाजी गफ्फार खां साहब। दोस्तों, परिंदे कुदरत की एक अहम मखलूक हैं जो हमारे आसपास के माहौल को खूबसूरत और खुशनुमा बनाते हैं। ऐसी भीषण गर्मी में हम इन मासूम परिंदों का खास ख्याल रखना चाहिए। और इसी के साथ इन्होंने एक शायरी भी हमें लिखकर भेजी है, वो है, इन परिंदों की आवाज़ उठा लाई हूँ अपने लफ्ज़ों में, मैं कुछ खास उठा लाई हूँ। चाह जागी है मुझ में आगे बढ़ने की, उनसे सीखी हुई परवाज उठा लाई हूँ। करते रहते वो मेहनत हर पल, उनके खातिर मैं ये अंदाज उठा लाई हूँ। क्यों उनकी भूख प्यास की फिक्र नहीं करते, मैं इन नादान मासूमों के जज्बात उठा लाई हूँ। हम सब ही तो उस करीम की रब की मखलूक, खुद में जागे हुए एहसास उठा लाई हूँ। हम परिंदा हमें देता है अमन का पैगाम, अपने रब की दी हुई सौगात उठा लाई हूँ।

0: और इसी गीत के साथ दीजिए प्रीति को मन भावन कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
1: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12 बजने को है। अब अगला प्रसारण आप हमारे दिल्ली केंद्र।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
5: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और CEO बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के CEO से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार AI गवर्नेंस पर मिस्ताल AI के सह संस्थापक और CEO आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन CMA CGM ग्रुप के चेयरमैन और CEO रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर दो दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हुए हैं। सुनिए कुछ सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में।

हमारी दूसरी सूचना है। प्रभारी निरीक्षक थाना केमरी जिला रामपुर हमें सूचित करते हैं कि सौरभ निवासी चमारान कस्बा केमरी पुत्र श्री रामपाल विगत 26/5/2026 से लापता है। इनकी उम्र 10 वर्ष है, रंग सांवला है व कद 4 फीट और चेहरा गोल है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना केमरी जिला रामपुर मोबाइल संख्या 7351221956। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 7351221956। सूचना समाप्त हुई।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
7: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:10 हुए हैं। अब सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम।

कार्यक्रम गीत आपके नाम सुनने वाले सभी साथियों को प्रीति दिवाकर का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतर्गत पहली फरमाइश हमारी आई है ग्राम लसूडिया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं गोविंद वैष्णव दिव्या।

सुमन कोमल परी और कृतिका रमेश चंद्र डागी। इसी के साथ हमें फरमाइश भेजी है सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी इमरान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान और इरम गुड़िया ने। आप सभी की फरमाइश पे आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कलयुग का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ से सजाया है राहत फतेह अली खान जी ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम, और कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, सरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये प्यारा सा नगमा।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश भेजी है ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसौलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉर्डर का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ दी है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफिक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमज़ा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा, इन सभी की फरमाइश पर। फिल्म का नेम है विरासत और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण ने।

कार्यक्रम में अगला गीत है फिल्म भीगी पलकें से, जब तक मैंने समझा। इस गीत की फरमाइश की है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी जी ने।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है पद्मा टाकेस, नेपानगर मध्य प्रदेश से। फरमाइश करता है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीत है जरा सा झूम लूं मैं और गायक कलाकार हैं आशा भोसले और अभिजीत भट्टाचार्य।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी की फरमाइश पे फरमाइश करता है इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वक्कार, मायरा अजीम और निशा अजीम, गुजरात से प्रवीण सोनी और लाला सोनी। आप सभी ने फरमाइश की है, फिल्म और लव स्टोरी से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये प्यारा सा नगमा।

और अब इसी गीत के साथ दीजिए इजाज़त प्रीति दिवाकर को गीत आपके नाम कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब अगला प्रसारण आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपरे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र

0: उस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

ठीक 1:15 पर आप सुनेंगे धरती गाती है, कलाकार रहेंगी साधना मल्होत्रा। वहीं 1:30 पर आप तक पहुंचेगा कार्यक्रम आंचल। ठीक शाम 5 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से आज शाम कार्यक्रम। वहीं युववाणी कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 5:15 पर। चित्रपट संगीत आप सुन पाएंगे ठीक 6:10 पर हमारे रामपुर केंद्र से।

0: कार्यक्रम गीत गाथा चल आप तक पहुंचेगा ठीक 8 बजे। वहीं 9:30 पर आप सुनेंगे सबरस कार्यक्रम के अंतर्गत नात व कव्वाली। कलाकार शाहिद्दीन कव्वाल व उनके साथी। रात्रि 10:30 तक आप तक पहुंचेगा कार्यक्रम गीतांजलि। ये था कार्यक्रम विवरण। आइए आप सुनिए कुछ जरूरी संदेश।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
5: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ न कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं। कुछ ही समय में आप अगला प्रसारण अब हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें।
6: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के 101 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-आला ने कहा कि उन्नाव को तरक्की की दौड़ में पिछड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर की तामीर के लिए जमीन तहवील की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अब तेजी के साथ यहां इंडस्ट्रीज लगेंगी और नौजवानों को यहीं रोजगार मिलेगा। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के जरिए मुंतखब ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकरीरी नामे तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में हिफाजत के बेहतरीन माहौल में मईशत को रफ्तार मिली है। वज़ीर-आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों में UP की मईशत और फी कस आमदनी में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है।
7: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, MSME लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
5: वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ डिवीज़न के अवामी नुमाइंदों के साथ माली साल 2026-27 के लिए महकमा तामीरात आम्मा के एक्शन प्लान के बारे में मीटिंग की। इस मौके पर वज़ीर-आला ने हिदायत दी कि मौसूल होने वाले तजावीज़ को तरजीह दी जाए और जल्द अज जल्द एक्शन प्लान हुकूमत को भिजवाया जाए ताकि रवां माह के आखिर तक उनकी मंजूरी।

अभी आप सुन रहे थे धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत साधना मल्होत्रा द्वारा गाए कुछ गीत। 1:30 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आंचल।

आंचल कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को बहन गुल्फिशा की राम राम। कैसी हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगी, परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। बहनों, घर में सब स्वस्थ होए, खुशी खुशी होए तो बड़ो अच्छो लागे है। लेकिन बहनों, गर्मी है रही और ऐसन में स्वस्थ रहन के लिए बहुत सारो सावधानियाँ बरतनो पड़ते हैं। न तो को भी बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि बहनों गर्मी जब आते है ना तो ढेर सारी बीमारियाँ मक्खी मच्छर लेके आते हैं, डेंगू मलेरिया लेके आते हैं। और जब जब तापमान बढ़ते हैं पेट दर्द बढ़ते हैं। और अब आप सोच रही हुई कि तापमान बढ़न से पेट दर्द कैसे बढ़ जाता है, लेकिन बहनों ऐसे ही होता है, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है और बढ़त तापमान की वजह से ही बैक्टीरिया और वायरस को खतरा कई गुनों बढ़ जाते हैं। और बढ़त तापमान के साथ साथ सुनाई देने लगते कि डेंगू है गियो, मलेरिया है गियो, लोगन को पेट दर्द संबंधी संक्रमण बढ़ जाता है, पेट दर्द, दस्त और अन्य पेट संबंधी समस्याएं बढ़ जाते हैं। लेकिन मैनो जाको कारण का है ये जानो जरूरी है, क्योंकि जब तक हम वजह ना जानेंगे, समस्या ना जानेंगे, तब लो हम समस्या को समाधान भी ना कर सकेंगे। तो आओ बहनों, आज जय जान लो कि समस्या का है और डायरिया और अन्य पेट संबंधी बीमारियां कैसे ही जाते हैं। वो का है ना बहनों, गर्मियन में ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और जैसे खाना जल्दी खराब ही जाता है। जूस, खुले फल संक्रमण को कारण बनते हैं। और अगर काउने हाथ ना धोए और फल सब्जी छू लियो, या फल सब्जी अच्छी तरीके से धोई के या साफ करी के ना खाओ, तो बहनों संक्रमण

0: संक्रमण तो वर्ण ही है और संक्रमण से वचन के लय कर्णों का है। तो अब आप सोच रही हुई कि ई से वचन के लय का करें कर्णों का होएगो। तो बहनों आप सबको स्वच्छता और पोषण के बारे में जानो होएगो कि स्वच्छता और पोषण को जीवन में का महत्व है जे जानो होएगो और स्वच्छता को अपनानो होगो। का कई स्वच्छता हम राखत ही हैं? अरे तो हमने कब कहो कि स्वच्छता आप ना राखत हो। देखो समझ समझ को और समय समय को बात होत है। कभी हमो जल्दी तो कभी तुमो जल्दी, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में कहूँ कछु मिसी जाता है, हमसे छूट जाता है। जैसे खानो ढकनो भूल गए, पानियो खुलो छोड़ दियो, तो कभी खान को फल काट ले कि अभी खाए लेंगे तो ढको ना और कटो फल खुले रह गयो और इस बीच कीटाणु बापे चिपक गयो। तो बहनों साफ सफाई को विशेष ध्यान रखें। और हाँ, हमार बहने काम में इतनो व्यस्त रहते हैं कि बस कुछ पूछो ना। एक तो घरी को काम, बच्चे संभाल लो, घर गृहस्थी, परिवार को ख्याल राखत हमार बहने खुद के पोषण और स्वच्छता को ध्यान ना रख पाते हैं। अब देखियो ना बहनों, एक महिला अपने परिवार की धुरी होते हैं, घरी के सारे काम बाके पीछे घूम चक्कर सी बन जाती है। अभी कपड़ा धो लें, अभी बर्तन धो लें, अभी बच्चन को काम है और अभी जेवारों काम कर लें तई हम नहाए लेंगे। लेकिन बहनों ये बात बिल्कुल गलत है। घर और बच्चे तो हैं ही, साथ ही साथ खुद की साफ सफाई में देरी ना करें, खुद भी स्वच्छ रहें। और हाँ, बारी जब खान पीन की आत है ना, तब भी बहने जय ही सोच है कि भोजन करते समय भी बहनों के मन में जय ही रहता है कि पहले बच्चे खा लें, हमारो पूरा परिवार खा लें तई हम भी खा लेंगे। और जो बच्चों कुछ भोजन है होते हैं ना, वे खाई लेके खुश हुई जाते हैं। और बाद में अगर भोजन ना बचो तो रात को बासी खाई के खुशी जाते हैं। और कई बार बाद में बासी भी ना होते और ताज़ो भोजन भी ना बचते हैं। तो हमार बहने का सोचते कि ना बचो तो ना बचो, को बात ना, बच्चन ने खा लियो पूरे परिवार को परोस दे दियो और खवाए दियो और खुद भूखी रह जाते हैं। और थलिया के बारे में बात से पूछो बाकी थलिया के बारे में कि हमारो तो वो कहते कि हमारो का है, हम सांझ को खा लेंगे। लेकिन बहनों ये बात बिल्कुल गलत है। बच्चन को और पूरे परिवार को ख्याल आप राखत रही हैं और साथ ही साथ खुद के पोषण को भी ध्यान रखें। जेना सबको भलो सोच लियो और अपने लिए कुछ भी ना। और अगर जो सब अनदेखी चलत रहो ना, तो शरीर में कमजोरी और बीमारी आवेगी। और जब आप बीमार हैं तो कैसे चलेगी घर गृहस्थी? तो ज़रूरी है खुद के खान पान को ध्यान रखनो, पौष्टिक तत्व अपने भोजन में शामिल कर लें। समझ रही है ना बहनों कि जब सजेगो आपके भोजन की थलिया, तभी तो सजेगो घर की कोनो। और पौष्टिक तत्व थलिया में सजांगी कौन कौन से हैं? हाँ बहनों, शरीर को स्वस्थ रखने वाले पौष्टिक तत्व, देखो बहन, मक्खन, मावा, मेवा, ये सब पौष्टिक तत्व मौजूद हैं। काकई जेऊ हम ना ही खा सकते, बजट ना है तो जा में भी बहनों कोनो चिंता वाली बात ना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी खान की चीज़ें हैं जो थोड़ी सस्ती हैं, हाँ लेकिन बामे पौष्टिक तत्व भरपूर हैं। जैसे कि सेब ना ले पा रही हैं तो आप अमरूद को सेवन कर लें। और बहनों गांव में उपलब्ध सस्ती चीज़न से भी आप अपनों भोजन पौष्टिक बना सकते हैं, क्योंकि अच्छो भोजन हमेशा महंगो ही होए ये ज़रूरी ना है। बहनों गांव में मिलनवारे सस्ते पौष्टिक आहार जैसे बाजरा, गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार और साग सब्जी भी गांवन में आसानी से उपलब्ध ही जाते हैं। खेतन से मिल जाते। सरसों को साग है, पालक, मेथी, सेजन को पत्तियाँ, पपीता आदि से आप अपनो थलिया सजाई के विटामिन को पूर्ति कर सकते हैं। और बहनों, प्रोटीन की प्राप्ति के लिए अरहर दाल, चना, मूंग, मसूर, मूंगफली, सोयाबीन आप अपने भोजन में शामिल कर लें। जाके अलावा बहनों, हड्डियों को मजबूत राखन कर लें। कैल्शियम तत्व को पूर्ति करन के लिए जाके लिए तिल रागी को सेवन कर लें। और गावन में उपलब्ध है ये। जाके अलावा बहनों, कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप अपने भोजन में कैल्शियम को शामिल करें। जाके लें दूध, दही, छाछ को सेवन करें। ये सबको भी गावन में कोनो कमी ना होते। और इन सब तत्वन से भरपूर थलिया जब आपकी होएगी ना, तो आपके शरीर भी स्वस्थ रहेगो, ऊर्जावान जब शरीर होएगो ना, जब शरीर में शक्ति होएगी ना, तभी आप घर गृहस्थी अच्छे से संभालेंगी। हाँ, और पशुपालन और खेत को जिम्मेदारी संभाल पाएंगी, स्वस्थ रहेंगी, सुखी रहेंगी। और बहनों, रही बात महंगाई की या बजट ना है, तो बहनों कुछ काम ऐसे कर लें जिससे कि आपको पोषण मिलता रहे। जैसे कि घर में आप फलों के और सब्जियों के पौधे लगा लें, बस आप फल और सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। जय बारे में बहनों आज आपको सुनवाई देते हैं एक परिचर्चा। विषय है गृह वाटिका पर शिक्षित युवतियों से परिचर्चा। बहनों प्रतिभागी हैं कुमारी वंदना, कुमारी सुनीता और आपकी अपनी बहन गुलफिशा इसको संचालन कर रही हैं। तो बहनों आओ सुनते हैं जय परिचर्चा। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचर्चा के लिए हम यहाँ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। हमारा विषय है गृह वाटिका पर शिक्षित युवतियों से परिचर्चा। बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं।
1: मेरा नाम वंदना है, ग्राम निस्वी।
2: आप? मेरा नाम सुनीता है, मैं ग्राम सज्जाद नगर से।
0: वंदना जी और सुनीता जी, आप दोनों ही मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं?
1: मैंने बीए कर रखा है एजुकेशन सब्जेक्ट से।
0: कुछ काम करती हैं?
1: जी हाँ, हम टीचिंग करते हैं, स्कूल में पढ़ाने जाते हैं।
0: परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरी मम्मी डैडी हैं और मेरे भाई बहन हैं।
0: सुनीता जी, आपने कितनी पढ़ाई की है?
2: मैंने बीएससी कंप्लीट कर रखा है।
0: कुछ काम करती हैं?
2: जी, मैं टीचिंग करती हूँ।
0: परिवार में कौन कौन है?
2: परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे दो भाई, एक सिस्टर है।
0: आज कार्यक्रम में गृह वाटिका के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर हम अपने घर में वाटिका बनाना चाहते हैं, तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है?
1: सबसे पहले तो हमें गृह वाटिका करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। हमें अपने घर के आसपास की खाली जगह को अच्छे से साफ करने के लिए खुरपी की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि हम जो मिट्टी होगी उसको अच्छे से नराई कर सकें उसकी। हमें फुब्बारे की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिसके द्वारा हम जो फसल उगाएंगे उसमें पानी लगा सकें।
0: सुनीता जी, हमारी ग्रामीण बहनें थोड़ी सी सब्जियां उगाना चाहती हैं। हमारी ग्रामीण बहनें अपने घर के आसपास कौन कौन सी सब्जियां उगा सकती हैं?
2: गृह वाटिका में हम अपने आसपास काफी सब्जियों को उगा सकते हैं, जैसे कि मेथी है, धनिया, पालक, टमाटर, गाजर, काफी ज्यादा सब्जियां हैं जो हम अपने घर के पास में उगा सकते हैं।
0: वंदना जी, बाजार की सब्जियों में कीटनाशकों का, रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, जो हमें स्वास्थ्य देने के बजाय स्वास्थ्य खराब ज्यादा कर रहा है। गांवों में हमने देखा है कि पानी नालियों में से निकलकर इधर उधर फैल जाता है, इस पानी का उपयोग भी हो सकता है। और जो हमारे घरों में गंदगी होती है, सब्जी के छिलके हैं या फलों के छिलके हैं या घर का वेस्ट है, तो ये जो सारी चीजें हैं, इनको हम क्या गृह वाटिका में उपयोग कर सकते हैं?
1: जी हाँ,
0: कूड़ा या घास है, गोबर है पड़ा हुआ, तो इसका उपयोग हम अपनी गृह वाटिका में कर सकते हैं?
1: जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे घर में जो गोबर खाद होती है या कोई छिलके वगैरह के होते हैं, उनको हम एकत्रित कर सकते हैं, फिर कुछ टाइम बाद उससे खाद बन जाती है।
0: हम वंदना जी आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कि गांवों में नालियां हैं और नालियों में से पानी निकलकर इधर उधर फैल जाता है, तो इस पानी का हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं? क्या हम गृह वाटिका के लिए इस पानी का सदुपयोग कर सकते हैं?
1: जी हाँ, पानी को व्यस्त ना बर्बाद करके इस पानी से हम सिंचाई कर सकते हैं।
0: सुनीता जी, क्यारी कैसे बनाएं? जब वाटिका बनाते हैं हम घर में, तो क्यारी बनाई जाती है, मेंड बनाई जाती है, खाद का छिड़काव करते हैं। जरा हमारी बहनों को भी बताएं।
2: खुरपी से जब क्यारी बनाते हैं तो अच्छे से हमें उसमें गोबर मिला लेना चाहिए खाद की तरह, अच्छे से पौधे उगेंगे। फिर रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करते हैं, हम गोबर उबर का प्रयोग ही करते हैं घर पे, ताकि अच्छे से उग सके सब्जियां।
0: वंदना जी, जैसे हमारी कोई बहन गृह वाटिका करना चाह रही है, तो उस बहन को बीज कहाँ से उपलब्ध होगा?
1: गृह वाटिका करने के लिए हम बीज को मार्केट से खरीद सकते हैं।
0: अच्छा, जैसे बीज को मार्केट से खरीद लिया, अब हमने वाटिका में लगाया, बीज छिड़काव करके भी लगाए जाते हैं, लाइन में भी लगाए जा सकते हैं, क्या ज्यादा अच्छा रहेगा?
1: बीज को लाइन में लगाएं तो कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि वो लाइन वाइज अच्छे से उग पाएंगे।
0: वंदना जी, हमने देखा है कि आजकल स्वाद सब्जियों से खोता जा रहा है, अगर कोई बीमारी आ रही है या कीड़ा आ रहा है तो रासायनिक खाद तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते। गृह वाटिका का मतलब तो यही है कि हम देसी खाद इस्तेमाल करें, तो कुछ ऐसी देसी खादें बताएं जो हम खुद तैयार कर सकें।
1: हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर चूल्हे का उपयोग होता है, चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, तो उसकी जो राख होती है हम उस राख को भी छिड़काव कर सकते हैं मेथी पालक जैसी सब्जियों में, और उस छिड़काव के बाद भी कीटाणु जो है वो नष्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम नीम के पत्तों के निवोली को या नीम के पत्ते के रसों को छिड़काव कर सकती है अपनी सब्जियों में।
0: हमारी जिन बहनों को गृह वाटिका का शौक होता है, तो वो अपनी गृह वाटिका में एक कोने में को गड्ढा बनाती हैं, जिसमें वो सारा वेस्ट डालती रहती हैं, सब्जी के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, गोबर है, जिससे कि खाद अच्छे से तैयार हो जाती है 6 महीने के बाद, और वे फिर उसका सदुपयोग अपनी गृह वाटिका में कर लेती हैं। तो इससे क्या है कि उनके घर में गंदगी भी नहीं रहती है और उनको अच्छी खाद मिल जाती है
1: जी।
0: सुनीता जी, हमने देखा है हमारी जो ग्रामीण बहनें हैं वो बड़ी जुगाड़ू होती हैं, जो चीज भी उन्हें मिलती है उसमें वो बीज बो देती हैं, कुछ दिनों बाद कोपले फूटती हैं और सब्जी आने लगती है, तो देख के बहुत खुशी होती है। ऐसे कुछ उपाय बताइए, किस किस चीज में आप सब्जी बो सकती हैं?
2: घर पे तो गमले उमले होते हैं, उसमें भी लगा देते हैं अगर खाली जगह नहीं होती है। हमारे जो घर के पास में अगर खाली स्थान है तो हम वहाँ पे लगा सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो हम अपने घरों की छत पे गमले होते हैं तो उसमें पीपे जैसे छोटे डिब्बे होते हैं उनमें भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, कट्टे में, गमले में, खाली प्लास्टिक के टब में, बेकार बाल्टी पड़ी है अगर उसमें भी हम बीज बो सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं और कोई ना कोई सब्जी उगा सकते हैं। कनस्तर है, ड्रम है, ड्रमिया है, इसमें भी हम कोई ना कोई सब्जी उगा सकते हैं,
2: जैसे तुड़ाई, लौकी, घर की छतों पे जैसे धनिया, मेथी, मूली, गाजर, ये सब्जियां उगा सकते हैं।
0: कुछ बहनों के पास ना उनका घर छोटा होता है, लेकिन मन में इच्छा होती है गृह वाटिका हो, जिससे उनको घर की सब्जी मिल जाए। हमारी वो बहनें जिनके पास जगह नहीं है मगर उनके पास छत है और छत खाली पड़ी है और वो बागवानी करना चाह रही हैं या बेल वाली सब्जियां उगाना चाह रही हैं।
1: अपनी छत पे भी बहनें बहुत सारी सब्जियां उगा सकती हैं, खीरा है, ककड़ी, करेले, तुरई, लौकी, सेम, ये सारी बेल वाली सब्जियां हैं जो हम सारी बहनें छत पे उगा सकते हैं दीवार के सहारे से लगा के।
0: सुनीता जी, आपके घर में गृह वाटिका है?
2: जी।
0: तो गृह वाटिका की देखभाल आप कैसे करती हैं?
2: गृह वाटिका की देखभाल जैसे सुबह के टाइम पानी उनी लगा के अच्छे से देखभाल करते हैं, शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। हम अपनी वाटिका की देखभाल अच्छे से सिंचाई करके भी करते हैं और इन छोटे मोटे जानवरों से भी बचाते हैं, जैसे बकरी है, भैंस है, ये खुरुल जाते हैं और चूहा वहाँ लग जाता है, इससे हम अपनी वाटिका को बचाते हैं। गृह वाटिका को बचाने के लिए झाड़ी उड़ियों का प्रयोग करते हैं, जिससे बकरी उकरी नहीं आती और चूहे वे भी नहीं काट पाते हैं।
0: सब्जियों के साथ साथ हमारी बहनों को फूल बहुत अच्छे लगते हैं, आपने अपनी वाटिका में फूल लगाए हैं?
2: जी।
0: कौन कौन से फूलों के पौधे हैं आपकी गृह वाटिका में?
2: अपनी गृह वाटिका में हमने कई तरह के फूल लगाए हैं, गुलाब है, सदाबहार है, सूरजमुखी के भी हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, घर महकता रहता है, अच्छी बात है, और घर में जो लोग प्रवेश करेंगे उनको भी सुगंध मिलेगी
2: जी, खुशबू आती है काफी,
0: वातावरण सुगंधित हो जाता है
2: जी।
0: वंदना जी, गृह वाटिका से क्या क्या फायदे होते हैं, फायदों के बारे में अब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी मेहनत करके हमारी बहनें अपनी गृह वाटिका बनाती हैं और उससे बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं।
1: हाँ।
0: तो वो लाभ कौन कौन से होते हैं?
1: गृह वाटिका से हमें बहुत ज्यादा लाभ होते हैं, गृह वाटिका जो हम लगाते हैं उससे हम पूरे परिवार को ताजी सब्जियां खिला सकते हैं और हमारा जो पर्यावरण होता है वो एकदम साफ रहता है और हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो ठीक रहता है।
0: ये तो रही लाभ की बात, अब हम बात करेंगे हानि की। जो सब्जियां हम बाजार से खरीदते हैं, घर की सब्जियों से हमने लाभ की बात कर ली, लेकिन बाजार से जो हम सब्जियां खरीदते हैं उनसे हमें हानि क्या होती है?
1: बाजार से खरीदी हुई सब्जियों से बहुत ज्यादा हानि होती है। वो जो सब्जियां होती हैं वो केमिकल लगा के बढ़ाई जाती हैं, बट जो हम सब्जियां घर पर लगाते हैं उसमें हम केमिकल का यूज नहीं करते हैं, तो घर वाली सब्जियां हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होती हैं।
0: बिल्कुल, बाजार की सब्जी

0: से बहुत सारी हानियां होती हैं, क्योंकि बाजार में तो बेमौसम सब्जी भी मिल जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होती है। इसमें रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता नहीं होता है कि कब ये सब्जी खेत में उगी, कौन कौन से गंदे पानी से इसे धोया गया, कब बाजार में आई और कितने दिन बाद हमने इस सब्जी को ठेले पर से खरीदा और कब ये हमारे किचन में आई, भोजन की थाली में आई। तो अब तक तो सब्जी काफी बासी हो जाएगी,
1: जी हाँ,
0: तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकती। घर की सब्जी का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि ये हमें ताजी मिलती है और देसी खाद का प्रयोग होता है इसमें, इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। और फायदा ये होता है कि ये मौसमी सब्जी होती है, और जो हम गृह वाटिका बनाते हैं इससे हमें घर की सब्जी तो मिलती है, साथ में हम ये सब्जी खुद भी खाते हैं और हमें खरीदना नहीं पड़ता है। और जो पड़ोसी है, पड़ोसी को भी हम सब्जी दे सकते हैं, इससे हमारे बीच की जो दूरियां हैं वो कम होंगी, हमारा व्यवहार अच्छा माना जाएगा और आपसी संबंध अच्छे होंगे हमारे।
1: जी हाँ बिल्कुल। और हम ये सब्जी को अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो इससे हम रुपये भी कमा सकते हैं बेच के इसको। इससे हमारे समय की बहुत बचत होती है, जो हम बाजार में खरीदने जाते हैं तो हमारे समय की बहुत बचत हो जाती है। हम आराम से घर पे ही सब्जियों को उगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है हमें।
0: अंत में कोई ऐसा संदेश?
1: गृह वाटिका में सब्जी लगाने से हमें बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इनमें से कुछ फायदे ये हैं कि हम गृह वाटिका में ज़्यादा सब्जी लगाते हैं तो हम उस सब्जी को मार्केट में बेच भी सकते हैं। अब वो हम चाहे खुद बेचें चाहे किसी को बेचने के लिए दे दें।
0: बिल्कुल सही बात है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी,
1: जी
0: जीवन सुखी होगा। वंदना जी और सुनीता जी, आप हमारी इस परिचर्चा में शामिल हुई। इसका विषय था गृह वाटिका पर शिक्षित युवतियों से परिचर्चा। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गृह वाटिका पर शिक्षित युवतियों से परिचर्चा, जा विषय पर बहनों अभी आपने परिचर्चा सुनी प्रतिभागी ही वंदना जी और सुनीता जी। और बहनों, हमने आपके अपनी बहन गुलफिशा ने जा परिचर्चा को संचालन करो है। और बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जैसे सीख जरूर ली होगी। और बहनों, अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपायों की। देखो, गर्मियों में मक्खी मच्छर को प्रकोप बढ़ जाते हैं, जैसे बीमारियां फैलत हैं, ऐसे में हमारी बहनें परेशान ही जाते हैं। अचानक से रात में अगर बिजली चले जाते तो मच्छर काटते हैं, जैसे बहनों हम कैसे बचें? हमारी गर्मियों में मौसम में जो है मच्छर एक सबसे बड़ी समस्या होते हैं, और चैन नहीं लेने देते हैं, मच्छर होते हैं तो देखो बहनों, और हम इसको बचने के बारे में सोचते हैं। वैसे तो बहनों, मच्छर से बचाव को सबसे अच्छा उपाय है आप मच्छरदानी को इस्तेमाल करें। तो बहनों, मच्छरदानी लगावें और चैन को नींद सोवें। हाँ, और अब आप सोच रही होंगी कि उठक बैठक के काम कैसे करें, मच्छर भिन्न भिन्न। हाँ, जा तो आप ठीक कह रही हैं, तो जाके लें आप कुछ घरेलू उपाय अपनाए के मच्छर भगा सकते हैं और आराम से अपने घर के काम कर सकते हैं, और रात के समय में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और मैंने एक लैंप में कपूर को दो टिकिया, थोड़ा सो केरोसिन, मिट्टी को तेल और कुछ बूंदे नीम के तेल की मिलाई दें, और जब मच्छर ज़्यादा होवें तब चाकू जलावें। ऐसो करण से बहनों सारे मच्छर भाग जाएंगे। और बहनों, मच्छरन से निजात पान के लिए आप एक घोल भी बना सकते हैं। तो बहनों, नींबू को रस और लौंग को पानी में मिलाई के एक घोल तैयार कर लें और जा घोल को छिड़क दें। हाँ बहनों, घर के जोन कोना में जोन जगह मच्छर ज़्यादा होते हैं वे उस जगह घोल छिड़कंगी ना, तो मच्छर भाग जाएंगे। और बहनों देखो, जे तो रही उपाय, आपको हमने उपाय बताए, और अब आप सोच रही होंगी जानकारी तो हो ही भरपूर लेकिन मनोरंजन कार्यक्रम में ना होए। लेकिन बहनों, हम जे कैसे भूल सकते हैं, आपने तो सोच लियो लेकिन हमने ना सोचो, हमने तो मनोरंजन करान की सोचो। तो बहनों, आओ कर लेते हैं मनोरंजन, सुनते हैं जलोगीत।

मैंने अभी आपने लोगी सुनो अनुकीर्ति की आवाज़ में, और लोगी सुन के मनोरंजन करो भरपूर, भोगियो मनोरंजन। और बहनों अब कर लेते हैं छोटे बच्चन के स्वास्थ्य को लेके बात थोड़ी सी। वो कहा है ना बहनों, हम सोचते हैं कि छोटे बच्चे हैं जाको प्यार कर लें, सभी माता पिता अपने छोटे बच्चन को प्यार करते हैं, लेकिन देखो वो माता पिता अपने बच्चे को प्यार तो करती हैं, साथ ही साथ दुनिया की नज़र से बचाने के लिए माँ आँख में से काजल निकाल के टीका लगाए देते हैं। लेकिन बहनों उन बीमारियों को का उन बीमारियों की जो नज़र लगती है, बासे कासे कैसे बचा सकते हैं। जाके लिए भी बहनों टीकाकरण अपने बच्चन को ज़रूर कराएं। और देखो टीकाकरण कराने के लिए आपको कहूँ जानो नहीं पड़ते, क्योंकि हर गांव में आप प्रत्येक महीने एनम बहन जी आती हैं, आंगनवाड़ी बहन जी आती हैं, आपके बच्चे को बुला के ले जाती हैं, कार्ड भी बनते हैं, साथ ही साथ अगला टीका कब लगेगो ये भी बता के जाते हैं। तो परेशानी कौन बात की आप सोच रही हुई कि टीके में खर्चा होएगा, पैसा लगेगा, दूर जाना पड़ेगा, ना तो कोनो पैसा लगते हैं ना ही दूर जाना पड़ते हैं, क्योंकि आपके घर गांव में ही जब ये सुविधा मौजूद है, सरकार निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराए रही है, तो देर कौन बात की। और रही बात आप जो मन में सोचते हैं कि बुखार आएगो, तो बहनों जाको कोई बात ना है, अगर असर है रहे है शरीर में बच्चे के तो कोई बात ना, थोड़ी सी परेशानी सही, लेकिन अपने आराम के खातिर जे ना सोचें कि बच्चे के टीके ना लगवाएं। पूरे समय से नियमित अगर आप टीकाकरण करांगी तो जो बच्चा है ना बाको बीमारी भी ना होगी। कई सारी बीमारियां हैं, टीबी है, चेचक है और पोलियो है, बहुत सारी बीमारियां हैं, और जिस जिनसे बचाने के लिए आप अपने बच्चन को टीकाकरण जरूर कराएं और बच्चे को दें हंसता खिलखिलाता बचपन। जाई जानकारी के साथ बहनों अब समय है गयो है कार्यक्रम समाप्ति का, तो अपनो ख्याल रखें, और देखो अपनो ख्याल रखें, साथ ही साथ बहनों कार्यक्रम का पता जल्दी से लिख लें ताकि आप हम कार्यक्रम कैसो लगे जे भी बतावें। बहनों पता है आंचल कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिंदोई 44901। जाई के साथ बहनों अपनी बहन गुलफिशा को दें अनुमति। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आंचल और ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही थी गुलफिशा। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही समय में 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आप अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www

0: facebook.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति

0: के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज

नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज

0: प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मिनीवेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCRT।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोता, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा

0: पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्वविख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है।

शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है।

0: मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है।

0: वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो? देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है? मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? मां के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर

0: समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ

0: मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
0: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
1: माँ
2: ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
4: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
2: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
4: बड़ी
2: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खो।

ने उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा
1: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
0: हाँ।
1: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे?
0: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथी हमसे साझा करेंगे और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो भी
1: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात।
0: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं। ये सारी बातें करेंगे विस्तार में, लेकिन पहले गाना सुन लें।
1: हाँ बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट
0: जो
1: की।
0: है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में,
1: जी
0: और उनकी माँ बहुत अच्छा गाय

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की।
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में।
1: जी
0: और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी, और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई, तो गांव में जो मेले लगते थे, जो त्योहार होते थे, तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से, उस संगीत से, जो लोक संगीत था वहां का, उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपको उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।
1: हाँ, उनकी बेटी के शिक्षक से उन्होंने उन्हें सिखाया था बजाना,
0: जी
1: तो यहीं से उनके करियर की शुरुआत भी हुई। बाद में उन्होंने भजन, फिल्मी गीत, त्योहारों जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। इसके बाद उनके पति सेवानिवृत्त हो गए और परिवार देहरादून में जाकर बस गया। बाद में उन्होंने 1996 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी। और वो
0: और जुड़ी
1: आकाश
0: हुई नहीं, वो
1: जी
0: ए श्रेणी की
1: ए
0: कला
1: श्रेणी की कलाकार
0: जी।
1: थी। देखिए, मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
0: और साल 1996 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ और गांव के अन्य बुजुर्गों से जो संगीत की अनूठी शैली की जो प्रतिभा उन्हें मिली है, जिसे जागर गायन कहा जाता है, तो उन्होंने महसूस किया कि लोग इसको गा ही नहीं रहे, इसे भूल रहे हैं। और शास्त्रीय गीतों को खोज करने के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीव बॉर्डर और फोन करना, ओ सियाली साली रुकमा, पारा भीरा जादियो और देवारा जारे जू, और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को, जो तो आपने बताई भी कि
1: जी,
0: उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ
0: जी।
1: है।
0: और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। और मध्य प्रदेश द्वारा सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि भाई सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम का ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता, और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे। तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके की फ्रॉड काफी होती है।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीज हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में से वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं, और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना
1: चाहिए,
0: ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल। एक मैसेज होता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत उस अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
0: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं, इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज, जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना हो। ताकि
0: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
1: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता है ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले। तो जरूरी है, हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर, वहां से खरीदें।
0: जो देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है।
1: बिल्कुल
0: सेल देखकर खरीद ली जाती हैं चीजें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देख कर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध, दालें, सब्जियां, ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो
1: बिल्कुल।
0: सोच समझ कर ही
1: और
0: आपको करना
1: बहुत
0: है।
1: सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे,
0: जी
1: बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं। तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षा यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया है।
0: जी

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं।

0: कल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा, मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए, पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
1: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
0: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप टैबलेट स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें,

0: दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
1: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
0: और
1: और आज एक और
0: ये जो
1: दिवस,
0: दिन होता है ना,
1: जी
0: इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शबद कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी
1: हाँ,
0: के जो प्याऊ होते हैं वो
1: मीठी
0: लगाई
1: जो,
0: जाती है।
1: हाँ।
0: और

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
3: बहुत कुछ लिख डाला है भाई और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं, और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
2: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
3: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
2: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही
3: होता है, ये तो है
2: ना। तो हमारे जो पुरुष होता कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
3: हूं। बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
3: अच्छा।
2: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
3: जी। बिल्कुल,
2: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी टिप है।
3: बहुत जरूरी,
2: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते
3: तो है।
2: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
3: एकदम साफ सुथरा किचन मिले बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं, और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
2: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जी

0: पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
3: बहुत कुछ लिख डाला है भाई। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं, और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
2: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
3: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
2: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही
3: होता है, ये तो
2: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
3: हूं। बिल्कुल बिल्कुल।
2: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
3: अच्छा।
2: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
3: जी। बिल्कुल।
2: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी टिप है।
3: बहुत जरूरी।
2: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं, अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं।
3: तो है,
2: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंद गिरी है तो वो ना हो,
3: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं, और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंदते समय गुनगुने पानी या थोड़े से दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
2: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जी अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
3: बहुत बढ़िया। बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 4 बजने वाले हैं। हमारी दूसरी सभा मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर अब एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संदेश टू सोल्जर्स। अब से बस कुछ ही देर में

0: मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो न केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तरवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है, आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है? क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे फौज में जाएं और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊँगा। और मैंने जब सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था वो भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ और जिस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
1: देखिए हालांकि हम फौजी परिवार से हैं लेकिन कोई माँ किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए, तो ये बातचीत तो हुई थी। लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को इंडिया भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में इंडिया की तरफ गए और रेलवे स्टेशन पर सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है, जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज़ ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुँच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म्ड फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने कहते हैं ना अपना प्यार कैसे बरसाया?
1: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के आर्मी नेवी एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो काफ़ी जोश था उस टाइम पर 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था।

0: तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफ़ी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देखे कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक अफसर बन गया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग आप अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, कि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो, जाना तो काफ़ी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता, तो काफ़ी प्रेज़ होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में। हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है, तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए, स्कूल में काफ़ी शैतानियां क्या करते थे?
0: हाँ, यस, मेरा एक बड़ा भाई है, तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं काफ़ी शरारी था, मेरे मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है तो, काफ़ी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए। कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफ़ी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: बरकरार है। अच्छा, ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए, क्योंकि आर्मी का तो काम नहीं है आर्म फोर्सेस का कि आपसे आप में से एक ऑफिसर बनाना है। लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है, तो

0: लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए, टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज करना। वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह क्या बात है। तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया। देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में। मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरा मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ
1: वाह क्या
0: और
1: बात।
0: मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे। 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हमने बहुत अच्छा काम किया। और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा मेरा सफ़र 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना, आर्टिलरी जिसको कहते हैं, उसमें शुरू हुआ।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बन के पीछे मुड़कर देखा तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूँ शायद वो महसूस ना कर पाता अगर यहाँ ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड, जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी मेरी ज़िंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे? हर
0: आप दुखती रग पे मेरे हाथ रख दिया। मैं
1: बच्चे
0: आज
1: के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: 2 दिन 3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को। अच्छा, तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूँ, रोया नहीं हूँ,
1: अपने
0: बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ।
1: पास ले जा ले, ग्रिल लगा ले।
0: 5 महीने का टर्म होता है, जून टू नवंबर,
1: जी
0: बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा
0: हमेशा

0: आऊंगा उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा
1: हमेशा
0: हमेशा
1: आपके साथ रहता
0: हमेशा
1: है, और कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है।
0: मदद करती है।
1: आप
0: मेरी मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की हैं, शी इज वेरी स्ट्रांग। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी, उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएँ होंगी
1: जी
0: जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत
0: बहुत
1: बड़ा
0: बड़ा
1: योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, यहाँ मैं प्ले करना चाहूँगी।
0: तो माँ के माँ माँ जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है, लुक्का छुपी बहुत हुई,
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: बहुत ही बेहतरीन गाना है।
1: हाँ
0: एंड
1: हाँ
0: वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में,
1: जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
0: मुद्दे
1: गए।
0: उठाए बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड
1: जी
0: आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं,
1: हाँ हाँ
0: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
1: जी
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल की जज्बात, और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूंगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियाँ हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रही हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। ख़ासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज़ पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्ज़ाम दिया मैंने एनडीए का, और बारहवीं के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफ़र है, सफ़र नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पोस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज़ ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपनी रिटायरमेंट के बाद मान रखा है। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी, हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा। मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो है लहू के बह रहे हैं उसमें

0: कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए। कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में। मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन। और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अंधाधुंध भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे। हमने कुछ दिमाग लगाया और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती। और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे उससे मेरे को ज़िंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
0: वाह क्या बात है। अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुँचाया जाए और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदिष्ट सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें YouTube के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई कैसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी और आप उनके साथ कॉलेज में थे। आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही

कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोस्टमेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस

विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं, तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी

0: 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो क्या, क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता। पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफ़ी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूँ चाहे जो भी हूँ, उस कमांड को सक्सेस करना है मैं, और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूँगा। और ये ऑफकोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, एस्प्री डी कोर है, भारतीय सेना का जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
1: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे उसमें काफ़ी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कॉरपोरेट में जैसी कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में

सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है. एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहाँ पे ब्रिगेडियर राणा है,

0: पर फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशन के बारे में बात की, आपके अपने जो कोर्स किया एनडीएम के आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी से, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। मेरी वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था, वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी इंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा, और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी, तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता, तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, उन तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन में काफ़ी कारगर साबित होती हैं,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रहती है, और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है, ऑफकोर्स माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड.
0: क्या बात है.

0: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना। और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं मेरे को, अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजराना
1: वाह
0: आ
1: क्या
0: जाता
1: बात है,
0: है,
1: यानी कि वो पल जिस
0: वो
1: वक्त
0: पल
1: आप प्रणय
0: जिसमें
1: सूत्र
0: उन्होंने
1: में
0: डांस
1: बंधे
0: किया है,
1: और उनका नृत्य कहीं ना
0: उनका
1: कहीं
0: बहुत
1: आपको
0: पसंद
1: लुभा
0: है।
1: गया। वाह क्या बात है, कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया है, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हर पल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। एनडीए में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ, मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं, मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ, मेरा बेटा भी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है, जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं ना कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है। मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
0: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप
1: आज के युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेना जैसा

0: जी
1: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल

0: कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तनवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश।
2: फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
1: आज शाम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में कीजिए स्वीकार दीपिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप ऑटो रिक्शा में सफर करते हो तो आपसे कोई यह नहीं पूछता कि आपके पास कितना सामान है। जब आप बस में सफर करते हैं तब भी ये सवाल आपसे नहीं किया जाता। जब आप ट्रेन में सफर करते हो तब भी आपके सामने आपके सामान को तोला नहीं जाता। लेकिन जैसे ही आप हवाई जहाज में जाने लगते हो तो सफर के पहले ये देखा जाता है कि आप कितने वजन के साथ आ रहे हो। क्यों ना पूछा जाता है ना आपसे? जी हाँ, क्योंकि बोझ लेकर बहुत ज्यादा वजन लेकर ऊपर उड़ा नहीं जा सकता, और इसलिए आप भी ये ख्याल रखते हैं कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं बस उन्हें ही साथ ले जाया जाए और बाकी की बेकार चीजों को, गैर जरूरी चीजों को नीचे जमीन पर ही छोड़ दिया जाए। असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है और ऐसा करना चाहिए। हम बहुत सारा बोझ लेकर लोगों की बातों का, रिश्तों का, अपने अतीत का, बहानों का या फिर बुरी आदतों का, इन सब का बोझ लेकर कभी भी ऊंचा नहीं उड़ सकते। अगर जिंदगी में सफल होना है, कुछ बड़ा करना है, ऊपर उड़ना है, ऊंचा उड़ना है, तो इन सारे बोझ को यहीं जमीन पर नीचे छोड़ना पड़ता है ऊंचा उड़ने के लिए।

साथियों, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार क्यों ना गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। जी हाँ, हमें ये समझना पड़ता है कि किसको, किस चीज़ को, किस रिश्ते को, किस इंसान को अपने साथ अपने सफ़र में लेकर आगे चलना है और किन गैर ज़रूरी चीज़ों को, गैर ज़रूरी रिश्तों को पीछे छोड़ना है। तो चलिए आज की शाम को एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।
1: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लक।

0: चन चन
1: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाड़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
0: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
2: से नो टू प्लास्टिक।
3: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। संध्या के 5:15 हुए हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

उम्मीदों के परों से आसमान छूने निकले हैं, ख्वाबों की हकीकत की ज़मीन देने निकले हैं। युवा हैं हम, बदलते वक्त की पहचान हैं, नई सोच, नए जोश और नए भारत की शान हैं। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्ते गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट कार्यक्रम युववाणी में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त फातिमा खान। तो कबूल कीजिए हमारा प्यार भरा आदाब। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खुश और स्वस्थ होंगे। किस राज्य ने अपने GI टैग वाले अनानास को एक प्रीमियम वैश्विक ब्रांड में बदलने के लिए मिशन क्वीन पाइनएप्पल पहल शुरू की है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और लिख भेजने होंगे अपने अपने सही जवाब, और सही जवाब देने वाले सभी श्रोताओं के नाम हम बताएंगे प्रोग्राम के अंत में। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में हर इंसान एक जैसा होता, एक जैसी सोच, एक जैसे शौक, एक जैसी बातें, तो क्या ज़िंदगी इतनी दिलचस्प होती? ज़रा कल्पना कीजिए, हर कोई सुबह उठते ही वही गाना गा रहा हो, हर किसी का पसंदीदा खाना एक ही हो और हर कोई एक ही तरह के कपड़े पहन रहा हो। अरे भाई, फिर तो दुनिया किसी कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट जैसी लगने लगेगी। शायद इसीलिए साथियों प्रकृति ने हम सबको अलग बनाया है। किसी को संगीत पसंद है, किसी को किताबें, कोई खेलों का शौकीन है तो कोई नई नई चीज़ें सीखने का, और यही विविधता हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाती है। दोस्तों अक्सर जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग व्यवहार करता है, कम बोलता है या चीज़ों को अपने अनोखे तरीके से समझता है, तो लोग उसे समझने के बजाय उसके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। लेकिन हर अलग इंसान के पीछे एक अलग कहानी, एक अलग प्रतिभा और एक अलग दुनिया होती है, और इसी विविधता का सम्मान करने के लिए हर साल 18 जून यानी आज ही के दिन ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने और समझने का एक अलग तरीका है। ऑटिस्टिक लोग भी हमारी तरह सपने देखते हैं, रिश्ते निभाते हैं, सीखते हैं और अपनी प्रतिभा से समाज को समृद्ध बनाते हैं। कई लोग कला, संगीत, विज्ञान, तकनीक और रचनात्मक क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाते हैं। दोस्तों ऑटिस्टिक प्राइड डे हमें ये याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति को उसकी अलग सोच या विचार के कारण जज करने के बजाय उसे समझने और स्वीकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि असली खूबसूरती समानता में नहीं बल्कि विविधता में छुपी होती है। और हाँ, दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए सबका एक जैसा होना ज़रूरी नहीं, एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। दोस्तों आज जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपसे थोड़ा अलग हो, तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी जो लोग दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं वही हमें दुनिया को बेहतर ढंग से देखना सिखा देते हैं। इसी संदेश के साथ हमें दीजिए इजाज़त एक छोटे से ब्रेक की, हम फिर लौटेंगे ब्रेक के बाद।
1: फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
2: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से जुड़ गए हैं आप अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है बृहस्पतिवार और आज के दिन हम लेकर आते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट फेसबुक लाइव। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपने अपने फ़ोन उठाइए और दिए गए विषय पर लिख भेजिए अपने विचार। हमें रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार, हमें ढेर सारे कॉमेंट्स भेजिए। अब बढ़ते हैं हमारे आज के पहले

0: आज के पहले सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।

इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं और कुछ अपने विचारों से पीढ़ियों तक दिलों में बस जाते हैं। उनका जीवन एक ऐसी मशाल बन जाता है जिसकी रोशनी समय के साथ और भी दूर तक फैलती है। आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे ही गांधीवादी, चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक को, जिनके विचार आज भी हमें सत्य, सेवा और मानवता का मार्ग दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे, हम मना रहे हैं दादा धर्म अधिकारी जी की जयंती। दादा धर्म अधिकारी का वास्तविक नाम शंकर त्र्यंबक धर्म अधिकारी था। उनका जन्म 18 जून यानी आज ही के दिन सन 1899 को मध्य प्रदेश के बैतूल में हुआ था। बचपन से ही उनमें ज्ञान की प्यास और समाज के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देती थी। शिक्षा पूरी करने के बाद वो एक सफल जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि देश और समाज के लिए जीने का मार्ग चुना। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रहा था, तब दादा धर्म अधिकारी भी उससे जुड़ गए। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और स्वदेशी के विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया और कई बार जेल भी गए, लेकिन कठिनाइयों और संघर्षों ने उनके हौसले को कभी कम नहीं किया। दादा धर्म अधिकारी का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है, समाज में समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की स्थापना भी उतनी ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ उन्होंने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, सामाजिक सुधार और सर्वोदय के विचारों को आगे बढ़ने का कार्य किया। दोस्तों आपको बता दें, वो एक प्रभावशाली लेखक और वक्ता भी थे। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने सत्ता या पद की चाह नहीं रखी। वो समाज के बीच रहकर लोगों को जागरूक करने और गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में लगे रहे। दादा धर्म अधिकारी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। दोस्तों, थाली में परोसा हुआ खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होता, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी खेती और हमारे पर्यावरण से भी गहराई से जुड़ा होता है। अगर हम समझदारी से भोजन चुने, स्थानीय किसानों का समर्थन करें और खाने की बर्बादी रोकें, तो हम धरती को भी स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, आज यानी 8 जून को पूरी दुनिया एक और ख़ास दिन, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस यानी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मना रही है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है। गैस्ट्रोनॉमी भोजन बनाने, परोसने और खाने की कला तथा संस्कृति को कहा जाता है, और जब इसमें सस्टेनेबल यानी सतत शब्द जुड़ जाता है, तो इसका अर्थ होता है ऐसा भोजन और खान पान का तरीका जो पर्यावरण, स्थानीय समुदायों और आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक हो। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि हमारे भोजन की पसंद का असर केवल हमारी सेहत पर ही नहीं, बल्कि खेती, जल

सकती है। पिकनिक की परंपरा साथियों सदियों पुरानी है। समय के साथ ये लोगों को मनोरंजन और आपसी मेलजोल का एक लोकप्रिय माध्यम बन गई। आज के डिजिटल युग में जब लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में अधिक व्यस्त रहते हैं, पिकनिक हमारे वास्तविक दुनिया में अपने रिश्तों और को और मजबूत बनाने का अवसर देता है। तो दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस पर अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालिए, अपनों का हाथ थामिए, प्रकृति के करीब जाइए और ऐसी यादें बनाइए जो जीवन भर मुस्कान देती रहें। दोस्तों, कुछ खास है आज, मैं आज बस इतना ही।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।
2: दोस्तों, अब चलते हैं हमारे आज के दूसरे सेगमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स की ओर।

दोस्तों, क्या आपने कभी टीवी पर खिलाड़ियों को बर्फ पर झाड़ू लगाते हुए देखा है और सोचा है कि आखिर ये खेल है या सफाई अभियान? अगर हाँ, तो आज की ये रोचक जानकारी आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे खेल की दुनिया में जिसे दुनिया भर में आइस का शतरंज कहा जाता है और इस खेल का नाम है कर्लिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कर्लिंग क्या होता है। दरअसल कर्लिंग एक रोमांचक शीतकालीन खेल है जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड में हुई ऐसा माना जाता है। सदियों पुराने इस खेल ने आज वैश्विक पहचान बना ली है और ये प्रतिष्ठित विंटर ओलंपिक गेम्स का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अब बात करते हैं कि इस खेल को खेला कैसे जाता है। दोस्तों, कर्लिंग में दो टीमें होती हैं और प्रत्येक टीम में चार खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ी एक भारी ग्रेनाइट पत्थर जिसे स्टोन कहा जाता है को बर्फ की सतह पर फिसलाते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि ये स्टोन बर्फ पर बने गोलाकार निशाने जिसे हाउस कहा जाता है उसके केंद्र के जितना अधिक करीब पहुंचा सके पहुंचाएं। लेकिन असली मजा तो यहीं से शुरू होता है साथियों, क्योंकि झाड़ू लगाने का रहस्य यहीं छुपा है। जब स्टोन बर्फ पर आगे बढ़ता है तो उसके सामने खिलाड़ी तेजी से झाड़ू जैसी विशेष ब्रश से बर्फ को रगड़ते हैं। इसे स्वीपिंग कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल स्वीपिंग से बर्फ की सतह हल्की गर्म हो जाती है जिससे स्टोन अधिक दूर तक जा सकता है और उसकी दिशा को भी प्रभावित किया जा सकता है। यानी खिलाड़ी केवल स्टोन नहीं फेंकते बल्कि उसकी यात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, कर्लिंग में सिर्फ ताकत काम नहीं आती बल्कि दिमाग, रणनीति और धैर्य की भी परीक्षा होती है। हर चाल बहुत ही सोच समझकर चलनी पड़ती है, जैसे अपना स्टोन सही जगह पहुंचाना, विरोधी टीम के स्टोन को हटाना, उनके रास्ते में बाधा खड़ी करना और कई चाले पहले की रणनीति बनाना। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे चेस ऑन आइस यानी बर्फ पर खेला जाने

टॉपिक बेहद खास और ज़रूरी है, वो ऐसा लिखते हैं, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन की कुंजी है। दैनिक जीवन में योग अपनाने से शरीर स्वस्थ, मन शांत और विचार सकारात्मक बने रहते हैं। योग हमें तनाव, चिंता और थकान से दूर रखकर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए निकालना स्वयं के प्रति सबसे सुंदर उपहार है, क्योंकि स्वस्थ तन और प्रसन्न मन ही सुखी जीवन की पहचान है। योग अपनाइए, स्वास्थ्य बढ़ाइए और जीवन को खुशियों से भर जाइए। ज़ीशान वारसी जी और अयूब खान जी, आपका प्रेरणादायक संदेश प्राप्त हुआ है हमें। उम्मीद है आपके सार्थक विचार श्रोताओं को योग अपनाने के लिए आवश्यक प्रेरित करेंगे। दोस्तों, ये कमेंट्स का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों एक बार फिर जुड़ गए हैं आप आज के स्पेशल सेगमेंट फेसबुक लाइव में। हमें अगला कमेंट भेजा है मोहम्मद दानिश सिद्दीकी ने। उनके साथ हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, ज़िला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से। वो लिखते हैं, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए एक वरदान है। योग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। योग करने से हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ एवं स्वच्छ रहता है। योग के साथ साथ क्रिकेट खेलना, दौड़ना आदि इन चीज़ों से भी हमारे शरीर को फ़ायदे मिलते हैं। योग तो निरंतर ही करते रहें। तौफीक अहमद सिद्दीकी जी, आपके प्रेरणादायक विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि योग के साथ साथ खेलकूद और नियमित व्यायाम भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इसी क्रम में हमें दूसरा कमेंट भेजा है हाजी गफ्फार खान ने, गांधी समाधि रोड रामपुर से। हाजी गफ्फार खान, रजिया खान और सिमरन खान जी ने वो लिखते हैं, कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा आदाब। आज की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में योग हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करने से शरीर में आने वाले कड़ेपन और दर्द को दूर करने के लिए योगासनों की आवश्यकता होती है। मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी आधुनिक बीमारियों को नियंत्रित रखने के लिए नियमित योग आवश्यक है। योग एक ऐसी हानि रहित और शून्य खर्च वाली चिकित्सा पद्धति है जिसे हर उम्र का व्यक्ति आसानी से अपना सकता है। यदि हम रोज मात्र 20 से 30 मिनट तक योग को दें तो हम एक स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। इसलिए कहा भी जाता है, योग भगाए रोग। जी हाजी गफ्फार खान जी, रजिया खान जी और सिमरन खान जी, आपके सुंदर विचार सुनकर अच्छा लगा। वाकई नियमित योग स्वस्थ और संतुलित जीवन की कुंजी हैं और योग भगाए रोग, बिल्कुल सही लिखा है आपने। इसी के साथ हमें अगला कमेंट भेजा है लाल मोहम्मद अंसारी जी ने, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। वो लिखते हैं, जीवन में योग की बहुत आवश्यकता है। जिस तरीके से हमारे शरीर के कुछ अंग बुरी तरह प्रभावित होते जा रहे हैं, उस हिसाब से हमें योग की बहुत ही आवश्यकता है। योग करें और निरोग रहें। लाल मोहम्मद अंसारी जी, हमें आपका भी संदेश प्राप्त हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में योग हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का एक प्रभावी माध्यम है। दोस्तों आइए अब सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों हमें अगला कमेंट लिख भेजा है भाई रफत साहब मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से। उनके साथ हैं नगमा नाज मंसूरी। वो लिखते हैं, दोस्तों अगर योगा की बात की जाए तो योग हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो करने से हमारा शरीर तो हल्का रहता है और तनाव मुक्त भी रहता है, और शरीर में जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। योग हर इंसान को करना चाहिए। सुबह को उठकर खाली पेट योग करना बहुत फ़ायदेमंद है। रफत साहब और नगमा नाज मंसूरी जी, आपके सुंदर और जागरूकता भरे विचारों के लिए धन्यवाद। आपने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों को बहुत सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। और हमें अगला कमेंट लिख भेजा है प्रवीण चौहान जी ने। वो लिखते हैं, आज के इस भागदौड़ भरे समय में स्वस्थ जीवन के लिए योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। योग हमारे तनाव को कम करके मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण चौहान जी। आपके विचार सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। आपने भी बिल्कुल सही कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है।

सवाल पूछा था, किस राज्य ने अपने जीआई टैग वाले अनानास को एक प्रीमियम वैश्विक ब्रांड में बदलने के लिए मिशन क्वीन पाइनएप्पल पहल शुरू की है? और इस सवाल का सही उत्तर है त्रिपुरा। और इस सवाल का सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हैं आप सभी, लाल मोहम्मद अंसारी, मिसबा शमसी, जीशान वारसी, नंद कुमार ठाकुर, नानक खन्ना, नारायण लाल साहू, पुंजाजी नावकर, मोहम्मद रफीक पवार, दिलीप बाबर, दुल्हापुर मुरादाबाद महबूब, आरसी कामड़े, जॉन्डी कैस्ट्रो, दिनेश वर्मा, हीरामानी वर्मा, विजय सिंह महोबिया, मसरूर हसन, सुदर्शन शाह, अजीत कसाना, रामकुमार रेवार, देवशंकर तमूरिया।

सिंह अंजान, भाई रफत साहब, मुकेश कश्यप, अशोक डाले, भगवत चौबे, अनोखे लाल, चौधरी राजवीर सिंह, फरियाद हुसैन अंसारी, पूनम दीक्षित, उमेश कुमार, भूपेंद्र जुनेजा, अनोखे लाल, दुर्गाराम साहू और नारायण प्रधान, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सवाल का सही जवाब देने के लिए। दोस्तों, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युववाणी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी रामपुर। हमारी पिन संख्या है 244901 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। अब दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त फातिमा को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। संध्या के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
2: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। अब आपको बताते हैं खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं। प्रभारी निरीक्षक थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत से हमें सूचित करते हैं कि मनप्रीत कौर पुत्री सतपाल सिंह निवासी ग्राम रघुमाथपुर थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत से विगत 27 मार्च सन 2026 से लापता हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी अथवा सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। निवासी ग्राम रघुमाथपुर थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत। आपको बता दें कि मनप्रीत कौर, इनकी ऊंचाई 5 फीट है, रंग गोरा है, आंखों का विवरण काला, इन्होंने लाल रंग का सूट और सलवार पहन रखा है। इनके संबंध में मोबाइल नंबर है 9412378105। अब सुनिए एक और व्यक्ति के संबंध में सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत से हमें सूचित करते हैं कि नीलोफर पत्नी राशिद अख्तर निवासी मोहल्ला गणेशगंज पूर्वी थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत से विगत 12 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं। आपको बता दें कि नीलोफर की आयु 35 वर्ष है, इनकी ऊंचाई 5 फीट 6 इंच है, इन्होंने कथई नकाब और पैरों में चप्पल पहन रखी है। यदि किसी भी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी अथवा सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। निवासी मोहल्ला गणेशगंज पूर्वी थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत। इनके

संबंध में मोबाइल नंबर इस प्रकार है 8960373058। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लीजिएगा 8960373058। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

आज शाम 7:31 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें। आज के कलाकार होंगे रूप कुमार राठौर और सोनाली। सबरस ये कार्यक्रम नात और कव्वाली का आप सुन सकेंगे आज रात्रि 9:30 पर।

शफकत अमानत अली के सुर में अभी आपने सुना यारियम मूवी से ये गीत। इसी गीत के साथ आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। किसान भाई सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनन मारे सभी भैया बहनों को आपकी बहन मीना
1: और आपके भैया पंकज की
0: राम राम। और सुनाओ पंकज भैया, कैसे हाल चाल है आपके?
1: बस मीना बहन बढ़िया हैं, और ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं हमारे किसान साथी भी बढ़िया रहे।
0: हाँ भैया बिल्कुल, जब हमारे किसान भैया बहन बढ़िया होंगे तभी अपनी खेती बाड़ी अच्छे से कर पावेंगे
1: जी
0: भैया।
1: बहन। और बहन आज जो समय है ना वो एक हम लोग बैठे हैं जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है, आज को जो विषय है वो है अरहर की दाल।
0: हाँ भैया,
1: और जब अरहर की दाल को नाम बहने याद आया था ना तो फिर बात कुछ और है,
0: अरे
1: क्योंकि
0: भैया
1: हमारे जो गांव में जो है ना वो अरहर की दाल की मान्यता बहुत ज्यादा है।
0: हाँ भैया क्यों,
1: और जब कोई मेहमान आ जाते तो भैया हम अरहर की दाल खाते हैं और ऊपर से डाल देते हैं देसी घी।
0: अरे भैया तुमने तो कहते ही बहुत है ऐसी बात कह दी कि अगर अरहर की दाल में घी डाल के
1: जी
0: और चावलों के साथ खाओ तो भैया वापस सोने पे सोहागा।
1: हाँ, और जाको दालों की रानी भी कहते हैं।
0: हाँ भैया वो तो है ही।
1: हाँ,
0: बिल्कुल पंकज भैया, अगर अरहर ऐसी फसल है ना
1: जी
0: जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे देती है
1: जी,
0: ऊपर से इसकी दाल हर घर की जरूरत है,
1: बिल्कुल सही।
0: इसीलिए किसान भाइयों के लिए ये नकदी फसल भी साबित हो सकती है भैया।
1: सही कहा बहन आपने, गांव में अक्सर देखा जाता है ना कि जो हमारे किसान भैया हैं वे धान और गन्ने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अरहर भी खेत की जो उर्वरा शक्ति है वहां को बढ़ाने में मदद करती है बहन।
0: हाँ भैया,
1: इसकी जड़ों में ना वो जो गांठें बनती हैं वो सब होत का है कि वो मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाती है।
0: हाँ भैया, और यही वजह है कि कृषि विषय वैज्ञानिक भी फसल चक्र में अरहर को शामिल करने की सलाह देते हैं भैया। अगर किसान भाई अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो सबसे पहले खेत की तैयारी पर ध्यान देना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सही बात है इना बहन। बहन फसल कोई भी सही, जब हम खेत की तैयारी अच्छी करेंगे तो वह फसल हमारी अच्छी हो पाएगी।
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: अगर हम अरहर की बात करें तो खेत की जो तैयारी जब हम करें ना तो 2 से 3 जुताई हम कर लें और जो मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा बना लें, और जो अंतिम जुताई जब हम करें
0: हाँ
1: तो वामा अगर हमारे गोबर की जो सड़ी खाद होती है ना
0: हाँ
1: वो अगर मिल जाए तो वह को मिला दें, क्योंकि कोई भी फसल सही फसल को शुरुआती बढ़वार में काफी फायदा मिलता है।
0: हाँ, और भैया जहाँ तक बुआई को सवाल है ना भैया,
1: जी
0: जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई के मध्य तक का समय सबसे उपयुक्त मानो जाता है भैया।
1: जी बहन,
0: मानसून की पहली अच्छी बारिश के बाद बुआई कर देनो बेहतर है भैया।
1: और मीना बहन एक चीज और है, किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का चुनाव भी करना चाहिए।
0: हाँ भैया जरूर,
1: बात से कहा है कि जो अपने क्षेत्र की जो जलवायु के अनुसार ना कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी लेकर ही बीज खरीदें।
0: हाँ,
1: क्योंकि अगर हमारे बीज प्रमाणित होंगे ना तो वाको परिणाम भी अच्छा मिलेगा।
0: हाँ भैया, और बीज की मात्रा भी सही होना चाहिए।
1: जी बहन बिल्कुल।
0: हाँ, और जैसे सामान्य तौर पर 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है भैया।
1: जी बहन,
0: बुआई से पहले बीजारोपण जरूर करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही।
0: हाँ भैया, और जैसे ताकि बीमारियों को खतरा कम हो सके।
1: आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर हम बीज उपचार कर लेंगे तो वासा होएगो का जो पौधे होते हैं ना हमारे वे स्वस्थ रहते हैं, और जब पौधे स्वस्थ रहेंगे तो अंकुरण भी वामा अच्छे होएगो।
0: हाँ बिल्कुल।
1: कई किसान हमारे भैया जो है ना इस छोटी सी बात को नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन बाद में उन्हें नुकसान उठाने पड़ता है।
0: हाँ भैया जैसे, हाँ भैया बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर अरहर की खेती में कतार से कतार की दूरी ना भैया
1: जी बहन
0: लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर रखना चाहिए।
1: अच्छा।
0: हाँ भैया, इससे पौधों में पर्याप्त धूप और हवा मिलती है
1: जी,
0: तथा निराई गुड़ाई करने में भी सुविधा खूब होती है भैया।
1: बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात एक और है मीना बहन
0: का भैया,
1: खरपतवार नियंत्रण।
0: अच्छा।
1: क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, शुरुआती 40 से 50 दिन फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इस दौरान अपने खेत को खरपतवार से दूर रखेंगे तो हमारी फसल ठीक होगी।
0: हाँ भैया बिल्कुल। और अगर बारिश सामान्य रहे तो भैया ना
1: जी
0: अरहर को ज्यादा सिंचाई की जरूरत ना पड़ती।
1: हाँ,
0: है
1: वो तो बात सही है मीना बहन।
0: हाँ, लेकिन फूल आने और दाना बनने के समय नमी की कमी ना होनी चाहिए भैया।
1: बिल्कुल सही बात है। और किसान साथियों, जो हमारे फसल में कीट या रोग की होते हैं बाकी निगरानी हमें लगातार रखनी चाहिए मीना बहन।
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: क्योंकि जो हमारे अरहर की जो फसल होती है ना वामा फाली छेदक जो कीट होता है वो अरहर को काफी नुकसान पहुंचाता है, तो अगर हम नियम से अपने खेत की देखभाल करेंगे तो वाको नियंत्रण हम समय से कर सकते हैं।
0: हाँ भैया, और अगर किसी प्रकार की बीमारी या कीट का प्रकोप दिखाई दे ना भैया
1: जी
0: तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही दवा का प्रयोग करें। बिना सलाह के दवा का इस्तेमाल कभी कभी नुकसानदायक हो सकता भैया।
1: जी भैया, और एक बात और महत्वपूर्ण है मेरे बहन
0: का भैया,
1: कि अरहर की फसल जो खेत में लंबे समय तक रहती है। इसलिए जो हमारे किसान भाई होते हैं ना, तो उनको जो करना चाहिए, जो हमारे खेत की चारों तरफ जो मेड़ा है उन
0: हाँ
1: मेड़ों को मजबूत रखें, और ताकि जल निकासी की जो उचित व्यवस्था है वो भी करते रहें।
0: हाँ भैया, और जब फली का अधिकांश भाग सूख जाए
1: जी
0: और दाने कठोर हो जाएं तब कटाई करनी चाहिए। कटाई के बाद अच्छी तरह सुखा कर ही भंडारण करना चाहिए।
1: हाँ, क्योंकि साथियों हम फसल कोई भी करें, बाको देखो मीना बहन, घर पर एक फसल लाना एक अलग बात होती है
0: हाँ
1: कि
0: भैया
1: हम फसल
0: बिल्कुल
1: काट लाए और बाको हम घर पर ले आए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और होती है साथियों, कि वो होता है अनाज को भंडारण,
0: हाँ
1: कि
0: भैया
1: हम भंडारण कहाँ कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं और किस प्रकार की विधि को अपना कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम सही भंडारण करेंगे तो वहाँ से होगा जो हमारी दाल और जो जो बीज है वे दोनों सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि अगर हम नमी वाले स्थान पर भंडारण कर रहे हैं तो वहाँ से जो है वो कीट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है बहन।
0: हाँ भैया, तो किसान भाइयों, यदि उन्नत बीज, सही समय पर बुआई, संतुलित खाद, खरपतवार नियंत्रण और समय पर देखभाल की जाए तो अरहर की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है भैया।
1: हाँ, सबसे बड़ी बात अरहर हमारी मिट्टी की सेहत को सुधारने के साथ साथ परिवार की जो पौष्टिकता जो हमारी जरूरत है
0: हाँ भैया,
1: वो भी बढ़ाती है,
0: हाँ भैया बिल्कुल,
1: इसलिए इसे खेती में जरूर शामिल कराएं हमारे किसान भैया।
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: और मीना बहन, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे कार्यक्रम में बदलाव करे गए हैं
0: हाँ भैया बिल्कुल।
1: और हम रोजाना अपने जो कार्यक्रम बदलाव करे गए हैं वाको हम अपने सुनवाते हैं अपने
0: हाँ
1: किसान साथियों को, तो एक बार हम फिर बता दे रहे हैं अपने किसान साथियों को कि जो महीना को जो पहले बुधवार हुए वहाँ में हम सफल कृषक से बातचीत सुनवाएंगे।
0: हाँ भैया, और इसी प्रकार से अगर महीने का दूसरा बुधवार है ना भैया,
1: जी,
0: तो सफल महिला कृषक से बातचीत सुनवाई
1: तीसरे
0: जाएगी।
1: बुधवार को मासिक कृषि गोष्ठी सुनाई जाएगी।
0: और भैया इसी प्रकार से अगर महीने का चौथा बुधवार पड़ता है ना भैया,
1: जी,
0: तो सफल कृषक स्टार्टअप आप तक पहुंचा हो जाएगा भैया।
1: और बहन अगर महीने का पांचवा बुधवार पड़ रहा है तो फिर वही सफल कृषक से बातचीत सुनवाई जाएगी।
0: हाँ भैया, और इसी प्रकार से अगर महीने का पहला गुरुवार है तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष सुनवाओ जाओ भैया।
1: और अगर दूसरा गुरुवार है तो खेत पत्रिका, कृषि पत्रिका खेत खलियान सुनाया जाएगा।
0: हाँ भैया, और इसी प्रकार से महीने का तीसरा गुरुवार सुनवा आएगा तो भैया आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष सुनवाओ
1: चौथे
0: जाएगा।
1: गुरुवार को फिर वही कृषि पत्रिका खेत खलियान सुनवाया जाएगा आपको।
0: हाँ भैया, और अगर यदि पांचवा गुरुवार पड़ता है भैया ना,
1: जी,
0: तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
1: और इसी प्रकार से बहन अगर हमारा महीने का पहला शुक्रवार है तो लोक मंजरी जो फरमाइशी लोकगीत पर आधारित प्रोग्राम है, इसमें हमारे जो किसान साथी हैं वे अपने पसंद को कोई भी लोकगीत आला ये सुन सकते हैं।
0: हाँ भैया, और इसी प्रकार से महीने का दूसरा शुक्रवार पड़ेगा तो कृषि संघ का समाधान, समस्या व उनसे जुड़े समाधान भैया, इसमें अपने हमारे जो किसान भैया बहन हैं अपनी जो फसल से संबंधित जो भी शंका या समाधान करवाने में, अपने जो बीज से या कीट उनके लिए
1: जी
0: जो भी अपना समाधान कर उसके लिए आप पत्र द्वारा या अपने मैसेज द्वारा
1: भेज सकते हैं।
0: भेज सकते हैं।
1: ऐसी दूसरे तीसरे शुक्रवार को लोक मंजरी वही फरमाइशी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा।
0: हाँ भैया, और इसी प्रकार से अगर महीने का चौथा शुक्रवार पड़ेगा तो कृषि संघ का समाधान, समस्या व उनसे जुड़े समाधान भैया।
1: और यदि पांचवा शुक्रवार पड़ता साथियों तो फिर वही लोक मंजरी जो फरमाइशी लोकगीत पर आधारित है वो सुनवाया जाएगा। और मीना बहन हमारे जो किसान हैं वो जाके ले हमारे मोबाइल नंबर नोट कर लें,
0: हाँ भैया
1: क्योंकि
0: जरूर।
1: बासर भेज सकते हैं वे। मोबाइल नंबर है 0595-2324-326। और अगर हमारे किसान साथी व्हाट्सएप या एसएमएस से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप नंबर है हमारो 9410087876। और अगर वे हमसे ईमेल के द्वारा जुड़ना चाहते हैं
0: हाँ
1: तो
0: भैया,
1: ईमेल के लिए पता है हमारो patramilaairrampur@gmail.com।
0: और भैया अगर हमारे किसान भैया अपने पत्र भेजना चाहें तो पत्राचार हेतु हमारा पतो है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901।
1: तो मीना बहन
0: हाँ भैया,
1: आज दिन का है
0: आज है भैया महीने का तीसरा गुरुवार भैया,
1: तो आज का चीज सुनवाई जाएगी।
0: आज हम अपने किसान साथियों सुनवावेंगे आकाशवाणी गांव में विशेष कार्यक्रम भैया।
1: जी बहन, तो साथियों आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष पर हम किसी न किसी गांव में जाते हैं और वहां हम बहुत सारे अपने किसान साथियों से मिलते हैं और उनके अनुभव आप तक पहुंचाते हैं। तो ऐसी है, आज हम एक गांव में गए जो गांव का नाम है पत्रासा कुमरपुर, जो ब्लाक बरखेड़ा जिला पीलीभीत में पड़ता है। वहां हमने अपने किसान साथी अमर सिंह भैया जी से, फरीद जी से और जो वहाँ की मीना जी हैं, आशा वर्कर हैं, उनसे बातचीत करी। हमने उनसे क्या बातचीत करी वो आपको सुनवाते हैं। साथियों, जब सुबह की पहली किरण खेतों पर बिखरती है, जब पक्षियों का कलरव और बैलों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को जीवंत कर देती हैं, तब एक गांव अपनी नई उम्मीदों के साथ जागता है। भारत की असली पहचान, उसकी संस्कृति और उसकी ताकत इन गांव में ही बसती है। आज हम कार्यक्रम आकाशवाणी गांव के अंतर्गत आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे गांव की यात्रा पर, जिसने अपनी मेहनत, एकता और विकास की सोच से अपनी अलग पहचान बनाई है। और जा गांव को नाम है पत्रासा कुमरपुर, जो ब्लाक बरखेड़ा में पड़ता है और जिसको जिला पीलीभीत है। साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा जिला पीलीभीत है वो धान, गेहूं, गन्ना, मक्का के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जिले की उपजाऊ भूमि व पर्याप्त जल संसाधन कृषि को समृद्ध बनाते हैं। साथियों, जो पीलीभीत है वो हमारी बांसुरी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की बांसुरी बहुत जगह निर्यात करी जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे किसान साथी एक पेड़ की छांव में बैठे हैं। तो एक भैया जी से करते हैं बातचीत और इनसे पूछते हैं इनको परिचय। भैया, का नाम है आपको?
2: अमर सिंह।
1: तो आप जयगांव के निवासी हो?
2: जी, इसी गांव के निवासी हैं, पत्रासा कुमरपुर।
1: जाको ब्लाक कहाँ पड़ता है?
2: बरखेड़ा।
1: अच्छा,
2: जिला पीलीभीत।
1: अमर सिंह भैया, अगर मैं इस गांव के जनसंख्या की बात करूं, इस गांव की जनसंख्या भैया कितनी है?
2: इसमें जनसंख्या हमारी ऐसी 2500 के करीब में है।
1: और सभी जातियों के लोग रहते होंगे?
2: जी हाँ, सभी जातियों के लोग रहते हैं।
1: भैया, अगर मैं आपसे इस गांव की कृषि की बात करूं, तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें करते हो आप?
2: यहाँ पे मक्का है, गेहूं है, धान है, बाजरा है।
1: पीलीभीत भैया वो तराई क्षेत्र माना जाता है
2: जी।
1: तो इस समय आप कौन सी फसल की तैयारी कर रहे हो?
2: इस समय तो हम धान की फसल की तैयारी कर रहे हैं।
1: जो बेड़ थी वो डाल दी आपने?
2: हाँ, बेड़ तो हमारी 15 दिन की हो गई है और खेत जुतवा के डलवा दिए हैं, जिससे को उसमें खरपतवार होगा वो नष्ट हो जाएगा।
1: अच्छा भैया, मैं आपके गांव की अगर शिक्षा की बात करूं, तो शिक्षा का क्या यहाँ का रुझान है?
2: यहाँ पे शिक्षा का रुझान अच्छा है। एक सरकारी स्कूल है, 2 प्राइवेट स्कूल है। उच्च शिक्षा के लिए हमारे यहाँ से पीलीभीत जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाँव में पढ़ते हैं।
1: अच्छा
2: जी,
1: यानी पढ़ने का साधन आपके यहाँ ठीक है
2: जी।
1: अच्छा भैया, जो आपके यहाँ के युवा लोग हैं वो नौकरी पर रहे हैं?
2: जी हाँ है, नौकरी पे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं।
1: और अपना व्यवसाय भी करते हैं?
2: जी, व्यवसाय भी करते हैं, खेती बाड़ी भी है।
1: मैं अगर यहाँ की आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूँ, तो उसके लिए आपके गांव में क्या व्यवस्थाएं हैं?
2: स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है।
1: एएनएम बहन जी जो है आपके गाँव की, वो आती है?
2: जी, टाइम से आती है वो,
1: मतलब टीकाकरण समय पर होता है
2: जी।
1: और अगर मैं यहाँ की आशा बहन जी की बात करूँ, तो आशा बहन जी है इस गांव में?
2: जी है। इसमें
1: कितनी आशा हैं?
2: इसमें 2 आशा हैं।
1: क्योंकि भैया हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्थाएं हैं, वो हमारी आशा बहन जी ही गांव में देखती हैं। क्योंकि साथियों, जो गांव की आशा बहनें होती हैं वो एक स्वास्थ्य विभाग की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। ये आशा बहनें गांव के जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनको भी ब्लाक स्तर तक लेके जाती हैं, है ना भैया? और आपको जो CSC पड़ता है, सरकारी ब्लाक है, वो बरखेड़ा पड़ता है?
2: जी जी।
1: भैया, मैं यहाँ पर सड़क और परिवहन की बात करूँ, तो आपके गाँव में पहले जब हम एक बार आए थे तो इतनी व्यवस्थाएं हमने सड़क की नहीं देखी थी, लेकिन आज सड़क अच्छी मालूम पड़ रही है और हर जगह रोड है आपके गांव में, तो सड़क व्यवस्था बढ़िया है आपके यहाँ?
2: जी, पहले से तो बहुत बेहतर है यहाँ पे व्यवस्था।
1: क्या क्या परिवर्तन हुआ है?
2: परिवर्तन क्या, पहले तो खड़ंजे थे गांव में, कच्ची नालियां थी, अब सब कुछ विकास हो रहा है। RC पड़ गई है, हेडपम्प भी लग गए हैं, शौचालय भी बन गए हैं और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी यहाँ पे सही है समुदाय की।
1: क्योंकि हम अगर इस गांव से थोड़े से जाएंगे तो हम एक बीसलपुर भी रास्ता हमारा जुड़ जाएगा और पीलीभीत भी चला जाता है। तो सब गांव की जो रास्ते हैं उनको एक मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है ना
2: जी।
1: अगर मैं भैया पेयजल की बात करूं, तो यहाँ पानी का साधन क्या है पीने का?
2: पेयजल की बात करी जाए तो यहाँ सरकारी नल लगे हुए हैं, टंकी लगी हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है पानी की।
1: हाँ, हमारी सरकार ने हर घर जल योजना के तहत तो गांव-गांव घर-घर में टंकी पहुंचा दी है ना, पानी की व्यवस्था ठीक है
2: जी।
1: महिला सशक्तिकरण पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है आपके गांव में?
2: महिला सशक्तिकरण के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छे सरकार ने समाधान करा है, तो स्वयं सहायता समूह है उसमें अच्छी भागीदारी है।
1: हाँ, अपने छोटे छोटे जो हमारे समूह होते हैं वो समूह हमारी बहनों के द्वारा बना लिया जाता है, और इसमें क्या होता है?
2: इससे महिलाओं को मजबूती मिलती है और आगे अवसर मिलता है बढ़ने का, महिलाओं के लिए रोजगारी का अवसर भी मिलता है।
1: अपनी छोटी छोटी बचत करके हमारी जो बहनें हैं वो अपनी एक जरूरत जब उन्हें पड़ती पैसे की, तो वो इस बार हमने ले लिया पैसा, दूसरी बार किसी दूसरी बहन जी ने लिया, तो हम अपने घर की आवश्यकताओं पूरी कर सकते हैं
2: जी।
1: अच्छा भैया, पशुपालन करते हैं आप?
2: जी हाँ, पशुपालन भी करते हैं।
1: तो पशुपालन में आपके गाँव की क्या व्यवस्था भैया?
2: पशुपालन में हमारे यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, हमारे घर पे तो 4 पशु हैं अभी, जिसमें 2 भैंस हैं 2 गाय हैं।
1: अच्छा
2: जी,
1: तो लोग यहाँ हमारे जो युवा भैया हैं वो जैसे बकरी पालन है और मुर्गी पालन है, करते हैं क्या?
2: हाँ, ये भी करते हैं, जैसे पूरा गांव नहीं करता है, कुछ लोग करते हैं इसमें।
1: अच्छा, सरकारी योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो सरकारी योजना में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान है, वो आपके गांव में बन रहे हैं?
2: जी हाँ, हमारे गांव में बन रहे हैं।
1: अगर मैं किसान सम्मान निधि की बात करूं तो आपके यहाँ सभी को लगभग जो जिसके पास जमीन है तो उनको सम्मान निधि मिल रही है आपको?
2: हाँ, किसान सम्मान निधि यहाँ टाइम से आ रही, सभी को मिलते हैं जिसके पास में जमीन है।
1: इसके अलावा आप और क्या क्या करते हो?
2: वार्ड मेंबर भी हैं हम तो।
1: अच्छा, आप गांव के वार्ड मेंबर भी हैं? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पूरे गांव की जानकारी भी है और आप वार्ड मेंबर हैं तभी आपको जानकारी है। तो भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका इस गांव में भविष्य के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और क्या क्या परिवर्तन आप करना चाहते हैं इस गाँव में?
2: तो जनता के बीच में जैसे हम लोग जाते हैं, कुछ की समस्या सुनते हैं वार्ड मेंबर होने के नाते, किसी की पेंशन बनवाना है, किसी का आधार कार्ड बनना है, किसी का शौचालय बनना है, तो ब्लॉक में जाते हैं, सेक्रेटरी साहब से मिलते हैं, प्रधान भी जाते हैं हमारे साथ में
1: जी।
2: तो उसके द्वारा योजना आती है, हम अपने गाँव में हर एक व्यक्ति को दिलवा देते हैं।
1: ठीक है साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे लिए दी। और हमारे सामने एक भैया और हैं, इनसे पूछते हैं इनको नाम। भैया का नाम है आपको?
2: फरीद।
1: फरीद, आप इसी गांव के निवासी हो
2: जी?
1: फरीद भाई, आपके मगर उम्र की बात करूं तो आपके

0: कितनी उम्र होगी?
1: 35 साल।
0: आप खेती बाड़ी करते हो?
1: जी हमारे घर खेती बाड़ी तो नहीं है, बाग है।
0: अच्छा, आम। लगभग कितने बीघा बाग है आपके?
1: 10 बीघा।
0: तो भैया जब आपने आम की बात करी तो देखो इस समय तो सीजन भी आम को चल रहा है
1: जी, जी।
0: तो आपके बाग में आम के कौन कौन से पेड़ हैं भैया?
1: ये हमारे बाग में लंगड़ा है, फजरी है, बम्बई है और चौंसा।
0: क्योंकि साथियों अगर हम फजली की बात करें तो फजली वो आम तो ज़्यादा स्वादिष्ट ना होता है लेकिन उसकी अमिया जो होती है वो बहुत मीठी होती है ना?
1: जी जी, अमिया ही तोड़ के बिकती है।
0: हाँ, तो इस समय आप बाग रखा रहे हो? तो
1: जी जी रखा रहे हैं।
0: हाँ, तो आपके बाग में आम गिरने लगा?
1: अभी कम गिर रहा है, बम्बई वगैरह छू रहा हल्का हल्का।
0: यानी क्योंकि बम्बई पहले पक जाता है ना, अभी दशहरी वगैरह आम जो है और लंगड़ा का आम नहीं छू पा रहा।
1: नहीं नहीं अभी नहीं, अभी कच्चा है।
0: तो भैया उसकी देखरेख के लिए इस समय आप बाग की देखरेख के लिए क्या कर रहे हो?
1: बाग में यही नमी वगैरह, कीड़ा वगैरह पेड़ पे ना लगे, नमी बनी रहे।
0: अच्छा भैया फरीद भाई, नमी क्यों बनी रहे बाग में?
1: नमी ये है, पेड़ को भी ऊर्जा मिलती है और हमारा जो फल गिरता है वो फटता नहीं है।
0: अच्छा,
1: नमी के कारण।
0: अच्छा, क्योंकि अगर जमीन ठोस होगी तो फल जो गिरेगा
1: फट जाएगा।
0: अच्छा भैया, तो नुकसान भी इसमें होता है आपके बाग में? तो
1: नुकसान भी होता है, आंधी आती है तो, और ये बंदर वगैरह ये सब नुकसान,
0: बंदर भी उसमें पचाते हैं, और जो गिद्दल वगैरह होती है।
1: हाँ, रात में गिद्दल वगैरह भी आती है, इसके लिए हमने पीपे बांध रखे हैं जगह जगह
0: जी,
1: और रात में उनकी देखभाल करते हैं।
0: अच्छा, तो गिद्दल तो जिस आम पे खा लेती होगी तो वो आम बेकार हो जाता है।
1: जी जी, वो तो बेकार है, वो तो खोतर के फेंक देती है नीचे।
0: अच्छा, तो उसके बचाव के लिए आप कह रहे हैं कि मैंने पीपा बांध दिया। तो भैया इस पीपा का क्या कार्य होता है?
1: इसे पीपे को हिलाते हैं, जो आवाज करता है इसकी वजह से वो भाग जाता है।
0: आपका आम गिरने लगेगा तो आप मंडी ले जाते हो या बाग में से व्यक्ति ले जाते हैं?
1: मंडी भी ले जाते हैं, जैसे ज्यादा माल होता है तो बाग में से ही उड़वा देते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: तो माल आपका बरेली जाता है कहाँ, या पीलीभीत?
1: पीलीभीत ही जाता है हमारा।
0: तो और इसके अलावा भैया आप क्या करते हो?
1: ये हमारे पास बकरी है।
0: अच्छा, बकरी पालन करते हो आप जी? आप कब से पाल रहे हो बकरी?
1: 4, साढ़े 4 साल हो गए।
0: तो भैया आप इनकी देखरेख कैसे करते हो? क्योंकि साथियों हम जानते हैं कि बकरी पालन ग्रामीण जो क्षेत्रों में आय को एक अच्छो और कम लागत वालों व्यवसाय माने जाते हैं। बकरी पालन के क्या लाभ है?
1: बकरी पालने के लाभ हैं, जैसे हमें दूध बच जाता है
0: जी,
1: और हमारी बकरी 6 महीने भी आ जाती
0: है। क्योंकि जो कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है, और आप कह रहे हो कि बकरियां जो है वो जल्दी प्रजनन करती हैं। अच्छा भैया, जो आप वो बकरी पालते हो तो वो कौन से नस्ल की बकरी है?
1: ये हमारी अजमेरी है, तोता परी है और कुछ देसी है।
0: हाँ, क्योंकि नस्ल तो बहुत है, जैसे जमुनापरी है। जो जमुनापरी जो नस्ल की बकरी होती है भैया, वो अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती है ना। और बरवरी है, बीटल है, सरहोई है, ये बहुत सारी है।
1: जी जी,
0: तो भैया अगर मैं इनकी आहार की बात करूँ तो ये क्या आप क्या खिलाते हो इनको?
1: इनको हम ये हरियाई वगैरह और गूलड़, कटहल के पत्ते, चोकर।
0: अच्छा
1: जी।
0: अच्छा, बकरी जो है वो गूलर के पत्ते ज्यादा पसंद करती है?
1: हाँ हाँ, उसमें ज्यादा नरम भी होता है, प्रोटीन भी ज्यादा होता है।
0: अच्छा, इसलिए बकरी ज्यादा पसंद करती
1: जी
0: है।
1: जी, उससे हेल्थ बनी रहती है बकरी की,
0: पचने में सहायता करती है।
1: हाँ,
0: और अगर ये जब ब्याज देती है तो एक बार में लगभग कितने बच्चे के?
1: ये पहलोटा में तो एक ही बच्चा भी आती है, जब दूसरी बार होता है तो 2 या 3।
0: अच्छा
1: जी,
0: और मैं अगर दूध की बात करूं तो लगभग एक बकरी कितना दूध दे देती भैया?
1: एक बकरी 1.5 से 2 लीटर दूध देती, अच्छी नस्ल की बकरी है तो 3 लीटर दूध दे देती है।
0: जैसे किसी को डेंगू हो जाता है
1: जी,
0: तो वो कहता है भैया डेंगू, भैया बकरी का दूध पिलाओ, तो बकरी के दूध की बहुत मांग रहती है, तो आप ऐसी दे देती?
1: हाँ, ऐसी दे देते हैं किसी।
0: चलो, ये भी
1: हमारी वजह से
0: अरे
1: ठीक हो जाए।
0: फरीद भाई, तो ये भी बहुत एक समाज सेवा है, वरना आदमी बकरी के दूध को ढूंढता है। अच्छा भैया, अगर मैं रोग की बात करूं तो बकरी में कौन कौन से रोग लग जाते हैं? इसे
1: मुंह पका होता है, एक खुर पका होता है
0: जी, और इसमें जो है ना भैया, इसमें जो है मुंह और खुरों में छाले पड़ जाते हैं और लार टपकती है, और बकरी को जो चलने में परेशानी होती है
1: जी,
0: तो इसका टीकाकरण कराते हो आप?
1: जी कराते हैं।
0: कौन सा रोग?
1: गला घोंटू होता है।
0: अच्छा, इसमें क्या होता है भैया?
1: इसमें यह है, बकरी को गले से दिक्कत होती है ज्यादा।
0: अच्छा, तो देखो एक बात फरीद भैया, उसका टीका हमें बरसात से पहले करा लेना चाहिए।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: है ना भैया? बहन जी, क्या नाम है आपको?
2: हमारा नाम मीना है।
0: तो आप जयगांव के निवासी हो?
2: हाँ, हम जयगांव के निवासी हैं।
0: आपकी मैं उम्र की बात करूँ तो आपके लगभग कितनी उम्र हुई?
2: होगी 42 साल।
0: 42 साल। आप कहाँ तक पढ़ी हुई हो?
2: हमने इंटर कर रखा है।
0: आपने आगे पढ़ाई क्यों ना करी?
2: आगे पढ़ाई करी नहीं, बीए करने का सोचा था, लेकिन उससे पहले फिर शादी हो गई, इस वजह से हम बीए ना कर पाए।
0: तो आपने प्राइवेट फॉर्म ना भरो?
2: प्राइवेट फॉर्म का दिमाग में नहीं आई उस समय पे, फिर घर वालों ने मना किया कि अब शादी हो गई है तो क्या करोगी।
0: अरे बहन जी, ये बातें पुराने जमाने की ही, अब तो हमारी बहनों को तो बहुत हर फील्ड में आगे रहने चाहिए। और हमारी बहनें देखो कि तो रोशन नाम कर रही हैं अपनों और अपने परिवार को और समाज में अपना नाम पैदा कर रही हैं। आप क्या क्या करती हूँ?
2: मैं इस गांव में आशा का काम करती हूँ।
0: आशा हो इस गांव की? अच्छा बहन जी, आशा को क्या काम होता है?
2: आशा का काम होता है कि बच्चे को टीकाकरण कराना, गर्भवती महिला की देखभाल करना, कोई बीमारी अगर फैल रही है उसकी देखरेख करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, और इतना भी अगर हो सके स्वास्थ्य सेवाओं को हम गांव तक लेके आते हैं और यहाँ से जितने भी कोशिश करते हैं कि सबका अच्छा से अच्छा इलाज मिले।
0: अच्छा साथियों, हम सब जानते हैं देखो कि हमारे जो गांव की आशा होती हैं वो हमारे गांव और स्वास्थ्य विभाग के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधारने और लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बहन जी, आप कब से आशा में लगी हुई हो?
2: 10 साल हो गए हमें।
0: 10 साल आपको आशा लगी होगी। तो उस समय जब हमारे सरकार ने आशाओं को नियुक्ति ना करी, ज्यादातर हमारी जो बहनों के जो बालक है वे घर पे ही जाते, तो बा समय से और अब के समय में आपने क्या अंतर देखा?
2: बा के समय में अब के समय में बहुत अंतर है। पहले कोई टीका ना लगवाना चाहते कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, ये होगा और दिक्कतें हो जाएंगी। अब सब टीकाकरण कराते हैं जिससे कि और बड़ी बड़ी बीमारियों से बच्चे बच जाते हैं। पहले बच्चे घर पे ही हो जाते थे तो महिला के मरने का और ज्यादा था दर, अब तो पहले से बहुत कम है जिससे कि हमारे माँ भी स्वस्थ है, हमारे बच्चे भी स्वस्थ हैं।
0: तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर हमारी जो बहनें हैं और वे जब गर्भवती होती हैं तो उन बात समय से लेकर और जब बच्चा हो जाता है तो आप क्या देखरेख करती हैं उनकी?
2: सबसे पहले जैसे ही हमें पता चलता है कि उनमें बच्चा है तो हम उन्हें फॉलिक एसिड की गोली देते हैं। 3 महीने तक खिलाई जाती है जिससे कि बच्चा जो है वो दिमागी तौर पे और जन्मजात रीति से बचा रहे। उसके अलावा हम उसका पंजीकरण करते हैं साथ साथ, और जैसी हमारी एनएम बहन जी आती हैं जल्दी से जल्दी उन्हें टीका लगवाते हैं, टीटी का, जिससे कि आने वाले बच्चे में कोई दिक्कतें ना आए।
0: तो आप कह रहे हैं पंजीकरण कराते हैं, तो पंजीकरण बहन जी जो लगभग कितने समय तक हो जाना चाहिए?
2: 3 महीने तक हो जाना चाहिए पंजीकरण, और उनकी बात जांच कराई जाती है जिससे कि और आगे वाले बच्चे में दिक्कत ना हो।
0: अच्छा, फिर आप गर्भवती महिलाओं की देखरेख करती हूं, तो उनमें आपका सावधानी रखती हूं?
2: उनमें सावधानी रखते हैं कि उनके अंदर कोई खून की कमी तो नहीं हो रही है, वो और दिक्कतें तो नहीं बता रही है, उनके पैरों में सूजन तो नहीं आ रही है या कोई खून छूटने की कोई दिक्कत तो नहीं बता रही है, सर में दर्द है बहुत ज्यादा, धुंधला दिख रहा है, बीपी बढ़ रहा है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। हम बार बार जांचे कराते हैं उनकी जिससे कि आगे बच्चे को दिक्कत ना हो और माँ भी स्वस्थ रहे, क्योंकि ये जब बीमारियां बढ़ती हैं तो उससे हमारे आने वाले बच्चे में भी दिक्कत आती है और फिर प्रसव के समय पे भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए हम उस चीज की देखरेख करते हैं, 4 जांचें कराते हैं, उसमें खून की जांच है, बीपी की जांच है, वजन की है, उसमें सारी जांचें होती हैं।
0: तो बहन जी, आप जांच करवाते हैं कहाँ ले जाती हूँ?
2: हमें उन्हें CSC ले जाते।
0: आप कैसे ले जाती हूँ?
2: एम्बुलेंस को फोन कर देते हैं, एम्बुलेंस आती है, वो आराम से ले जाती है और जांचें करा के वो हमें घर भी छोड़ आती है। एम्बुलेंस निशुल्क है, अगर कोई भी उस पे पैसा ना लगता है, आराम से जाओ अपनी जांचें वगैरह कराओ, डॉक्टर को दिखाओ और फिर आ जाओ।
0: जब हमारी बहनें बच्चों को जन्म देने वाली होती हैं तो उन्हें आप CSC ले जाती हैं?
2: हाँ, हम उन्हें CSC ले जाते हैं और वहाँ जो दीदी होती हैं वो उनका प्रसव करती हैं, बच्चे को टीके भी लग जाते हैं हाथ के हाथ और माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी वाली चीजें होती हैं तो वो उन्हें आगे रेफर कर देते हैं, और अगर यहाँ नहीं बच्चा हो पाता है तो वो वहाँ तो हो ही जाता।
0: और इसके अलावा आप क्या करती हो?
2: उसके अलावा हम गांव में गोली बाट, कीड़ों की गोलियाँ हैं, और बच्चों का टीकाकरण कराते हैं कि टीकाकरण में 9 महीने का टीका लगता है और फिर 1.5 साल पे लगता है और फिर 5 साल पे सब पे सारे टीके लगवाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद भी हम 42 दिन तक उनका वजन होता है तो वो वजन करते हैं और माँ का भी ध्यान रखते हैं और साफ सफाई के लिए ध्यान रखते हैं।
0: अच्छा बहन जी, हमने जो देखो जब कोई बालक होते हैं तो बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, तो उनके लिए आपका करती हूँ?
2: उनके लिए हम उनसे ये कहते हैं कि तुम कंगारू मदर केयर दो, जिससे कि बच्चा जो है वो बच्चे को छाती से लगा के रखना पड़ता है, उसमें बच्चे के ऊपर भी कपड़े नहीं होने चाहिए और जो दे रहा है कंगारू मदर केयर उसके ऊपर भी कपड़े नहीं होने चाहिए, वो दोनों जैसे को सटा के रखोगे जितना उतनी जल्दी जल्दी बच्चे का वजन बढ़ता है और बच्चा बीमारियों से भी बचता है। ये अगर माँ अगर दे रही है तो उससे माँ का दूध भी बढ़ेगा, बच्चे को भी दिक्कतें कम आएंगी और चीजें भी कम हो जाती है।
0: बहन जी, हम आपसे और पूछेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से हमारी बहुत सारी बहनें आपको सुन रही हैं, तो जो हमारी बहनें गर्भधारण करती हैं तो उस समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी बहनों को और उनके होने वाले संतान को कोई परेशानी ना हो।
2: जैसे ही गर्भधारण का पता चले सबसे पहले अपनी आशा बहन जी को बताएं, जिससे कि वो जो गोली देती हैं फॉलिक एसिड की, जिससे बच्चे आगे जन्मजात बीमारियों से बचते हैं। जैसे कि बच्चे का होता है कि सर में पानी भरा हुआ है, पीठ में फोड़ा है और

0: चीजें, वो बीमारियां उन गोलियों को खाने से नहीं होती है। तुरंत के तुरंत टीका लगवाएं, उसके बाद में भारी सामान को नहीं उठाना है, गर्म चीजों को प्रयोग ज्यादा नहीं करना है, आराम करना है, पोषक तत्वों का यूज करना है कि कोई ज्यादा गलत चीजों खाएं, कि आजकल जो चल रहे हैं कि मोमो है, बाहर की चीजें हैं, वो चीजों का प्रयोग कम करें, दूध पिए, अनाज खाएं, हैं हरी सब्जियां खाएं, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहे। और अगर जरा सी भी परेशानी लग रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी लग रही है, तुरंत आशा बहन जी से संपर्क करें जिससे कि वो अस्पताल ले जाएं और अस्पताल ले जाके उनका उचित उपचार उन्हें मिल सके।
1: चलिए बहन जी, आपने हमारे साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आपने सुनी आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष, और हमें उम्मीद है हमारे किसान भैया के लिए ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी, और इस जानकारी को सुनकर हमारे किसान भैया बहन लाभ जरूर उठाएंगे। भैया
1: और बहन, जहां आपने बात लाभ की करी ना,
2: हाँ भैया,
1: तो लाभ के साथ साथ अगर उस पर मनोरंजन नहीं जा,
2: हाँ
1: तो
2: भैया,
1: बात कुछ और है।
2: हाँ भैया, तो बात
1: तो
2: कुछ और है।
1: मनोरंजन के लिए आप कौन सा आज लोकगीत लेके आई हमारी?
2: हम अपने किसान साथियों के लिए सुनवा रहे हैं मनोरंजन के लिए एक लोकगीत। लोकगीत के बोल है बल्लमा मुंदरी का नंगी नारे, और सुर दौवा भैया उषा अग्रवाल ने।
1: तो उससे पहले सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। हम उम्मीद करते हैं जो लोकगीत आपको जरूर पसंद आए हो। और मीना बहन,
1: हाँ भैया,
0: अब देखो समय ही चुको हमारो कृषि संकेत कार्यक्रम को।
1: हाँ भैया,
0: तो कृषि संकेत कार्यक्रम में आप आज हमारे किसान साथियों को क्या जानकारी लेके आई हूँ?
1: भैया, हम अपने किसान साथियों के लिए कृषि संकेत में जानकारी लेके आए हैं गन्ने में समसमय की कृषि कार्य। भैया
0: जी बहन,
1: हाँ भैया, और देखो इन दिनों गन्ने की फसल खेतों में अच्छी बढ़वार पर है।
0: जी बहन बिल्कुल,
1: ऐसे समय में थोड़ी सी सावधानी और सही कृषि कार्य किसानों की उपज और आय दोनों बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल मीना बहन, क्योंकि कई हमारे जो किसान साथी होते हैं ना, वो गन्ने की फसल तो लगा लेते हैं लेकिन समय पर जो जरूरी कृषि कार्य होते हैं वे न कर पाने की वजह से जो उत्पादन होता है ना, वो प्रभावित होते हैं।
1: हाँ भैया,
0: तो अभी का समय जो है हम फसल की देखभाल सही से कराएं और जो बासा हो का पौधे भी मजबूत बनेंगे।
1: हाँ सही कहा भैया आपने, सबसे पहले खेत की निराई गुड़ाई पर ध्यान देना चाहिए।
0: जी,
1: खरपतवार गन्ने की फसल से पानी, खाद और पोषक तत्वों को छीन लेते हैं भैया।
0: जी,
1: इसीलिए समय समय पर खरपतवार निकालते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, और जहाँ खरपतवार अधिक दिखाई देना वहाँ हल्की गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरा बना देना चाहिए, और जिससे हो कहा कि जो जड़ों की है हमारी उनको हवा मिलती है और पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है।
1: हाँ भैया, और किसानों को सबसे फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए भैया।
0: जी बहन,
1: गन्ने के दोनों तरफ मिट्टी चढ़ाने से पौधे गिरते नहीं है और जड़ों का विकास भी बेहतर होता है।
0: और मीना बहन एक चीज को देखो और ध्यान रखा हमारे किसान भैया
1: का, भैया
0: कि बरसात शुरू होने वाली है।
1: हाँ भैया बिल्कुल,
0: है ना, अभी देखो कितनी बरसात भई, तो जो हमारे गन्ना खेत है वहां जल निकास की व्यवस्था बहुत जरूरी है।
1: हाँ,
0: तो बरसात में अगर हमारे खेत में जल रुक जाए तो वासे होता का जो जड़ हमारी होती हैं वे सड़ने लगती हैं, तो कई प्रकार के रोग वहाँ लग सकते हैं।
1: हाँ भैया, और जो उर्वरकों के बारे में भी किसान भाइयों को सजग रहना चाहिए भैया।
0: जी बहन,
1: यदि नाइट्रोजन की शेष मात्रा देनी हो तो भैया ना
0: जी,
1: मिट्टी में नमी होने पर उसका प्रयोग करें भैया, और उर्वरक देने के बाद हल्की सिंचाई भी लाभकारी रहती है।
0: लेकिन एक चीज है
1: भैया,
0: जो हमारे भैया उर्वरकों का प्रयोग करें वो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार ही करें, बस संतुलित पोषण से गन्ने की जो मोटाई है और वजन दोनों बढ़ जाएंगे।
1: हाँ भैया, और फसल का नियमित निरीक्षण भी करते रहना चाहिए।
0: जी,
1: कहीं तना छेदक और पायरेला या अन्य कीटों का प्रकोप दिखाई दे ना भैया, तो तुरंत कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेना बहुत जरूरी।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि रोग और कीट की शुरुआती अवस्था में नियंत्रण करने से जो है नुकसान बहुत कम होता है। अगर हम बहुत देर कर देंगे ना तो मीना मैंने होगा वह चीज को उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।
1: हाँ भैया बिल्कुल, और एक महत्वपूर्ण बात भैया और
0: का बहन,
1: खेत में जहाँ कहीं सूखे या कमजोर पौधे दिखाई देना उनकी विशेष देखभाल करें और स्वस्थ फसल ही अधिक पैदावार देती है भैया।
0: तो इस प्रकार जो मीना बहन ना हमारे किसान साथी हैं वो निराई गुड़ाई, मिट्टी को चढ़ाना, संतुलित उर्वरक को प्रबंधन करना, जल निकास और कीट रोगों की निगरानी, ये सभी कार्य अगर हम इस समय गन्ना में कर देंगे तो हमारे जो आधुनिक उत्पादन है वो हमको ठीक मिला है।
1: हाँ भैया बिल्कुल, और किसान भाइयों बहनों, यदि आप समय पर इन समसमय की कृषि कार्यों को अपनाते रहेंगे तो गन्ने की फसल स्वस्थ रहेगी और बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा भैया।
0: जी बहन बिल्कुल, और मीना बहन,
1: हाँ भैया,
0: कहते हैं समय के आगे काकू न चलिए।
1: हाँ भैया,
0: अब समय हमारे जो ज्यादा ना दे रहा है कि हम बहुत सारी चर्चा अपने किसान साथियों से करें, क्योंकि हमारा मन तो बहुत करता है अपने किसान साथियों से बातचीत करने को, लेकिन अब समय है कि आगे काउ चल ही ना है। तो जो साथियों हमारे जो कल को जो विषय रहा है ना चर्चा को, वो रहा है पशुओं में बाह्य परजीवों से बचाव, और लोक मंजरी कार्यक्रम कल आपको सुना जाए जिसमें आप अपने फरमाइशी लोकगीत पर कोई भी जो लोकगीत आपको पसंद है वो हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे मोबाइल पे एसएमएस कर सकते हैं, और कृषि संकेत कार्यक्रम सुनाया जाए, मौसम की जानकारी दी जाएगी, और जिस कार्यक्रम इस कार्यक्रम को जो लेकर प्रस्तुत होंगे वो होंगे हमारे भैया अब्दुल हफीज और हरदेव आर्या। तो मीना बहन, चलते चलते हम अपने किसान साथियों को कल के मौसम की जानकारी बता दें।
1: हाँ भैया बिल्कुल,
0: जो हमारे कल के मौसम को इस प्रकार रहने की उम्मीद है, अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की उम्मीद है। वायुमंडल में आर्द्रता 30% और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बहने की उम्मीद है। तो साथियों आज की जानकारी यहीं तक, कल फिर एक नई जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने भैया पंकज
1: और अपनी बहन मीना को देव अनुमति,
0: राम राम, राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। विविध कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं वार्ता। आज इस कार्यक्रम में वार्ता का विषय है वैश्विक होता भारत का योग। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे डॉक्टर राधेश्याम शर्मा।
1: सृष्टि का समारंभ जिस समय होता है उसी समय से योग का समारंभ हो जाता है। हिरण्य गर्भ समवर्त ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। सूर्यदेव की जो किरणें विस्फुटित होती हैं उसी क्षण से योग विज्ञान शुरू हो जाता है। जिस समय सूर्य प्रकट हुआ तो उसके भीतर जो विद्यमान थे हिरण्य गर्भ, उन्होंने सूर्य की जो चेतना है उसको यौगिक स्वरूप में इस सृष्टि पर बिखेरा। असंख्य लोग भारत में पैदा हुए, यौगिक चेतनाएं फैलाई, लेकिन हिरण्य गर्भ सबसे पहले योग के संसार में फैलाने के आधार हैं। उसके बाद साधना करते करते महर्षि पतंजलि नदी के किनारे बैठे थे, सूर्य को तर्पण कर रहे थे, तो सूर्य की किरणों के माध्यम से उनमें जो चेतना उतरी, क्योंकि जो सहस्रार है वहाँ एक बिंदु है, वहाँ से अमृत टपकता है, तो क्योंकि गंगा के किनारे बैठे हुए दोनों हाथों से अंजलि बना रखी थी तो वो ज्ञान का विकसित स्वरूप आने लगा। उनकी 10 उंगलियां थी तो 10 इंद्रियों का ज्ञान हो गया उन्हें। फिर मूलाधार से सहस्रार तक जो पूरे चक्र विज्ञान थे वो उनकी चेतना में जागृत हो गए और उद्गामी हो गए। आज तो गुरु हिरण्य गर्भ हैं, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप दिया वो पतंजलि ने दिया ज्ञान को विज्ञान के रूप में। योग दर्शन विश्व का सबसे पहला यौगिक ग्रंथ है जिसमें अष्टांग योग की चर्चा हुई है। यह अष्टांग योग क्या है? जीवन में इंद्रियों को नियंत्रित करने का नाम संयम है। अष्टांग योग में यम मानी मृत्यु का देवता है, तो यम को संयमित करें, हमारे जीवन में जो ऊर्जा है उसको हम अपना संयमित कर लें, वो यम है। 5 यम हैं, 5 नियम हैं। यम के बारे में लोग कहते हैं अरे भयंकर है। यम का सीधा अर्थ है अपने इंद्रियों में नियंत्रित करके मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 8 हो गए। तो अष्टांग चाहिए ना, इस प्रकार से ये 8 अंग बने, यम, नियम, तो आसन, अपने प्राण की ऊर्ध्वगति, निम्न गति और मध्य गति चाहिए, श्वास लेना, श्वास रोकना, श्वास छोड़ना, इसकी कला सूर्य के सामने बैठते ही शुरू हो जाती है। और जब 2 नाड़ियां हो गई, एड़ा पिंगला, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, हमारी जो ऊर्जा फेंकने वाली गर्म नाड़ी है उसको सूर्य नाड़ी कह दिया, उसको चंद्र नाड़ी कह दिया शीतल नाड़ी को, और जो मध्य में एक नाड़ी है मूलाधार में उसका नाम सुषुम्ना है। हमारे इस मार्ग को आसन के बाद बैठने की कला, कैसे बैठें, पद्मासन है, उष्ट्रासन है, सर्पासन है, जितने जीव जंतु थे उनके माध्यम से जो हमने सीखा देखा वो आसन बन गए। 84 लाख आसन हैं, कौन कर पाएगा, लेकिन जीवन के लिए कुछ गिने चुने आसन हैं जिन्हें आदमी को करना चाहिए। जब हम आसन करेंगे तो सुखासन है, आराम से बैठ जाइए, लेकिन आराम से बैठने में क्रियाएं सही नहीं होती। हम अपने पद्मासन में बैठें, पद्म की आकार के दोनों पैरों को जब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पद्मासन बन जाएगा। जब एक हिस्से को गुदाभाग से लगा लेंगे एड़ी को और पैर को ऊपर उठाकर रखेंगे तो वहाँ अर्ध पद्मासन बन जाएगा। अर्ध पद्मासन है, पद्मासन है, उष्ट्रासन है। ऊँट की तरह बैठने की कला का नाम उष्ट्रासन है। जैसे ऊँट बैठता है वैसे हम बैठे, सर्प में लेट जाते हैं सीधे, और हम अपनी श्वासों को ऊर्ध्वगामी करके जैसे सर्प नीचे से फन को ऊपर उठाता है वैसे हम उठाते जाएं गर्दन को और पीछे मुड़ते जाएं। इसे भुजंगासन भी कहते हैं, सर्वांगासन है, ताड़ासन है। खड़े हैं पंजों पर खड़े हो गए तो लंबाई बढ़ेगी, पैरों को चीरेंगे तो लंबाई बढ़ेगी। एक एक आसन एक एक काम के लिए उपयोगी है। अगर हम संख्या गिनाने शुरू होंगे तो असंख्य आसन है। सर्वांगासन सर्व उत्तम आसन है, उसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। चक्रासन करना चाहिए, फिर कोई रोग होगा ही नहीं। 8 आसन अगर जीवन में कर लिए तो व्यक्ति रोगी रहेगा ही नहीं। तो आसन के साथ साथ मुद्राएं भी करनी पड़ेंगी। हमारे हाथ आगे चलें पीछे चलें उठें तो विभिन्न मुद्राएं, उनमें एक मुद्रा खेचरी मुद्रा है जो योगियों को होती है। हम अगर अपनी जीव को धीरे जिभ्या को अपनी को तालू से लगाते रहेंगे तो एक दिन खेचरी अपने आप हो जाएगी। प्रयास करें लगाने का। अब हम तो नीचे ही बहते हैं, हम ऊर्ध्वगामी होते ही नहीं। जब हम अपने आज्ञा चक्र पर बैठेंगे तो ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे। हर व्यक्ति की बैठने की मुद्रा है। अब व्यक्ति बैठता है थक जाता है तो ऊपर को हाथ बांध लेता है, सर के पीछे ले जाता है, ये पटबद्धनी मुद्रा है। हमने जो दरवाजे हैं बंद कर दिए अपने प्रज्ञा के, हमने बुद्धि के, तो मन स्थिर हो जाएगा। तालू में जिभ्या चली जाएगी तो रस टपकने पर लगेगा, वहाँ ब्रह्मरंध्र है, उस रंध्र से टपकने वाला रस योग की अनुभूति है, तभी तो ध्यान होगा। ध्यान के लिए यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, जो हमारा आहार है जो विपरीत ले रहे हैं असंख्य चीजें, वो विवधान डालेंगी। धारणा, तो हमें अपने मन को धारणा मानी, कोई और चीज नहीं है। अपने मन की चेतना को एकाग्र करके एक चिंतन बनाना है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा। संकल्प शक्ति, विकल्प नहीं। संकल्प विकल्प और कल्प, तीन धारणाएं। कल्प हमारा वर्तमान है, संकल्प जो हम मन को स्थिर करने के लिए योजना बना रहे हैं वो है, और विकल्प अरे ये सफल नहीं होगा तो हम ऐसा चल लेंगे। हमने राजतंत्र वाले लोगों ने तय किया कि हम इतना पाएंगे, नहीं मिला तो जुगाड़ कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, योग कर लेंगे, मिल जाएंगे लोगों से। वैसे इंद्रियों में स्वार्थ टकराने पर यौगिक चेतना समाप्त हो जाती है। अगर हम दाएं करवट लेटेंगे तो बाएं स्वर चलेगा, जब बाएं करवट लेटेंगे तो दाहिना स्वर चलेगा, और जब हम सीधे लेटेंगे सब आसन में तो सम स्वर चलेगा। ये तो विज्ञान है स्वरों का। ब्रेचक पूरक कुंभक खींचो लेओ लगाए, ऊर्ध्वगामी चेतना बने, मन निर्मल हो जाए। तो अगर हम रेचक और पूरक करें, बायां स्वर चलाएं दायना स्वर चलाएं और दोनों के लिए फिर सम स्वर चलाएं। भस्त्रिका प्राणायाम गर्मियों में कम करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। मल को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, विसर्जित करने के लिए भस्त्रिका से अच्छा कोई दूसरा साधन नहीं है। क्रियाएं हैं, नौडी क्रिया है, नाभि को चलाते हैं इधर से उधर इधर से उधर, अल्टा पलटा मार के गुरु को ले जाए। मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, नाभि में मणिपुर है, वहाँ अग्नि तत्व है, हृदय में वायु है, कंठ में आकाश है। अगर आकाश शब्द गुणकम आकाशम, अगर आकाश नहीं है तो आवाज नहीं निकलेगी, आकाश है तो आवाज निकलेगी। ध्वनि तरंगे तभी आएंगी जब दो हथेलियां हैं अलग अलग हैं, जब उनमें हम इसमें आकाश रखेंगे तो आवाज आएगी और नहीं रखेंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो अगर हम क्रिया करेंगे, शारीरिक श्रम करेंगे, और शारीरिक श्रम करने के साथ बुद्धि का श्रम करेंगे प्राणायाम, तो ईश्वर को समर्पण आएगा। और ईश्वर को अगर समर्पित होकर के हम सारे करेंगे, ईश्वर मानी अपनी आत्मा, योगी ईश्वर को अपने अंतर मानता है और बाहर मानता है।
0: अभी आप सुन रहे थे विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत ये वार्ता, जिसका विषय था वैश्विक होता भारत का योग। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे डॉक्टर राधेश्याम शर्मा।

0: विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
2: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से शेष आज और प्रातः कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में यानी 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे सोनाली और रूप कुमार राठौर के सुर में गजलें। फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल आप तक पहुंचेगा आज रात्रि 8:00। 9:30 का समय रहेगा नात कव्वाली के कार्यक्रम सबरस का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे शाहिद्दीन कव्वाल व साथियों के सुर में नात और कव्वाली। नाटक आखिरी अमावस ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज रात्रि 10:00। लेखक होंगे गंगा सिंह रावत। सुनना ना भूलिएगा नाटक आखिरी अमावस। 10:30 पर हम श्रोता साथी सुनेंगे गीतांजलि। कल सवेरे 6:05 पर आप तक लेकर आएंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। 6:25 पे आप सुन सकेंगे गांधी चर्चा। 6:35 का समय रहेगा स्वास्थ्य संदेश का। इस कार्यक्रम में कल आप सुन सकेंगे युवाओं में बढ़ता हृदय रोग। इस विषय पर स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी आप तक पहुंचेगी डॉक्टर आलोक सिंघल के सुर में। 6:45 का समय होगा श्री रामचरितमानस गान के प्रसंग का। अमृत कलश, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचाएंगी डॉक्टर बेबी तबस्सुम। सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम अमृत कलश कल सवेरे 7:00। फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे प्रसारित होगा कल सवेरे 7:31 पर।

102.9 मॉर्निंग हिट्स। इस कार्यक्रम को आप तक लेकर आएंगे कल सवेरे 8:45 पर प्रेरक प्रसंग हजरत मोहम्मद साहब की बारे में हम आपको सुनवाएंगे 9:25 पर। उर्दू कार्यक्रम प्रसारित होगा कल सवेरे 9:30 पर। आपके अनुरोध पर फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा कल सुबह 10:10 पर। 10:30 का समय रहेगा सुनहरा दौर का। धरोहर के अंतर्गत कार्यक्रम धारावाहिक में कल आप सुनेंगे और फन बेमिसाल है, एपिसोड संख्या होगी 6। 11:30 पर आप सुन सकेंगे मनभावन में एक ही शीर्षक दीवाना।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से शेष आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: मैं प्लास्टिक, चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
2: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
4: Say no to plastic।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदू खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि आज उन्नाव की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो गई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
1: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वह सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही हैं। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाली फर्टिलाइजर पर सरकार सब्सिडी दे रही है।
1: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कॉपरेटिव सोसाइटी में मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए। यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर शामिल होंगे और आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल होंगे। आगरा में कल भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित 21 ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में एमएसएमई के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने

0: भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। इसी क्रम में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास और विरासत के समन्वय का एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। इसी क्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के राज्य मंत्री डॉ शैलेंद्र तोमर ने मेरठ में वृक्षारोपण किया और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश के बाद समाज की सहभागिता जुड़ने से परिदृश्य बदला है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब स्वच्छता का संदेश दिया गया था तो उसमें पूरे समाज की भागीदारी जोड़ने का आह्वान किया गया और उनके आह्वान के पश्चात आज हम देखते हैं कि उसके पूर्व रेलवे स्टेशनों का जो परिदृश्य हुआ करता था प्लेटफार्म गंदगी से भरे पड़े रहते थे, लेकिन जब माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा आह्वान किया गया समाज की सहभागिता इसमें जुड़ी, आज रेलवे स्टेशनों का दृश्य बदला हुआ दिखाई देता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यनाथ, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत आज लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए देश के बच्चों का पोषित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को और मजबूती के साथ चलाने की आवश्यकता बताई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स MSME फोरम और SME वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:31 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सोनाली और रूप कुमार राठौर। लीजिए सुनिएगा इनके स्वर में सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें।

इस समय आप सुन रहे हैं सोनाली और रूप कुमार राठौर के स्वर में गजलें, कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की ये अंतिम गजल।

अभी आप सुन रहे थे मिताली सिंह के स्वर में गजल। इसी के साथ आज का सुगम संगीत के अंतर्गत ये कार्यक्रम गजलों का अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में कलाकार थे सोनाली, मिताली सिंह और रूप कुमार राठौर। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 8 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत का ताचल।

गीत गाता चल कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को दीपिका का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कार्यक्रम के पहले गीत के लिए फरमाइश हमारे पास किन किन श्रोताओं की आई है। फरमाइश करता है हर्षिता, रामेश्वर, मीनाक्षी, प्रभुलाल बागरी, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदीबाई और इनके साथी। ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से। कार्यक्रम के पहले गीत को सुनना चाहा है थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां, शाहिदा परवीन, इमरान खां, रेहान खां, इकराम खां, समीना बी आसिफा और शबीना ने। कार्यक्रम का यही गीत हम सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया है बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना ओमवती भारती, खनक, शगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह ने। चंद्रनगर दिल्ली से इस गीत को सुनने वाले हैं मनमोहन और इनके साथी। डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी, राज अंसारी और फातिमा नाज अंसारी। जेल रोड नजीबाबाद से खत आया है राधिका और प्रभा का। पुराना तालाब डुमराव से सुनने वाले हैं वलीउल्लाह अंसारी, आसमा और शबनम। चमन पार्क दिल्ली से इस गीत को पसंद किया है सोनम और अदीबा ने। जेल रोड बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी और इनके साथी। कार्यक्रम का यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। ऊपरकोट बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, फारूक अली खान और इनके मम्मी पापा। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से इस गीत को सुना चाहा है राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और आर्यन ने। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से इस गीत को सुना चाहा है गंगाधर यमिकर, प्रमोद और प्रदीप ने। कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। गौरैया जालंधर से इस गीत को सुनना चाहा है अशोक ने। छत्तीसगढ़ से हमारे साथी हैं प्रभा, जेल रोड रायगढ़ से इस गीत को सुनना चाहा है उमराज और जगदीश ने। छत्तीसगढ़ से सुनने वाले हैं जानवी, यामिनी और रोहित। गणेशवाड़ी कोल्हापुर से इस गीत को पसंद किया है शंभाजी सुतार, चेतन और सारिका ने। महादेव पारा से हैं मीरा, सिमरन, योगेश कुमार और इनके साथी। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से हैं दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री सैनी। डोंडी लोहारा बालौद से इस गीत को पसंद किया है कमलेश और इनके साथियों ने। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनने वाले हैं रमेश, प्रभा देवी, राधिका और मिश्री देवी। इंदिरा विहार दिल्ली से इस गीत को सुनना चाहा है बीबी अंसारी, डब्लू अंसारी, दानिश
और लिसनर्स क्लब से हैं सुधा शर्मा, काजल, मीरा और अनामिका। हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक के सुर में लीजिएगा। उदित नारायण और अलका याग्निक के सुर में फिल्म दिलवाले से ये गीत।

के इसी गीत को पसंद किया है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय ने, दुबिया निवादा गाजीपुर से सुनने वाले हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांचल राय। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी नाना जी से इस गीत को सुना चाहा है। तेजस, हर्षिता और लामसेने कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं। बबन चोगले मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से इस गीत को पसंद किया है। मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, मिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। लदावली जिला मुरादाबाद से इस गीत को सुना चाहा है आदित्य कसाना और माया देवी और इनके साथ हैं ऋतिक। वार्ड नंबर 1 पुफाली जिला यवतमाल से हैं जयराम, दिशांत कुमार और अर्पिता जी। ग्राम ढकिया केसरपुर बासखेड़ा जिला पीलीभीत से इस गीत को पसंद किया है एके राजपूत, अनिल कुमार, कैलाश चंद्र, भगवान दास, मदन कुमार, रवि कुमार वर्मा, नवनीत वर्मा, खुशी, संतोषी, प्रिया और इनके साथ हैं गुड़िया चंचल कुमारी। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से इस गीत को सुना चाहा है पीहू, कृष्णा, आर्यन, पिंकी और मुन्ना भाई ने। जतुका किशनपुर से हमारे साथी हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज। कबीर रेडियो श्रोता संघ टोडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुना चाहा है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया के साथ हैं राधिका, प्रभा देवी और इनके बहुत सारे साथी। कार्यक्रम का यही गीत सुनने के लिए फरमाइश कुछ इस प्रकार है। दत्रेंगी भट्टा पारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हमारे साथी हैं जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। इन्हीं के साथ हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। कार्यक्रम का यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, इंजल भाटिया, सोनू भाटिया और इनके बहुत सारे साथी। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से इस गीत को सुना चाहा है मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलूफर फातिमा ने। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से इस गीत को सुना चाहा है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी ने। वडिंगखेड़ा पंजाब से इस गीत को सुनने वाले हैं मिंटू, पिंकी और आरती अरोड़ा। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर अलीशा और जुबिन गर्ग के स्वर में ये गीत फिल्म क्रिश 3 से।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारे किन श्रोताओं की फरमाइश आई है। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हमारे सुनने वाले साथी हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और इनके साथ हैं मुन्ना अंसारी।

जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया है योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया ने। बाजार रोड मुगीसापुर से सुनने वाले हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता पलक और यश मंसूरी। छत्रपति संभाजी नगर से हमारे श्रोता साथी हैं राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। कार्यक्रम के इसी गीत के लिए फरमाइश आई है बेड़ी से राजेश कंचन, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज की। यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। बठिंडा पंजाब से इस गीत को सुना चाहा है पमेर सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, दमन और अभिजोत। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। गांव चौहलदा बागपत से इस गीत को पसंद किया है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने। जलालाबाद से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और नमिता आहूजा। सीतामढ़ी बिहार से इस गीत को सुना चाहा है मुसरत जहाँ, तलत जहाँ, फरह जहाँ, फिरत जहाँ, नुजहत, शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से इस गीत को पसंद किया है अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूजा रानी और इनके साथियों ने। कलीर बिहार से हैं मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन। कार्यक्रम के इसी गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्गा छत्तीसगढ़ से हमारे साथी हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद और उमेश। मुताला महाराष्ट्र से इस गीत को सुना चाहा है विजय रतन माल, आरती गौरी और ओम कुमार ने। अनारकली बाजार जगराओं से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह, विनोद पुरी, जयपाल, ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से। बीकानेर से इस गीत को सुना चाहा है रानी झाब और बिट्टू झाव ने। गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत। फिल्म बंदिश से कुमार सानू और अलका याग्निक के सुर में।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे कौन से श्रोता साथी हैं जो इस गीत को सुनना चाहते हैं। सरोज चौक अमरावती से इस गीत को पसंद किया है कमरुला ठेकेदार नसीम बेगम, शुएब खान, साइमा खान, आफिया खान और इनके साथ हैं शाहिद भाई। मोहिला बारादरी महमूद खान रामपुर से इस गीत को सुनना चाहा है भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमानाज मंसूरी ने। फाजिलका पंजाब से इस गीत को सुना चाहा है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी विशाल शालिनी, कार्यक्रम के इसी गीत को पसंद किया है वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गुड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। ये सभी हमारे श्रोता साथी हैं वैष्णव कॉलोनी सनावत से। जमा मस्जिद रोड गुगावा से हैं हाजी इसहाक, मोहम्मद उमर और हाजी अयूब शेरी।

जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से एक गीत को सुना चाहा है। बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, बिटिया अलीशा और नापिया सिद्दीकी। इन्हीं के साथ हैं शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी, सुदेश चौहान। मुताला महाराष्ट्र से सुनने वाले हैं विजय और इनके बहुत सारे साथी। कार्यक्रम का यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून की। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीबा। आदर्श नगर मलौट पंजाब से इस गीत को सुना चाहा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, साइना और निवान शर्मा ने। ग्राम पंचायत कलेगांव जाफराबाद से हमारे साथी हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, कुमार संचित, कुमार प्रथमेश, सर्वद, कुमारी प्रणाली, सावनी और कल्पना। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत कुमार सानू और ये सभी जो हमारे श्रोता साथी से इनकी फरमाइश आई थी अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम के स्वर के लिए फिल्म मासूम से।

और अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर। इस गीत को पसंद किया है हिंगोली से राम चंद्रा ने। कोली नादेड़ महाराष्ट्र से सुनने वाले हैं हमारे श्रोता साथी नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साईं गायकवाड़। राजद्वारा कोठी अफसर आला से हमारे साथी हैं रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफ शाह, जीनत अमान और शमा परवीन। कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत को हम सुनवा रहे हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। गांव जखोद राजस्थान से हैं शंभू दयाल, विमला देवी, सुंदरलाल, दीपक कुमार, योगेश कुमारी, पूजा और अमरजीत की फरमाइश पर। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से हैं परमिंदर सिंह, लखनपाल और हरप्रीत कौर। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। परी महल कासगंज से इस गीत को पसंद किया है आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी, जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान ने। लीजिए सुनिएगा कार्यक्रम का अंतिम गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में फिल्म है हम हैं राही प्यार के।

0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होना चाहते हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर we concluded the historic India-EU free trade agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सिंकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा ब्रिजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर न्यूश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपरी, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूर

0: श्री नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टोन के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: kg round of 16 bout. Four Indian boxers will be in quarterfinals tomorrow. In the women's 51 kg category, Meenakshi will face Kazakhstan Alua Balkibekova, while Sani will take on Poland's Kinga Krovaka in the women's 65 kg division. Prachi is set to meet Chinese Taipei's Chengyu Yang in the women's 57 kg quarterfinals. In the men's competition, Nikhil will face Azerbaijan's Amin Mamadzada in the 55 kg category. In hockey, India defeated Uruguay 3-2 in their third Pool A match of FIH Women's Nations Cup in New Zealand today. And Navi, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. That's all in the news at 9. Good night.
1: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवाटेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर-ए-तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखतशुदा मफाहमतनामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। यूक्रेन ने एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा मॉस्को तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। और मीनाक्षी हुडा चीन में जारी मुक्केबाजी के आलमी कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। कल चार भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए भारत को इख्तिराआत और टेक्नोलॉजी के एक आलमी मरकज के तौर पर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने कहा कि भारत ये मानता है कि रखना अंदाजी के इस अहद में टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचाई जाए। उन्होंने आलमी इख्तिराआतकारों से भी जोर देकर कहा कि वो भारत के साथ मिलकर काम करें और सब तक इसे पहुंचाएं।
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत में एक तेज रफ्तार कायापलट हुई है जो टेक्नोलॉजी की नहीं निमिन्नत है। जनाब मोदी ने फ्रांस के सरकर्दा कारोबारी लीडरों के साथ भी मीटिंग की ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी और तकनीकी तआवुन को और भी मजबूत किया जा सके। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: पेरिस में वीवाटेक 2026 समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी हर हाल में सब तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने मालियाती शमूलियत, तालीम, हिफ्जान सेहत और ज़राअत जैसे शोबों में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट को उजागर किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब दुनिया के बरवक्त होने वाले डिजिटल लेनदेन का तकरीबन आधा हिस्सा यूपीआई से तय पाता है और अब ये फ्रांस में भी दस्तयाब है। इससे कबल दिन में आज जनाब

0: मोदी ने फ्रांस के बड़े सीईओ से मुलाकात की। सेंट गोबेन मिस्र ले आए और सीएमए सीजीएम लीडरों ने भारत की तरक्की के इम्कानात में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और सब्ज जहाजरानी के शोबों में ज्यादा सरमायाकारी और शराकतदारी के मंसूबों का ऐलान किया। वजीर आजम इस वक्त एक अजीमशान सकाफती प्रोग्राम बोंजो में शिरकत कर रहे हैं, जिसे पेरिस में सॉल पेलेल सेंटर में भारतीय बराटरी ने मुनाकिद किया है। फ्रांस के शहर पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
1: वजारत खारजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अहम नतीजे को उजागर किया। पेरिस में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि दौरे के दौरान तीन अहम सुतूनों तिजारत, टेक्नोलॉजी और इलाकाई नीज बैन अलाकवामी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने नीज में मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स स्कीम का इफ्तिताह किया, जो भारत में टेक्नोलॉजी की महारत वाले स्टार्टअप्स के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। इस प्रोग्राम में भारत के 120 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने शिरकत की। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को नीट यूजी के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आज आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने इम्तिहान के अमल में सालमियत, शफाफियत और सलाहियत के आला तरीन मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने तमाम मुतालिका अहलकारों को हिदायत दी कि वो निगरानी कायम रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को आजादाना और मुनसिफाना तौर पर मुनाकिद किए जाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम हों। जनाब प्रधान ने कहा कि वजारत की जानिब से नामजद अफराद तमाम रियासतों में तैनात होंगे ताकि वो इम्तिहान से मुतालिक सरगर्मियों से तालमेल कायम रखें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की सदारत में कायम मरकजी कमांड सेंटर को रिपोर्ट करें। मीटिंग के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से भी ये कहा गया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उम्मीदवारों को सभी जरूरी सहूलियात मुहैया कराई जाएं, जिसमें इम्तिहान में बैठने के मुनासिब इंतजाम और पीने का पानी शामिल है, ताकि वो हर किस्म के दबाव से पाक माहौल में इम्तिहान दे सकें। नीट यूजी इम्तिहान 2026 में अब जबकि सिर्फ तीन रोज बाकी रह गए हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को चाहिए कि पुरसुकून रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों ने पूरे साल सख्त मेहनत की है, लिहाजा अब उन्हें मुनासिब सुकून और इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। एनटीए ने एक महफूज, मुनसिफाना और शफाफ माहौल में इम्तिहान मुनाकिद कराए जाने की यकीन दहानी भी कराई है। वजारत तालीम ने आज बताया कि यूनिवर्सिटी की क्यूएस आलमी दर्जाबंदी 2027 में 52 भारतीय तालीमी इदारे शामिल हैं। भारत की जानिब से सबसे ऊपर के दर्जे में आईआईटी दिल्ली है, जो आलमी सतह पर 118वें नंबर पर है, जबकि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास भी दुनिया की बेहतरीन 200 यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आलमी सतह पर भारत के तालीम से मुतालिक नक्शे कदम मुसलसल वसत इख्तियार कर रहे हैं। अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में 2027 की हज जायजा मीटिंग की सदारत की। जायजा मीटिंग के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब रिजिजू ने 2026 के हज को भारत की तारीख में सबसे ज्यादा कामयाब हज करार दिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि 2026 के हज के लिए सऊदी अरब के हज और उमरे की वजारत ने भारत को 2 लब्बैतुल अवार्ड अता किए। उन्होंने बताया कि सरकार 2027 के हज के लिए जल्द ही नई हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई जायजा मीटिंगों की सदारत की और कोऑपरेटिव बैंकिंग, नामियाती मसनूआत और कोऑपरेटिव बरामदात को मुस्तहकम करने के कौमी लाए अमल का जायजा लिया। कोऑपरेटिव बैंकिंग की बड़ी स्कीमों का जायजा लेने के दौरान जनाब शाह ने टेक्नोलॉजी को इख्तियार करके हुक्मरानी को बेहतर बनाकर और साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल अदायगी, खिदमात के मुश्तरका प्लेटफॉर्म और खिदमात की फरोखशुदा डिलीवरी के जरिए कोऑपरेटिव बैंकिंग को मुस्तहकम करने की गरज से किए गए मुख्तलिफ इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। कॉरपोरेट उमूर की वजारत ने एक बयान में बताया कि आने वाले वर्षों में मुजव्विजा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के तआवुन में

शाहिदीन कव्वाल और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे नात कव्वाली का कार्यक्रम सबरस। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं नाटक आखिरी अमावस। इस नाटक के लेखक हैं गंगा सिंह रावत। लीजिए सुनिएगा ये नाटक आखिरी अमावस।

0: अरे सोनिया, अरे भाई जल्दी से खाना लगाओ, मुझे 20 मिनट में ऑफिस पहुंचना है। और तुम हो कि
1: सुनिए, आप खाने की टेबल पर बैठिए, मैं बस 1 मिनट में खाना लेकर आती हूँ।
0: तुम्हारा 1 मिनट आज तक आधे घंटे से पहले हुआ है, जो आज होगा।
1: ओफो सुनिए, बहस से क्या फायदा, कहा ना आती हूँ।
2: आज ये दूध वाला भी अपनी अदा दिखा ही गया, अब भला दूध जल्दी से उबले तो कैसे, पानी जो अपना असर दिखा रहा है। और एक ये जना खुद देर से सुबह उठते हैं और फिर हमेशा की तरह ऑफिस समय पर पहुंचने की जल्दबाजी।
3: एक तो नींद भी सवेरे 7 बजे से पहले छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, ऊपर से ये ठीक 10 बजे का ऑफिस। ऑफिस ना हुआ गोया कोई स्कूल हो गया। कोई इंसान किन किन मुसीबतों का मारा है कोई नहीं समझता। हमारे बुजुर्ग ठीक ही कहा करते थे कि उनके और आज के जमाने में जमीन आसमान का अंतर आ गया है।
2: अजी आप कहाँ हैं? थोड़ी देर पहले मेरे 1 मिनट पर बड़ा ऐतराज कर रहे थे। अरे अब ये क्या, किन यादों में गुम है मेरे सरकार?
3: कुछ नहीं, कुछ भी कोई खास नहीं, बस यूं ही।
2: यूं ही क्या, आपको भी ना जाने क्या होता जा रहा है, हमेशा खोए खोए से रहने लगे हैं। अरे भाई ये तुम्हारा ऑफिस नहीं, हमारा घर है।
3: ओहो, अच्छा बाबा अच्छा, तुम जीती मैं हारा बस।
2: डाइनिंग टेबल पर तशरीफ लाइए, खाना ठंडा हुआ जा रहा है।
3: अच्छा सोनिया मैं चलता हूँ। ठीक, अरे अरे वर्मा जी, अरे भाई, ओहो वर्मा जी जरा सुनिए। जी जी वर्मा साहब, आप भी क्यों लिफ्ट देने लगे, कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, अब तो नेकी करने के भी दिन लद गए। अरे ओ टैक्सी टैक्सी। क्या बात है सोनिया, आज हमेशा की तरह गलबैया डालकर तुमने मेरा स्वागत नहीं किया, खोई खोई सी लग रही हो। अब पड़ोस में किसी से कुछ कहा सुनी हो गई?
2: नहीं वो बात नहीं।
3: समझ गया, आज सुबह मैंने नाहक ही तुम्हें परेशान किया, जरूर इसी बात से तुम मुझसे खफा हो, क्यों है ना यही बात?
2: सुनील ऐसी कोई बात नहीं, तुम खामोखा ही परेशान हो रहे हो, तुम बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ।
3: अच्छा ये तो बताओ आज कोई नई डिश बनाई है क्या?
2: लीजिए चाय।
3: अरे भाई ये क्या है,
2: तुम खुद ही क्यों नहीं चक्कर देख लेते?
3: वाओ गाजर का हलवा, आज बहुत दिनों बाद तुमने मेरी फेवरेट डिश बनाई है, इट्स डिलीशियस। भाई क्या बात है, वाह गजब की मिठास है इसमें।
2: थोड़ी शक्कर ज्यादा पड़ गई।
3: शक्कर नहीं डार्लिंग, तुम्हारे प्यार की मिठास है इसमें, ये मिठास जो मिल गई है उसी की मिठास है। लो लो तुम भी लो, ट्राई करो थोड़ा है।
2: नहीं नहीं ये आप ही के लिए है।
3: भाई तुम्हारी मर्जी, हम तो एक ही बात पर विश्वास रखते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्यों है ना यही।

0: सोनिया, तुमसे तो शायद भगवान भी ना जीते। सारा दिन हो गया, अब तो उदासी छोड़ दो। अरे क्या पढ़ रही हो भाई? अरे हाँ, वो पेपर वाला इस महीने की मैगजीन दे गया कि नहीं?
1: कह रहा था कल दे जाएगा।
0: अरे वो सुनती हो, आपकी बार खास विशेषांक आने वाला है, तंत्र मंत्र विशेषांक।
1: आप भी कैसी कैसी किताबें पढ़ते हैं?
0: कभी पढ़कर तो देखिए जनाब, किसी और टॉपिक को पढ़ने की इच्छा ही नहीं रहेगी आपकी। हाँ
1: रहने दीजिए।
0: अरे हाँ याद आया, आज की घटना सुनो। ऑफिस में मैं जैसे ही पहुंचा, दोनों ट्रेडमार्क मेरे पास आए।
1: ट्रेडमार्क?
0: हाँ, अरे वही नरेश और प्रकाश। और जानती हो, नरेश मेरे पास आया और आवाज बना करके मुझसे बोला, सुनील तुम्हें बॉस ने बुलाया है। अब बस, बॉस ने तलब किया है, ये सुनते ही मेरी सांसें थम गईं। हिम्मत जुटाकर मैं बॉस के केबिन में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं, बॉस केबिन में है ही नहीं। तब समझ में आया, नरेश और प्रकाश मुझे बेवकूफ बना गए। सारा स्टाफ मुझ पर हंस रहा था। अब आगे सुनो, करीब 2 बजे बॉस आए। बॉस ने मुझे नरेश और प्रकाश को बुलाने के लिए भेजा। पहले मैंने सोचा कि भाई ये काम तो चपरासी का, भाई मैं क्यों करूं। मगर मुझे अपने अपमान का बदला लेने का अवसर जो मिल रहा था, इसलिए मैंने नरेश और प्रकाश को बॉस का मैसेज दे दिया फौरन। और ये दोनों सुबह की बात को समझ करके खूब कह कहे लगाकर हंसने लगे और मेरी मजाक उड़ाने लगे। जब काफी देर तक वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए तो बॉस खुद वहां आदम के। और बॉस ने कुछ यूं करके कहा, क्या तुम दोनों ने बॉस की आज्ञा का पालन करना नहीं सीखा है? बस ऐसा कहकर बॉस झुंझलाते हुए चले गए। तब सारा स्टाफ उन दोनों पर खूब हंसा, मुझे अपना बदला लेने का मौका मिल गया। अरे भाई सानिया कमाल, उन दोनों की हालत पर जो उस वक्त थी, उसे सोच सोच कर मुझे तो अभी तक हंसी आ रही है। और एक तुम हो, है? एक किसी बेजान मूर्ति की तरह खामोश बैठी हो। कमाल है भाई, कुछ तो यार थोड़ा सा तो रिएक्ट करो भाई।
1: मुझे तुम्हारे दोस्तों की फुहड़ हरकतों पर हंसी नहीं आती। मेरी हंसी तो
0: तुम रोने लगी सोनिया। सोनिया क्या हुआ?
1: जब मेरी जिंदगी में ही हंसी खुशी नहीं,

0: क्या हक है कि मैं दूसरों की बातों पर हंसूं? मेरी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन है,
1: नहीं सोनिया,
0: सुनापन है।
1: किसी को रुलाना आसान है, हंसाना नहीं। आज हमारी जिंदगी में दुख है, पर इसका मतलब घुटघट कर जीना तो नहीं। मैं हर लम्हा हंसते गुनगुनाते बिताना चाहता हूं। सोनिया, मैंने अपने गुजरे कल में जिंदगी के उस दौर का सामना किया है जिसमें अमावस की काली रात मेरी जिंदगी के उजालों को हमेशा ही निगलती रही। इसीलिए जिंदगी के हर लम्हे को हंसते गुनगुनाते गुजारना ही जिंदगी का फलसफा है।
0: अब आप क्या सोचने लगे सुनील?
1: उन दिनों मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक था। मैं अपने बूढ़े मां बाप का एकमात्र सहारा था सोनिया। दोनों इसी आशा में जी रहे थे कि मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाए और फिर वो अपनी बहू का मुंह देखकर चैन से संसार से विदा ले लें। हर नई सुबह मैं बड़ी उम्मीद का दामन लेकर नौकरी की तलाश में जाता और शाम को भारी कदमों से लौटकर आ जाता। एक दिन मां और बाबूजी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं भी जिंदगी से ऊब गया था, जिंदगी से हारा। मैं ना जाने क्या कुछ कर गुजरता अगर मेरी जिंदगी में तुम ना आती सोनिया। तुम्ही ने मुझे दुखों से जूझने के लिए संबल दिया। उस दिन से मैंने जिंदगी का मूल मंत्र बना लिया, जियो तो खुशी से जियो, एक दूसरे के गम बांट कर जियो। सोनिया,
0: एक बात पूछूं?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
0: औरत की सबसे बड़ी मनोकामना क्या होती है?
1: भाई सवाल बड़ा टेढ़ा है, फिर भी इसके उत्तर में मैं कहूंगा पति। और आज की औरत का अपने पैरों पर खड़े होना, दोनों ही बातें।
0: जब औरत पति को पा लेती है तब भी वो संपूर्ण नहीं होती जब तक वो मां ना बन जाए।
1: सोनिया, मां बनना हर नारी का सपना होता है, मगर विधि के बनाए संसार में इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता है। सोनिया,
0: ये सब मन बहलाने की बातें हैं। मुझे तुम मिले, तुमने सारी खुशियां मेरे दामन में भर दी, मगर मेरा आंचल बच्चे के बिना सोना है। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों?
1: नहीं सोनिया, तुम
0: कितनी हसरतें थी एक अच्छी पत्नी और मां बनने की, क्या तकदीर को मुझसे लूटना था।
1: प्लीज सोनिया,
0: सुनिए,
1: अपने को संभालो। उसके घर देर है, अंधेर नहीं सोनिया, प्लीज प्लीज।

0: मिसेस वर्मा आप?
1: अरे सोनिया, भाई साहब कहाँ है? जल्दी से तो बताओ।
0: अंदर ही है, आइए अंदर आइए। बड़ी घबराई है, सब खैरियत से तो है?
1: कुछ ना पूछो, कुछ ना पूछो सोनिया। नमस्ते भाई साहब।
2: नमस्ते नमस्ते। आओ भाभी, क्या बात है, परेशान दिख रही हैं।
1: क्या बताऊं भाई साहब, मिस्टर वर्मा 10 दिन से बाहर हैं। कह रहे थे ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा हूँ, एक हफ्ते में लौट आऊंगा। अभी तक नहीं लौटे हैं, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है।
2: अरे भाभी जी, लगता है आप वर्मा जी के मिजाज को अब तक नहीं पहचान पाई हैं।
1: क्या मतलब?
2: आपने कहा ऑफिस के काम से गए हैं।
1: हाँ।
2: समझो कि वर्मा जी को फ्री में सैर सपाटे का अवसर मिल गया है। फिर सहरगा मुंबई जैसी जगह हो तो वर्मा जी तो क्या, हर किसी का दिल मचल जाएगा भाभी जी। हाँ,
1: ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब?
2: 16 आने, सच कह रहा हूँ भाभी जी।
0: लीजिए भाभी जी, चाय लीजिए।
1: अरे ये क्या, मैं भी आप लोग को तकलीफ देने चली आई।
0: अरे आप आते ही कहाँ हैं हमारे यहाँ? चलो इसी बहाने आप आए तो सही, मुन्नू तो स्कूल गया होगा।
1: हाँ सोनिया, और देखो अभी UKG में ही है, और फीस की तो पूछो ही मत। कभी डोनेशन, कभी चैरिटी शो, कभी पेरेंट्स डे। तौबा तौबा, जितनी फीस मुन्नू की UKG में जाती है ना, उतने में

0: अरे भाई, क्या है लिफाफे में?
1: कोई कार्ड लगता है।
0: देखो तो किसका है भाई?
1: ये कोई जतिन
0: आहा,
1: बंदोपाध्याय।
0: जतिन जतिन, अरे भाई मेरे ऑफिस में ही काम करता है।
1: अच्छा
0: जरा देखूं तो देना।
1: हाँ
0: हाँ, कल पार्टी दे रहा है। अच्छा, लिखता है शादी में तुम दोनों को बुला नहीं पाया, इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। एक विशेष नोट तुम्हारे नाम भी है भाई, लिखा है भाभी को जरूर लेकर आना। कम बख्त कहीं का है, शादी में बुलाने की फुर्सत नहीं थी है? भला पार्टी में हम कैसे याद आ गए उसे है? पहले शादी और पार्टी एक साथ होती थी, और आज आज शादी की रस्म अदायगी होती है बस।
1: अब जाने भी दो, आप तो फिर से शुरू हो गए।
0: अब क्या करूं, जब ऐसी बातें आंखों के सामने उठती हैं तो कहे बिना रह ही नहीं जाता सोनिया।
1: अच्छा बातें कम कीजिए जनाब, ऑफिस का काम निपटाइए।
0: अभी लीजिए जनाब, मगर एक कप गर्मा गर्म चाय अगर हो जाए तो मैडम मजा आ जाएगा कुछ।
1: हाँ हाँ जरूर।
2: हेलो सुनील।
0: हेलो जतिन। हाय,
2: नमस्ते भाभी।
1: नमस्ते।
2: इनसे मिलिए, यह है मेरी पत्नी पूर्णिमा, और पूर्णिमा यह है मेरा सबसे अच्छा दोस्त सुनील।
0: नमस्ते भाभी जी।
2: और यह है सोनिया भाभी।
1: पूर्णिमा भाई, मान गए आपकी चॉइस को, जैसा नाम वैसा ही निखरा निखरा रूप, पूनम के चांद की तरह।
2: क्यों यार, भाभी के विचार तो जान लिए, तेरे दिल की भी तो जानू।
0: अरे भाई, जो सोनिया ने कहा वही मैं भी कहता।
2: क्यों, जलन हो रही है ना?
0: मेरी तारीफ को तो तू शुरू से ही जलन कहता आया है, तेरी वो आदत अभी तक नहीं गई जतिन, है ना?
1: अरे बाबा, वाद विवाद के लिए और भी दिन पड़े हैं, पार्टी का मूड क्यों खराब कर रहे हैं? आप मर्द भी अजीब हैं, अपनी अपनी बीवी के सामने क्या ईरान तुरान की बातें लेकर बैठ जाते हैं।
2: अरे भाभी, इसकी लपेटने की आदत को तो मैं बचपन से ही जानता हूँ।
0: अच्छा,
2: मैन लाइक ए स्पाइडर।
0: अरे जाने भी दो इन बातों को, बातें हैं बातों का क्या।
2: देखा, जब अपने पर आई तो कैसे कन्नी काटने लगा।
1: अच्छा अच्छा, अब यूं ही हंसकर पेट भरने का इरादा है क्या?
0: अरे भाई, हंसकर ही पेट भर जाए तो हंसी ही खा लेते हैं आज, क्यों भाई?
2: ना बाबा ना, मैंने अपने मेहमानों को सिर्फ हंसी खिलाने नहीं बुलाया है।
0: अच्छा?
2: दावत के लिए बुलाया है। हाँ, तेरी बात और है।
0: क्या क्या कहा भाई तूने? ये
2: भाई भाई जो तुम समझ रहे हो।
0: अच्छा अच्छा, ये बात है।
3: हेलो सुनील।
0: हेलो नरेश। हेलो,
3: क्या बात है, आज तो सूट में गजब ढा रहे हो।
0: हाँ, ऐसे सिलवाए तो 3 साल से ऊपर हो गए। अरे मियाँ, महंगे माल की खासियत देखो, 3 साल बाद भी वही चमक, वही फिनिशिंग, और ना ही सूट छोटा हुआ।
3: सूट छोटा नहीं हुआ मियाँ, क्योंकि तुम्हारी लंबाई नहीं बड़ी।
0: नहीं?
4: अबा यार, यू ही जोक्स में समय बर्बाद कर दोगे क्या?
2: अरे भाई, पार्टी में जोक्स नहीं तो क्या सॉक्स चलेंगे? यार प्रकाश, भाभी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं?
4: अरे भाई, कभी तो मौके की नजाकत का ख्याल किया करो।
0: अरे जाइए जनाब, जाइए, कोई बेसब्र हुआ जा रहा है आपके बगैर।
3: अरे यार सुनील, इनसे मिलो, ये है मेरी अर्धांगिनी सुधा।
0: नमस्ते नमस्ते भाभी जी।
5: मेरा ख्याल है आप ही है ना सुनील चौधरी भाई साहब?
0: वाह भाभी जी वाह, पहली ही नजर में पहचान लिया। आइए, मैं आपको अपनी पत्नी सोनिया से मिलवाता हूँ। अरे भाई सोनिया।
1: आती हूँ, एक मिनट।
0: फिर वही एक मिनट।
3: देख रही हो सुधा, इस पार्टी में सबसे खूबसूरत सोनिया भाभी नजर आ रही है। भाई पार्टी की शाम सुनील सोनिया की जोड़ी से जगमगा रही है, सचमुच बहुत बहुत

0: खूबसूरत है वो।
1: हाँ हाँ, शादी से पहले तो तुम मुझे भी यही कहते थे, मगर अब तो घर की मुर्गी दाल बराबर।
2: कहिए सुनील, क्या कह रहे थे?
3: अरे भाई, अपने ही दोस्तों से मिलती रहोगी या हमारे दोस्तों से भी मिलना चाहोगी?
2: तो मिलवाओ ना।
3: इनसे मिलिए। हाँ। ये है मेरे ऑफिस के मित्र नरेश, और ये हैं सुधा भाभी।
4: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: और ये है मेरी पत्नी सोनिया।
1: क्या नाम बताया भाई साहब ने?
3: सोनिया।
5: देखा कैसा जगमगाता मॉडर्न नाम है, एकदम हो कि पुराने नामों का लेवल चिपकाए हुए।
1: अब सुनील भाई साहब, आप ही ने समझाइए कि सुधा का मतलब क्या होता है।
3: सुधा यानी अमृत।
1: पर ये क्या जाने
3: भाभी, इसमें इस बेचारे का भी कोई दोष नहीं, हिंदी साहित्य कभी पढ़ा हो तब ना।
6: हेलो सुनील, कैसे हो भाई?
3: सर आप?
6: हाँ भाई, जतिन के पिता मेरे अच्छे मित्रों में से एक थे, अब तो वे रहे नहीं। जतिन मुझे पिता के समान ही सम्मान देता है।
3: जी
6: सुनील
3: जी,
6: आज तुम्हारी हमारी मुलाकात काफी दिनों बाद हो रही है। नहीं नहीं, दिनों बाद नहीं भाई, कई सालों के बाद हो रही है।
3: हाँ सर, यही कोई 8-10 साल बाद हम मिल रहे हैं सर।
6: और हाँ, अब तक शादी की या नहीं?
3: सर अब मैं विवाहित हूँ, पार्टी में वो मेरी पत्नी, हम दोनों आए हैं।
6: अच्छा,
3: वो रही मेरी पत्नी सोनिया, इधर ही आ रही है सर। अरे सोनिया, इनसे मिलो। आप हैं शेखर सर? अरे वही जिनके बारे में मैंने तुमको कई बार बताया था। कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे आप।
7: प्रणाम सर।
6: जगदू जी बेटी। अच्छा सुनील
3: जी सर,
6: मगर तुमने ये नहीं बताया कि शादी कब की।
3: जी सर, हमारी शादी को 7-8 साल हो गए।
6: पर तुम दोनों को देखकर तो लगता ही नहीं। नहीं भाई नहीं, इतना समय नहीं हुआ होगा।
3: सर मैं सच बोल रहा हूँ सर।
6: वेरी गुड वेरी गुड।
3: जी सर।
6: और बच्चे?
3: जी सर, वो बच्चे तो नहीं है सर।
6: ये क्या,
3: अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं है सर।
6: खैर, निराश होने से काम नहीं चलेगा, हर चीज अपने वक्त पर होती है भाई। हाँ, तुम्हारे साथ थोड़ी ज्यादती हुई है, मगर उसके आगे उसने जो भी सोचा होगा अच्छा ही होगा।
3: जी सर।
1: सुनिए।
3: हाँ
1: जाए था।
3: हाँ बोलो बोलो।
1: सुना तुमने, शादी के 7 साल बाद भी सोनिया की वो सुनी है? मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है।
5: गड़बड़ लगती है, जैसे सब कुछ तुम ही जानती हो। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की तुम्हारी पुरानी आदत है।
1: देखो मैं तुम्हें खबरदार कर देती हूँ, उसकी तरफ मत जाना और ना ही मैं उसकी शक्ल देखूंगी। मुझे तो वो बांझ लगती है।
5: हाँ?
1: सुहागिनों पर ऐसी औरत की छाया भी पड़े तो बड़ा अपशगुन होता है।
5: लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है,
1: है?
5: चुप रहो।
3: अरे सोनिया,
7: जरा इधर आइए।
3: क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? अरे भाई कहीं तुम्हारी तबीयत तो कुछ
7: नहीं? नहीं।
1: हाँ लगता है ऐसा ही है भाई साहब। भाभी जी का फौरन चेकअप करवा लें, हो सकता है कोई खुशखबरी हो।
3: ये ओह, अपने को संभालो सोनिया। मैं जतिन से मिलकर आता हूँ, फिर अभी घर चलते हैं। उससे बिना कुछ बोले गए तो वो बुरा मान जाएगा ना। मैं अभी आता हूँ सोनिया।
7: जल्दी आना।

0: सोनिया प्लीज, हम किस किस की जबान को बंद कर सकते हैं? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो।
1: ये सब झूठी दिलासा है।
0: नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ।
1: मुझे उसकी एक एक बात याद आ रही है।
0: हाँ, वो
2: देखो, मैं तुम्हें खबरदार कर देती हूँ, उसकी तरफ जाना मत और ना ही मैं उसकी शक्ल देखूंगी। सुहागिनों पर ऐसी औरत की छाया भी पड़े तो बड़ा अपशगुन होता है। मुझे तो वो बांझ लगती है।
0: अपने आप को तकलीफ देकर कुछ हासिल नहीं होगा सोनिया, कुछ भी नहीं। तुम आराम करो सोनिया, तुम सो जाओ प्लीज।

अरे अरे राजा बेटा, आज हमारा राजा बेटा नहाएगा, फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, फिर मम्मा पापा के संग घूमी घूमी करने जाएगा ना। हाँ अच्छा अच्छा ये बता, बड़ा होकर हमारा राजा बेटा क्या बनेगा? हाँ क्या कहा? ओहो ये पानी गिर गया, ये मेरे राजा बेटे ने नहा लिया। हाँ ये मेरे राजा बेटे को कोई नजर ना लग जाए किसी की, अभी मैं ये काजल लगा देती है मम्मा। हाँ मेला छोनू बेटा।

0: क्या चाहते हो? तुमने मेरे बच्चे को क्यों पकड़ रखा है? देखो देखो मेरा बच्चा मुझे दे दो। देखो, देखो वो रो रहा है। लाओ लाओ लाओ।
1: ये बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं इसे अपनी मर्जी से लाया था और अपनी ही मर्जी से ले जा रहा हूँ।
2: सोनिया, कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज प्लीज। तुम इस तरह कमजोर पड़ गई तो मैं भी हार जाऊंगा। सोनिया, जीवन संघर्ष की इस लंबी लड़ाई को तुम्हारे सहारे के बिना कैसे लड़ सकता हूं मैं? नहीं सोनिया, नहीं नहीं, धीरज रखो। कब किसके हिस्से में सुखों की बारिश होने लगे और कब किसकी किश्ती को सागर में थपेड़ों से जूझना पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता। सोनिया, मुझे अब भी विश्वास है हमारे ऊपर पड़ी दुख की काली छाया एक दिन जरूर हट जाएगी। तुम्हारे मातृत्व की तृष्णा ने एक पिता के हृदय के खामोश समंदर में हलचल मचा दी है। सोनिया, आज मैं तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाना चाहता हूं जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। पर डरता हूं सोनिया, क्या मेरा फैसला हम दोनों का फैसला बन पाएगा या नहीं?
0: फैसला? कैसा फैसला?
2: मैंने फैसला किया है सोनिया कि हम बच्चा गोद लेंगे। हाँ सोनिया, हाँ, जिंदगी में आज तक हमारे साथ जो होता आया है उसे एक दुखद स्वप्न मानकर भूल जाएंगे हम। आज की रात हमारी जिंदगी की आखिरी अमावस होगी। सोनिया, तुम चुप क्यों हो? सोनिया, तुम ये बड़े फैसले की अहम घड़ी है। सोनिया, क्या तुम इस फैसले से?
0: नहीं नहीं, मुझे मंजूर है। मैं माँ बनूंगी।
2: हाँ सोनिया, हाँ
0: बिल्कुल, हाँ सुनील, अच्छा गोद ले लेंगे। तुमने सच कहा, आज की रात हमारी जिंदगी की आखिरी अमावस होगी।
2: तो आओ सोनिया,
0: सच कहा
2: सोनिया, इन बहारों को अपने दामन में समेट ले, आओ आ जाओ सोनिया।

आखिरी अमावस। अभी आपने सुना ये नाटक, लेखक थे गंगा सिंह रावत। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।

गीतांजलि कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को दीपिका का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। रामपुर लिसनर्स क्लब नाला पारबाग छोटे साहिब रामपुर से हैं नवाबुद्दीन निजामुद्दीन मोहम्मद जमालुद्दीन सादिया अक्सा और हमाद। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मैंडी सौरव शाइना और निवान शर्मा। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से इस गीत को सुना चाहा है शाहजी बोट के नंदा बोट के हनुमान सारिखा सुरेखा सोनम और बोट के परिवार ने। जत्तू का किशनपुर से सुनने वाले हैं आलम दिलकर शबाना नाज रिजवान राही इमरान राजा आलम शेख और चांदनी नाज। करोला मुरादाबाद से हैं अयूब खान इरम गुड़िया और शेब खान। कस्बा पागवड़ा से हैं मजाहिर हुसैन अंसारी बेगम रीसनाज और मुजक्किर बाबू। बेड़ी से हैं राजेश सोनी कंचन गायत्री वैष्णवी चंचल धीरज और अर्जुन। जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा है अतुल गौतमी अरुण और इनके साथियों ने। यहीं से हैं तुषार प्रसिक एकता मेघना उत्कर्षा और अरुण। तेलंगाना जिला भोगीर से इस गीत को सुनना चाहा है मोहम्मद बुरहानुद्दीन यूसुफुद्दीन फजान और इनके साथी। अनारकली बाजार जागरण से हैं सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष मल्होत्रा बीबी गाव्या। रेलवे रोड गंजुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम जख्मी भुवन प्रकाश गौतम और फारूक शेख। जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से इस गीत को सुनना चाहा है मुजफ्फर अली खान मतीन खान अल्फिया खान और ईशा खान ने। लेवा खेल मोहल्ला चांदो बिस्वा से हैं नारायण ललिता परी खटसे गणेश कार्तिक स्वाति चौधरी और प्रयाग चौधरी। जिला रामपुर ग्राम खाटमपुर से हैं ग्राम भजन सैनी हरप्यारी सैनी राजीव सैनी संजय मुकेश आशा अंशिका पूजा और राम प्रकाश सैनी। पुणे से इस गीत को सुनने के लिए खत आया है पंकज कुमार और प्रियंका का। कार्यक्रम के इसी गीत को सुनना चाहा है दुर्गादास गंगाधर गजानन संजय आशीष पृथ्वीराज और साध्वी और इन्हीं के साथ हैं गणेश। शिकारपुर उत्तर प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहा है बबली कुमार प्रजापति पुष्पा देवी डॉली दीपांशु पूजा भीम और अभिषेक ने। राजद्वारा रोड मीठे कुमार रामपुर से हमारे साथी हैं आकाश रस्तोगी दीपक रस्तोगी रवि रस्तोगी फिरासत अर्पित रस्तोगी अभेरिया आरुष और इनके बहुत सारे साथी। बिलराम गेट काजगंज से हमारे श्रोता साथी हैं असलम सैफी जैबुलनिशा अक्रम सैफी और आबाद खान। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इस गीत को पसंद किया है ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही और महराज शाह ने। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में ये गीत। फिल्म है प्रेम बंधन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। जिला रतलाम मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहा है बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। पंजू सराय संभल से हमारे श्रोता हैं छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। दौलत बाग मुरादाबाद से इस गीत को पसंद किया है जाफर हुसैन, नेमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी ने। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से हमारे श्रोता साथी हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहा है बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष ने। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबिहा निवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी, प्रांजल। शेरपुर कला गाजीपुर से इस गीत को सुनना चाहा है अवधेश रॉय, प्रीति रॉय और नवनीत रॉय ने। गांधी समाधि रोड रामपुर से हैं हाजी गफ्फार खां, राजिया खान, सिमरन खान, गुलफशाह, जीनत अमान, हबीब अहमद इदरीसी और शहनाज बाबू अंसारी। पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से इस गीत को सुनना चाहा है डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुल निशा, असलम हुसैन। बेटला सिरसी से डॉक्टर महमूद हुसैन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और इनके साथियों ने। ग्राम जीवनपुरा पंजाब से हैं चरणजीत कौर, हेवन सिंधु और सुरेंद्र सिंह। पुराना शहर बरेली से इस गीत को सुनने के लिए खत आया है अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य का। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वरानी, महिमा और नीतू वैद। लुधियाना पंजाब से हैं विनोद, अशोक, रंजू, सुशील, नीलम, कैलाश और रमा। जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से इस गीत को सुनना चाहा है बहारुल हसन सिद्दीकी, आलम सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील फहीम, सलीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान ने। तहसील बिलारी से हैं रजा अहमद, इसरा जहां, जमाल कमाल, आयत और हमजा। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म है असली नकली।

फिल्म असली नकली में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, और अब सुनिएगा कार्यक्रम का अगला गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इस गीत को सुना चाहा है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, शुभचंद्र बजाज, नवनीत रॉय और अनिल शर्मा ने। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से इस गीत को सुना चाहा है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकम खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। महादेव घाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश ठाकुर, तारणी, सूरज ज्योति, रियांश और सुजला ठाकुर। भाटा पारा दतरेंगी से हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा। रेलवे कॉलोनी भटिंडा से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। मछली गोदाम कैदी मुंडा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, ऋतु और ऋषभ सिंह। सिंधौली मीरगंज बरेली से इस गीत को पसंद किया है जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख ने। लुधियाना से हैं अमरजीत सोनम, परमजीत, आदिबा और टिंकू। बुलंदशहर से हैं बद्रुवली अंसारी और इनके बहुत सारे साथी। इंदिरा विहार रायगढ़ से इस गीत को सुना चाहा है अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां और वलीउल्लाह नूरजहां ने। ओल्ड लिसनर्स गुरु राजनगर मधुबनी से हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, विनीता, राजू गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि, मौसम गुप्ता और इन्हीं के साथ हैं संगीता गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से इस गीत को सुना चाहा है मुकेश रानी, कुसुम, पलक और पंखुड़ी गुप्ता ने। राजनगर गांधी चौक गांधी निकेतन से हैं मंजीत, सूर्यांशी, माधवी, साध्वी, तन्मय और गुनगुन। गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से इस गीत को सुना चाहा है रेखा रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक, संजना और ललिता ने। जिला मुरादाबाद संभल रोड से हैं अतर सिंह सैनी, मुन्नी, पवित्रा, अजय सैनी, आंचल, विक्की सैनी, आकांक्षा, आकाश, दक्ष, छवि, रुद्र, आयुषी और इनके माताजी। लीजिए सुनिएगा इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में ये गीत। फिल्म है दिल्ली का ठग।

किशोर कुमार और आशा भोसले के सुर में अभी आपने सुना ये गीत। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर जसपुर उत्तराखंड से इस गीत को सुना चाहा है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज और रिफाकत ने। इन्हीं के साथ हैं रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ। लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू और मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से हैं शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू रोशनी और अजय गंगराड़े। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद किया है बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना ओमवती भारती, रवनक, शुगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह ने। कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत को सुनना चाहा है रहमत नगर छपरवाली मस्जिद मुरादाबाद से बाबू अंसारी, शहनाज अंसारी, आफरीन, सुमैया महरीन और इनके साथियों ने। गोला बाजार बक्सर से हमारे श्रोता हैं बीना देवी, सविता, पूनम, पूजा, रोशनी, अमृता, सुरभि और खुशबू। राजा बाजार चौक बीहे आरा से हैं पूनम, संगीता, प्रतिज्ञा और बीना। वंदना नगर एयरपोर्ट रोड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से हैं पूजा, बबिता, गणेश, कार्तिक, नारायण और रेखा रघुवंशी। सतारा से हैं श्रमण, वर्षा, स्वाति, अत्य

कोल्हापुर से इस गीत को सुना चाहा है अंकिता, तेजस्विनी और विजय ने। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से इस गीत को पसंद किया है हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज और शाहीन ने। महसौल सीतामढ़ी से हैं। फरज जहां, तलत जहां, रूही नाज, वसीम, नदीम, शमीम और अमन। कार्यक्रम का यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। भटिंडा रोड डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग की फरमाइश पर। पटेल नगर मलौट पंजाब से हैं रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और आरजू जाजौरिया। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, एकांश। बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर। मलौट कैंप पंजाब से इस गीत को पसंद किया है सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना विशाल, सुप्रिया अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी ने। परी महल काजगंज से इस गीत को सुना चाहा है आबाद खान, नबील खान, असलम सैफी, नबी हसन, आफीन और इनके साथियों ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान और इनके बहुत सारे साथी। सनावत मध्य प्रदेश से हैं दीपक, दिलीप, योगेश, सुनीता और मुस्कान। जिला उज्जैन से इस गीत को सुनना चाहा है विनोद, नेहा, दीपक, चेतन, दिलीप और दीक्षा ने। बहेड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम, कहकशा, दानिश, आदिल और शपक। लीजिए सुनिएगा कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म छाया से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण। रात्रि के 11:10 हुए हैं। कल प्रातः 5:50 पर मीडियम वेव और एफएम के मीटर्स पर अपनी सभा के कार्यक्रमों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।